एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 5 मई सन 2026। सुबह के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की सभा अब आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के ठीक 6 बजे हैं। प्रस्तुत है आस्था के सर।
1: आस्था के स्वर।

अभी आपने सुना देशगान। समवेत स्वर में देशभक्ति रचना के बाद पंडित रामानंद शर्मा का लिखा भक्ति गीत अब सुनिए। स्वर शर्मा बंधु का है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति रचनाएं। आस्था के स्वर।

0: अभी आप सुन रहे थे आस्था के स्वर कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। चिंतन में आज सुनिए स्वामी आत्मानंद जी की वाणी एवं विचार।
1: मनुष्य अपने जीवन में कई प्रकार की आदतें डाल लिया करता है। तन और मन को प्रिय लगने वाली आदतें तो बहुत जल्दी लग जाती हैं, पर विवेक को रुचने वाली आदतों का निर्माण प्रयत्न पूर्वक करना पड़ता है। जल को नीचे बहने में किसी प्रकार का श्रम नहीं होता, बल्कि ढाल में उसकी गति अपने आप तेज हो जाती है, पर उसे यदि कोई ऊपर ले जाना चाहे तो श्रम करना पड़ता है, पंप लगाना पड़ता है। उसी प्रकार जो बातें मन को निम्नगामी बनाती हैं उनकी आदत अपने आप लग जाती है, पर जिनसे मन ऊर्ध्वगामी बनता है उनकी आदत प्रयत्न पूर्वक लगानी पड़ती है। ऐसी ही आदतों में से एक है स्वाध्याय, यानी अध्ययन का अभ्यास। कई लोगों को हल्की फुल्की कहानियां और उपन्यास पढ़ने का शौक होता है, पर इसे अध्ययन नहीं कहा जाएगा। अध्ययन वह है जिससे हम कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। स्वाध्याय हमें ज्ञान पैदा करता है। ज्ञान उसे कहते हैं जो उचित और अनुचित का भेद बताता है। यह सिखाता है कि किससे व्यक्ति का कल्याण होता है और किससे अकल्याण। अध्ययन मनुष्य को बुराइयों से बचाता है। कहा जा सकता है कि इतिहास में ऐसे भी महान पुरुष हो गए हैं जो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, अतः जिनके लिए अध्ययन स्वाध्याय संभव नहीं था, पर यह तर्क अध्ययन की उपयोगिता को दबा नहीं सकता। बिना पढ़े भी मनुष्य महान हो सकता है, पर यह अपवाद है, सामान्य नियम नहीं। और हम तो सामान्य स्तर पर सर्व सामान्य लोगों के लिए यह चर्चा कर रहे हैं। अध्ययन वह खराद है जिसके द्वारा आत्मसंस्कार साधित होता है। स्वामी विवेकानंद के संबंध में कहा जाता है कि वे इतने विद्याव्यसनी थे, इतने अध्ययन प्रेमी थे कि मोटा से मोटा ग्रंथ अल्प समय में पढ़ लेते थे। वे पृष्ठ की पहली और अंतिम पंक्तियों को पढ़कर पूरे पृष्ठ का तथ्य समझ लेते थे। उनकी यह प्रतिभा अध्ययन का ही फल थी। फिर कहा जाता है कि उन्होंने ऐसी दो बातें कही थी जिन्हें भविष्यवाणी का दर्जा दिया जा सकता है। विश्व प्रसिद्ध होने से पूर्व अमेरिका के अनिस्क्वाम नामक गांव की घटना है, जहां उन्होंने एक तो यह कहा था कि जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे तब चीनियों द्वारा भारत पर आक्रमण का डर बना रहेगा, और दूसरी बात यह कही थी कि आगामी दिनों में एक ऐसी महान हलचल जो विश्व में नए युग का सूत्रपात करेगी या तो रूस से शुरू होगी या चीन से। यह बात उन्होंने जुलाई 1893 ईस्वी में कही थी। तब श्रोताओं में से किसी को इस पर विश्वास नहीं हुआ। जब एक ने पूछा कि क्या आप भविष्य दृष्टा हैं, तो स्वामी जी ने कहा था, मैं भविष्य दृष्टा नहीं, इतिहास दृष्टा हूं। स्वामी विवेकानंद यह जो अपने को इतिहास दृष्टा कहते हैं, तो उनको यह दृष्टि इतिहास के अध्ययन से ही मिली थी। अध्ययन का, स्वाध्याय का ऐसा चमत्कार, ये तो स्वाध्याय के बड़े लाभ हुए, पर सामान्य जनों के लिए बहुत से छोटे छोटे लाभ भी हैं। इसके द्वारा हम घर बैठे दुनिया के धुरंधर विद्वानों के विचारों का लाभ ले सकते हैं तथा विश्व के प्राचीनतम मनीषियों के साथ सत्संग कर सकते हैं। ग्रंथ के अनुशीलन से देश और काल की दूरियां खत्म हो जाती हैं। यदि हम बीमार हों तो समय अच्छे ढंग से कट जाता है। बूढ़े अवकाश प्राप्त व्यक्ति को समय मानो काटता है, वह बिताए नहीं बीतता और उसे अपना जीवन एक फिजूल बोझ मालूम पड़ता है। पर यदि वह स्वाध्याय की आदत डाल लेता है तो उसकी ऊपर बताई समस्याएं अपने आप

0: मिट जाती हैं और उसे अपने जीवन की सार्थकता मालूम होती है। उसे फिर साथियों का अभाव नहीं खलता। स्वाध्याय हमें मनोबल प्रदान करता है और हम में अध्यवसाय के प्रति प्रेम भरता है। हतोत्साहित व्यक्ति के लिए भी स्वाध्याय रामबाण दवा है। उसे कोई ऐसा सूत्र मिल जाता है जिससे उसमें उत्साह की नई किरण पैदा होती है और परिस्थितियों से मुठभेड़ लेने के लिए वह उद्यत हो जाता है। अतएव जीवन में यदि हमें कोई चस्का लगाना ही है तो हम अध्ययन स्वाध्याय का चस्का लगावें।
1: चिंतन में अभी आप सुन रहे थे स्वामी आत्मानंद जी की वाणी एवं विचार। आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान।

कपटी मुनि एक तनु ने राजा प्रताप भानु को ब्राह्मणों को प्रसन्न करने का ये उपाय बताया कि वो एक वर्ष तक नित्य प्रति 100,000 ब्राह्मणों को उनके कुटुंब सहित भोजन कराए। उसी समय वहां कालकेतु नामक राक्षस आया। वो तपस्वी राजा अर्थात कपटी मुनि का गहरा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र तथा 10 भाई थे जो अजेय तथा देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों तथा देवताओं को निर्भय करने के लिए राजा प्रताप भानु ने उन सब की हत्या कर दी थी और इसी कारण बदला लेने के लिए कालकेतु ने कपटी मुनि से मित्रता करके प्रताप भानु का सर्वनाश करने का कुचक्र रचा।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, गायक स्वर था महेंद्र कपूर का। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। लीजिए सुनिए कृषि चर्चा, वाचिका सीमा कराहे।
1: किसान भाई बहन होन राम राम। किसान भाई बहन होन, आज हम कृषि चर्चा में बात करांगा जैविक खेती का महत्व पर। जैविक खेती ऐसी कृषि प्रक्रिया छे जहाँ किसान द्वारा खेत नमा फसल का उत्पादन कर लेना प्राकृतिक प्रक्रिया का जरिए पौधा का अपशिष्ट से प्राप्त करेगा जैविक उर्वरक, जैविक खाद का उपयोग भूमि की उत्पादन क्षमता का समाप्त होना से बचावज, जे की रासायनिक उर्वरक न कीटनाशक न का उपयोग करना से नष्ट हो गई, साथ ही पर्यावरण का भी नुकसान पहुँचाई रहा। भाई बहनों, जैविक खेती दो प्रकार से की जाए। शुद्ध जैविक खेती, इन्हीं खेती में अप्राकृतिक उर्वरक न को उपयोग करो जाए। शुद्ध जैविक खेती पूर्व से प्राप्त प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त कराया जाए, उर्वरक न कीटनाशक न से करो जाए, जिसके उत्पादन बिल्कुल शुद्ध छे। दूसरी खेती छे एकीकृत जैविक खेती। एकीकृत जैविक खेती में आवश्यकता न मांग की स्थिति का ध्यान में रखी न कीट प्रबंधन न पोषक तत्वों को प्रबंधन न एकीकरण करो जाए। जैविक खेती को प्रसार हमारा भारत में तेजी से हुई रोज, हमारा किसान भी अब अपना ही राज, क्योंकि जैविक उत्पाद की मांग केवल भारत तक सीमित नहीं है बल्कि वैश्विक स्तर पर एक मांग में बढ़ोतरी हुई गई। भारत जैसा कृषि प्रधान देश का लेना एक सुनहरा अवसर छे कि हम जैविक खेती में अपनी सर्वोच्चता का प्रस्तुत करा। भाई बहनों, जैविक खेती से होने वाला अनेक फायदा छे। भूमि की उत्पादन क्षमता नष्ट होना से बचाव, साथ ही कृषि का क्षेत्र का सतत विकास का लेना महत्वपूर्ण छे। फसल उत्पादन का लेना जैविक खेती अपना स्रोत नमा प्रकृति से हासिल करी ले, जेका कारण जैविक खेती किसी भी प्रकार से महंगी नहीं है, साथ ही किसान भाई बहन का लाभ प्रदान करे। भाई बहनों, जैविक खेती की बढ़ती मांग का कारण ये भारत का किसान न का साथ भारत की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव डाले, क्योंकि जैविक उत्पादन की मांग वैश्विक स्तर पर बढ़ी गई। जैविक खेती पूरी तरह से रासायनिक उर्वरक न कीटनाशक न से मुक्त रहे, जेका से पर्यावरण का नुकसान नहीं होता। जैविक खेती पूर्ण रूप से प्राकृतिक स्रोत न पर केंद्रित छे, जेको नकारात्मक प्रभाव मानव शरीर पर शून्य छे, जेका कारण मानव पौष्टिक भोजन ने एक स्वस्थ जीवन को निर्वाह करी सकज। जैविक खेती कृषि का सतत विकास का बढ़ावना का साथ जी की अप्रत्यक्ष रूप से सतत विकास लक्ष्य न की प्राप्ति में एक योगदान छे। जैविक खेती पोषक स्वास्थ्य न स्वादिष्ट भोजन को अच्छो स्रोत छे, जेका सी कई लोग न की जीवन प्रत्याशा बढ़ी, न कुपोषण जैसी बीमारी न कम हुई रही। जैविक खेती मिट्टी की उत्पादकता का बढ़ावा, साथ रासायनिक उर्वरक न हानिकारक कीटनाशक न को उपयोग नहीं करती, जेका परिणाम स्वरूप जल प्रदूषण नहीं होतो, न हमारा पर्यावरण का भी संरक्षण मिले। भाई बहनों, साथ रोजगार का अवसर भी उपलब्ध करा रही। जैविक खेती श्रम प्रधान न जैविक खेती का साथ संबंधित उत्पाद का निर्माण का क्षेत्र में कई अवसर तेजी से बढ़ी रहा है। हम कई सकान की जैविक खेती देश का बहुलाभ प्रदान कर, मानव का शारीरिक रूप से न पर्यावरण का सकारात्मक रूप से फायदों पहुँचावना का साथ जैविक खेती पर निर्भर रही न खुशनुमा जीवन व्यतीत करी सकान। जैविक कृषि का क्षेत्र में आज बहुत सा उद्योग निकले न सामना ही रहा, जी की देश का युवा न का सामना जैविक कृषि का क्षेत्र में नया नया आधुनिक अवसर प्रदान करी राज। जैविक खेती का साथ साथ पशुपालन, कुक्कुट मछली पालन करी न अपना आर्थिक पक्ष का मजबूत बनाई राज। साथ ही किसान भाई बहनों, जैविक खेती का महत्व का देखते हुए जैविक खाद जैविक दवाई न को उपयोग आप अपनी कृषि में तो करो, साथ एका विक्रय से भी आप बहुत लाभ प्राप्त करी सको। तो भाई बहनों, आज की कृषि चर्चा में बस इतना ही। राम राम।
0: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा, वाचिका सीमा कराहे।
2: ईछे नी माड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी।

श्रोताओं, अब से कुछ ही देर बाद प्रातः 7 बजे प्रसारित करेंगे विश्व अस्थमा दिवस पर विशेष वार्ता। वार्ताकार डॉक्टर प्रशांत डोंगरे। 7:20 पर साप्ताहिक कार्यक्रम विविधा में आज प्रसारित करेंगे यश पांडे का काव्य पाठ। सुनहरा पल कार्यक्रम 7:30 पर। 8:15 पर सुगम संगीत में कलाकार होंगे मेहदी हसन।

आपके मीत ये गीत फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम होगा 8:30 पर सुबह 9 बजे से 10 बजे तक और फिर दिन में 11 बजे से 5:30 तक अनुप्रसारित किए जाएंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

जिले की चिट्ठी हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे 10 बजे। 10:05 पर होगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। लोक रंजिनी फरमाइशी निमाड़ी लोक गीतों का ये कार्यक्रम सुनिएगा 10:35 पर, प्रस्तुति विशाखा सोनी की।

संध्या 5:30 पर प्रसारित करेंगे निमाड़ी लोक संगीत। आज संध्या 6 बजे युववाणी कार्यक्रम का आकर्षण होगा क्रम हमारे शहर। फिल्म संगीत 6:30 पर। 7:21 पर होगा किसान वाणी कार्यक्रम।

रात्रि 8:45 तक, 9:15 तक और फिर 9:30 से 11 तक अनुप्रसारित किए जाएंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। इस बीच रात्रि 9:15 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे स्पॉटलाइट।

हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर याद दिला दें, अब से कुछ ही देर बाद प्रातः 7 बजे प्रसारित करेंगे विशेष वार्ता विश्व अस्थमा दिवस। वार्ताकार डॉक्टर प्रशांत डोंगरे। 7:20 पर साप्ताहिक कार्यक्रम विविधा में आज प्रसारित करेंगे युवा कवि यश पांडे का काव्य पाठ।

0: आज की ताजा खबर।
1: आज की ताजा खबर में प्रस्तुत है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: शासकीय आईटीआई खंडवा में 7 मई गुरुवार को रोजगार स्वरोजगार एवं अप्रेंटिस मेला आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक लगेगा, जिसमें प्रदेश की विभिन्न कंपनियों द्वारा तकनीकी और गैर तकनीकी क्षेत्र में लगभग 250 बेरोजगार युवक युवतियों की निजी क्षेत्र में भर्ती की जाएगी, जिन अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं, आईटीआई, डिप्लोमा, सभी ट्रेड, स्नातक एवं स्नातकोत्तर है, सभी के लिए भर्ती प्रक्रिया होगी। इसके लिए आयु सीमा 18 वर्ष से 35 वर्ष तक निर्धारित की गई है। लू तापघात के मरीजों को त्वरित उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला अस्पताल के साथ साथ सभी सिविल अस्पताल और सामुदायिक केंद्रों में अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की गई है। सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में लू तापघात से उपचार के लिए आवश्यक दवाइयों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्री ऋषभ गुप्ता ने सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने अपने क्षेत्र में जल संरक्षण और भूजल संवर्धन के कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से करवाएं। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री संजीव श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में आगामी 9 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन और अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण सुनिश्चित करने हेतु पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री ठाकुर प्रसाद मालवीय की अध्यक्षता में सम्पन्न इस बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्देश्य, कार्यप्रणाली और अधिकाधिक मामलों के निराकरण के लिए आवश्यक रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। और अब खबर खेल जगत से। भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने टेपे सिग्मानेंट कंपनी चेस टूर्नामेंट के तीसरे राउंड में स्वीडन के निल्स ग्रैंडेलियस को हराकर शानदार जीत दर्ज की। उधर आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। और अब एक नजर तापमान पर। कल दिन का अधिकतम तापमान रहा 42.1 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान रहा 23 डिग्री सेल्सियस।
1: ये थी आज की ताजा खबरें, संकलन शशांक बराते का।
2: आज की ताजा खबर।
3: इस बुधवार एक ही फिल्म से कार्यक्रम में सुनिए कहानी एक अजेय योद्धा की, जिसने पूरे हिंदुस्तान को अपनी तलवार से जीता।
4: जीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते।
3: एक पत्नी जिसने टूट कर भी रिश्तों की मर्यादा निभाई।
5: हीरे में हीरा हो तो उसे कहते हैं कोहिनूर। राव का नाम लेते ही काशी के चेहरे पे आता है नूर।
3: एक प्रेमिका जिसने अपना सब कुछ मोहब्बत के नाम कर दिया। तो तैयार हो जाइए शनिवार वाड़ा की शान, रणभूमि की गर्जना और बाजीराव पस्तानी के अमर प्रेम को महसूस करने के लिए।
5: और एक साथ रुकते भी।
3: इस बुधवार सुबह 7:20 पर फिल्म बाजीराव मस्तानी।

0: रखा। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: यह आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। श्रोताओं, आज मई माह का पहला मंगलवार है, जिसे पूरी दुनिया में मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस के रूप में। तो आइए आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर सुनते हैं विशेष वार्ता। वार्ताकार हैं डॉक्टर प्रशांत डोंगरे।

नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत डोंगरे आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूँ। आज विश्व अस्थमा दिवस है। हर साल मई के पहले मंगलवार को मनाए जाने वाले इस दिन का उद्देश्य है अस्थमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना। एक चिकित्सक होने के नाते मेरा यह मानना है कि अस्थमा केवल शारीरिक बीमारी नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। अस्थमा के मरीजों के लिए सिर्फ मेडिसिन ही काफी नहीं है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि ऐसे कौन से दुश्मन हैं जो अस्थमा को बढ़ाते हैं या उसको ट्रिगर करते हैं। जैसे घरेलू ट्रिगर, अगरबत्ती का धुआं, रसोई में जो छौंक लगती है, या पुराने पर्दों की धूल, या पालतू जानवरों के बाल। इसके अलावा मौसमी बदलाव, बदलते मौसम, खासकर मानसून और सर्दियों की शुरुआत में सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ जेनेटिक भी स्थितियाँ होती हैं, जैसे अगर माता पिता को एलर्जी या अस्थमा है तो बच्चों में इसके लक्षण दिखने पर तुरंत होम्योपैथी शुरू करनी चाहिए, ताकि यह आगे चलकर क्रॉनिक न बने। होम्योपैथी बच्चों के लिए सुरक्षित और मीठी गोलियों के कारण आसान है। कई बार बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव या डर, चिंता भी अस्थमा के दौरे का कारण बनती है। होम्योपैथी इन मानसिक पहलुओं जैसे ग्रीफ, एंजाइटी, एंटिसिपेशन को भी ठीक करती है, और अगर ये ठीक होते हैं तो फिर अस्थमा के दौरों में भी परिवर्तन आता है। समाज में कुछ भ्रांतियां भी हैं, जैसे अस्थमा कभी ठीक नहीं हो सकता। मैं यहाँ बड़े जोर से एक चिकित्सक होने के नाते ये बात कहना चाहूँगा, इम्यूनिटी बढ़ाकर अस्थमा के दौरों की फ्रीक्वेंसी और तीव्रता, इंटेंसिटी को न्यूनतम स्तर पर लाया जा सकता है। दूसरा एक मिथक है, परहेज बहुत सख्त है। सच्चाई ये है, परहेज केवल उन चीज़ों का है जो आपकी बीमारी को बढ़ाता है, न कि दवा के असर को रोकने के लिए है। चिकित्सक मेडिसिन के साथ में कुछ न्यूट्रिशन के तौर पे कुछ बायोकेमिक मेडिसिन का भी उपयोग करते हैं, वो भी अस्थमा के ट्रीटमेंट में बहुत कारगर होता है, बहुत उपयोगी होता है। इसके साथ ही कुछ न्यूट्रिशन जो हमारे शरीर में क्षमता पैदा करता है बीमारी से लड़ने की, उसमें मैग्नीशियम और ओमेगा 3, ये लंग्स की मांसपेशियों को आराम देने में बहुत मदद करते हैं। विटामिन सी जो खट्टे फलों में होता है, अगर मरीज को सूट करे तो ये लेना चाहिए, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। जैसे मैंने कुछ बायो कॉम्बिनेशंस बोले हैं, बायोकेमिक एक लवण होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स बोला जाता है इनको, ये कोशिका लवण फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं। तो एक बात आपसे साझा करना चाहूँगा, अस्थमा के साथ समझौता न करें, इसे जड़ से समझने की कोशिश करें। याद रखिए, जब शरीर अंदर से संतुलित होता है तो बाहर का प्रदूषण आपको बीमार नहीं कर सकता। तो दोस्तों, अपने लिए एक उचित गुरु, डॉक्टर नहीं, एक मार्गदर्शक चुनिए जो आपको इस युद्ध से, जो आप लड़ रहे हैं एलर्जी के खिलाफ, उससे बाहर निकालने में आपकी मदद कर सके। हमारी बीमारियों का मुख्य कारण होता है या तो हमारी दिनचर्या खराब हो, या हमारा पोषण कहीं ना कहीं प्रभावित हो, कुछ कमजोर हो, या फिर मानसिक तनाव में है। पानी हमारे शरीर की पहली ज़रूरत है। 80% पानी से हमारा शरीर बनता है, तो जितना अधिक ईश्वर ने जो बहुमूल्य गिफ्ट दिया हुआ है पानी के रूप में, उसका सेवन होना चाहिए। एक साधारण सा सिद्धांत है, 20 किलो वजन पे 1 लीटर पानी को एक व्यक्ति को ज़रूरत होती है। तो अपने वजन के अनुसार पानी पिए, अच्छी मेहनत करें, अच्छा पोषण लें। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स, ये क्या होते हैं, किस में होते हैं, इसको पहचानें और शरीर की कोशिकाओं को इससे पोषण दें।

0: मानसिक तनाव, हमारा जो तनाव का हार्मोन है कॉर्टिजोल, उसको नियंत्रित रखें, और खुशी के जो हार्मोन्स हैं सेरोटोनिन, डोपामिन, एंडोर्फिन, ये रसायन होते हैं, इनको कैसे बढ़ाया जा सकता है इस पे जरूर ध्यान दें, इसको जानें। और अगर ये सब चीज़ें करते हैं तो मैं नहीं समझता कि कोई भी बीमारी, अस्थमा या उससे जटिल से जटिल गंभीर समस्याओं को भी बहुत आसानी से हम काबू कर सकते हैं और उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों के लिए मेरा संदेश है, अपनी नींव मजबूत करें। अक्सर छोटे बच्चों में बार बार होने वाली सर्दी खांसी को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जो आगे चलकर अस्थमा का रूप ले सकती है। अभिभावकों के लिए मेरा संदेश है, बच्चों को धूल और धुएं से बचाएं। गर्भवती महिलाओं के लिए मेरा संदेश है, दो जानों की सुरक्षा। गर्भावस्था के दौरान अस्थमा का प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि माँ की सांसों में कमी का सीधा असर गर्भस्थ शिशु की ऑक्सीजन सप्लाई पर पड़ता है। सावधानी ये रखें, कई महिलाएं डर के कारण दवाइयां छोड़ देते हैं, जो खतरनाक हो सकता है। बुजुर्गों के लिए मेरा संदेश है, सक्रिय और सुखद बुढ़ापा। उम्र बढ़ने के साथ फेफड़ों की क्षमता कम होने लगती है और अस्थमा के साथ साथ COPD जैसी समस्याएं भी जुड़ जाती है। बुजुर्गों के लिए मेरी सलाह है, ठंडी हवा और नमी वाले स्थानों से बचें, सुबह शाम हल्का प्राणायाम जरूर करें। चाहे बचपन की पहली सांस हो, माँ की ममता में ही सांसें हों, बुजुर्गों का अनुभव, सांसों की डोर कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। अस्थमा नियंत्रण में है तो जीवन भी गति में है। कुछ घरेलू पदार्थ या चीजें होती है जिनको हम उपयोग कर सकते हैं। घर में उपलब्ध तुलसी और शहद सीमित उपयोग से श्वसन मार्ग को साफ रखने में मदद करते हैं। घर के बड़ों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि जो धूम्रपान है वो गर्भवती महिलाएं और बच्चों के आसपास न करें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण छोटे टिप्स हैं जिन्हें आप अपनाकर अस्थमा पे आसानी से काबू पा सकते हैं। अस्थमा में अक्सर हम देखते हैं कि मरीज इनहेलर्स और स्टेरॉइड्स के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित तो कर लेते हैं, लेकिन समस्या बार बार लौट आती है। हम केवल फेफड़ों का इलाज नहीं करते बल्कि पूरे मरीज का इलाज करते हैं। हम ये समझते हैं कि अस्थमा के पीछे के मानसिक तनाव, अनुवांशिक कारण और वातावरण का क्या प्रभाव है। होम्योपैथिक दवाइयाँ शरीर की वाइटल फोर्स यानी जीवन शक्ति को उत्तेजित करती है, जिससे शरीर बाहरी एलर्जी जैसे धूल, पराग, प्रदूषण के प्रति अति संवेदनशील होना कम कर देता है। हर व्यक्ति की तासीर अलग अलग होती है, किसी को ठंडी हवा से दिक्कत है तो किसी को नमी से। हम आपकी इन बारीकियों को समझकर मेडिसिंस का सिलेक्शन करते हैं तो इसे पर्सनलाइज ट्रीटमेंट बनाता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या होम्योपैथिक अचानक आए अस्थमा के दौरे जिसको एक्यूट अटैक कहते हैं में काम करती है। मेरा सुझाव है कि पुरानी या क्रॉनिक स्थिति को जड़ से खत्म करने के लिए आपातकालीन स्थिति में अपने विशेषज्ञ की सलाह का पालन करना चाहिए। यहाँ मैं कुछ बातें साझा करना चाहूंगा, कभी भी बिना डॉक्टरी सलाह के दवा न लें। अस्थमा के रोगी संतुलित आहार लें और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अंत में मैं यही कहूंगा कि अस्थमा आपको अपनी जिंदगी पूरी तरह जीने से रोक नहीं सकता। सही समय पर सही चिकित्सा और धैर्य के साथ आप एक सक्रिय जीवन बिता सकते हैं। विश्व अस्थमा दिवस पर आइए संकल्प लें कि हम अपनी और अपनी सांसों की का ख्याल रखेंगे। स्वस्थ रहें, खुश रहें, और अंत में एक गीत के माध्यम से मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ। जिंदगी हंसने गाने के लिए है, पल दो पल इसे खोना नहीं, खोके रोना नहीं, इसे खोना नहीं, खोके रोना नहीं। जिंदगी हंसने गाने के लिए है, पल दो पल। धन्यवाद।
1: विश्व अस्थमा दिवस पर अभी आप सुन रहे थे ये विशेष वार्ता, वार्ताकार डॉक्टर प्रशांत डोंगरे, आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है।

0: रखा। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है, प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित, बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा को बहुमत। समाज सेवा में ही जीवन की सार्थकता, कहा राज्यपाल ने। प्रदेश में अब तक 39,02,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी। टोल पर्ची बनाने का समय रात 10 बजे तक बढ़ाया गया। और आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को हराया। आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 294 सीटों में से 170 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में टीवीके सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। केरल में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी का संकेत है। पुडुचेरी में कुल 30 सीटों में से 29 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। कल दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आज का दिन देश के लिए नए सवेरे का प्रतीक है और जनता ने भारत के महान लोकतंत्र, प्रदर्शन की राजनीति और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना में अपना विश्वास जताया है।
1: ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है। ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर।
0: राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि समाज की सेवा में ही जीवन की सार्थकता है। भारतीय संस्कृति के ध्येय वसुधैव कुटुंबकम के अनुसार शिक्षित व्यक्ति का परम कर्तव्य वंचितों और गरीबों की खुशहाली और उत्थान के लिए कार्य करना है। राज्यपाल श्री पटेल कल भोपाल में एक निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि आत्मविश्वासी, नवाचारी और जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी शिक्षा और प्रतिभा के द्वारा आत्मनिर्भर, समृद्ध, सशक्त और विकसित भारत बनाने में सहभागिता करें। इस अवसर पर राज्यपाल ने फार्मेसी, विधि, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, पत्रकारिता और मेडिकल साइंस के क्षेत्र में पीएचडी उपाधि और स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की। देश में गैस सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि एलपीजी वितरकों के लिए कोई कमी नहीं है और कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई लगभग 70% तक बहाल कर दी गई है।
2: कमर्शियल एलपीजी में 70% तक की आपूर्ति की जा रही है। अभी तक लगभग 2,15,000 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है और ऑटो एलपीजी की सेल अप्रैल से लेकर अब तक लगभग 11,100 टन की गई है। 5 किलो के सिलेंडर की आपूर्ति भी 100% इंक्रीज की जा चुकी है और इसके चलते अब तक लगभग 23,00,000 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई है।
0: वहीं उन्होंने कहा कि 3 अप्रैल से लेकर अब तक 10,000 से ज्यादा जागरूकता शिविर देशभर में आयोजित किए गए हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि अभी तक 7,48,000

किसानों से 39,02,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि तौल पर्ची बनाने का समय अब शाम 6 बजे से बढ़ाकर रात 10 बजे तक का तथा देयक जारी करने का समय रात 12 बजे तक का कर दिया गया है। मंत्री श्री राजपूत ने बताया है कि अभी तक 14,75,000 किसानों द्वारा गेहूं उपार्जन के लिए स्लॉट बुक कराए गए हैं। किसानों के हित में गेहूं उपार्जन की अवधि 9 मई से बढ़ाकर 23 मई तक कर दी गई है। प्रत्येक उपार्जन केंद्र पर तौल कांटों की संख्या भी 4 से बढ़ाकर 6 की गई है तथा तौल कांटों की संख्या में वृद्धि का अधिकार जिलों को दिए जाने का निर्णय लिया गया है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कल मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में भर्ती प्रक्रिया एवं विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार और चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के लिए समयबद्ध एवं समन्वित रूप से कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में CTVS एवं ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग की स्वीकृति संबंधी कार्यवाही को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन भुगतान में किसी प्रकार की देरी न होने पर विशेष जोर दिया। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने बुधनी, दमोह एवं छतरपुर मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा आवश्यक फर्नीचर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राज्य आनंद संस्थान द्वारा प्रदेश में शिक्षा को मानवीय एवं मूल्य आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत प्रदेश के शासकीय स्कूली शिक्षकों के लिए 6 दिवसीय आवासीय कार्यशालाओं की श्रृंखला है, जिसका आनंद संस्थान में मुख्य कार्यपालन अधिकारी आशीष कुमार ने किया। इस व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 18 कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें प्रदेश के सभी जिलों से लगभग 2,160 शिक्षक सहभागिता करेंगे। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ और तकनीकी रूप से सक्षम तथा भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप में आयोजित कॉम्प्रिहेंसिव कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम का कल रविंद्र भवन में समापन हुआ। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 7 अप्रैल से 4 मई तक तथा स्पेशल ब्रांच ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश की विभिन्न विशेष इकाइयों के चयनित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सक्रिय सहभागिता की। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने कहा कि वर्तमान समय में ड्रोन हमलों सहित नई प्रकार की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां सामने आ रही हैं, जिससे निपटने के लिए इस प्रकार का उच्च स्तरीय प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है। अब रुक करते हैं क्रिकेट की खबर का। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। वहीं आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में पिछले 4 दिनों से तेज गर्मी के साथ कई जिलों में आंधी और हल्की बारिश का दौर चल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के कई जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना शहर को स्वच्छ और हरित बनाने की दिशा में महापौर योगेश कुमार ताम्रकार ने हरी झंडी दिखाकर कल 10 इलेक्ट्रिक वाहनों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल अपने ग्वालियर प्रवास के दौरान गोले के मंदिर के समीप निर्माणाधीन आरोग्य धाम सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय की OPD का अवलोकन किया। झाबुआ कलेक्टर ने कल सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा के दौरान नामांकन, ट्रांजिशन दर, ड्रॉपआउट, FLN गतिविधियां और साइकिल वितरण तथा अपार आईडी के संबंध में दिशा निर्देश अधिकारियों को प्रदान किए। बड़वानी में आज शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। डिंडौरी जिला प्रशासन के द्वारा कल गल्ला गोदाम मंडी में चाट चौपाटी का शुभारंभ किया गया। नीमच के मनासा में शासकीय भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई कल प्रशासन के द्वारा की गई। बैतूल में जनगणना कार्य की समीक्षा करते हुए बैतूल कलेक्टर ने HLBC यानी हाउस लिस्टिंग ब्लॉक जनगणना में तेजी से प्रगति लाने के निर्देश दिए और इसके साथ ही कलेक्टर ने सभी विभागीय गतिविधियों को सुचारू रूप से करने के निर्देश भी दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित। बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा को बहुमत। समाज सेवा में ही जीवन की सार्थकता, राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा। प्रदेश में अब तक 39,02,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी। तौल पर्ची बनाने का समय रात 10 बजे तक बढ़ाया गया। और IPL में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हराया। आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा मुकाबला। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: FM इंडेक्स 1.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। साप्ताहिक कार्यक्रम विविधा में अब सुनिए यश पांडे का काव्य पाठ।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं यश पांडे आज प्रस्तुत हूं आप सभी के बीच अपने गीत और कविताएं लेकर। श्रोताओं, कविता मनुष्य मात्र को ईश्वर की अप्रतिम भेंट है। कविता हम उसे अभिव्यक्ति कह सकते हैं, पर वो सिर्फ अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। वह मनुष्य हृदय की अभिव्यंजना का वाचन है, अव्यक्त को भी व्यक्त कर देने की कला है। कविता समग्र मानवता का गान है। अक्सर ये प्रश्न उठता है कि कविता क्या है। मैं कहता हूं कि कविता क्या नहीं है। हवा की सरसराहट, बहती नदियां का कलरव, पक्षियों का चहचहाना, बच्चों का रुदन करना आदि आदि सब कविता ही तो है। सब में प्रकृति के गहरे संदेश छुपे हुए हैं। जो भाव हमको कृत्रिमता से ऊपर उठाए, जड़ता को समाप्त करे, जो कल्याणमय हो, वही कविता है। पर कविता की प्रकृति होती बड़ी मनमौजी और फक्कड़ है। कविता ना तो अनुकूल समय की प्रतीक्षा करती है, ना ही वातावरण की। वो तो कभी भी कहीं भी प्रकट हो जाती है और खुद को कागज पर उकेरने पर विवश कर देती है। श्रोताओं, ऐसा मेरे साथ अनेकों बार होता है कि कविता भीतर से आ रही होती है पर विषय नहीं समझ पाता, विषय स्पष्ट नहीं हो पाता कि क्या लिखना है। तो एक बार ऐसा हुआ कि क्या लिखूं, यही कविता का विषय हो गया। तो कविता का विषय है क्या लिखूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं कोयल की कूक या भूखे की भूख, क्या लिखूं कोयल की कूक या भूखे की भूख, जीवन का आभार या समाज का व्यभिचार, या लिख दूं मैं प्रिय से मिलने की आस, या गाऊं मैं चारण बन गीत कोई खास, या लिख दूं कोरी आलोचना साहित्यिक भाषा में, या रोऊं किस्मत को खोर निराशा में, कि गाऊं निराशा में आशा का गीत, या समझाऊं कविता में राग विराग प्रीत, क्या लिखूं, क्या लिखूं, ये मंथन जारी है, द्वंद्व की सत्ता भारी है, द्वंद्व एक श्रेष्ठ दशा है, भावों में द्वंद्व का परिणाम कविता है। तो श्रोताओं, ये कविता स्मृति से घिरी हुई है। प्रेसी दूर है पर उसकी याद निरंतर साथ में है। साहित्य जगत ने अपनी प्रेसी तक बात पहुंचाने की परंपरा कालिदास के जमाने से चलती आ रही है। हो सकता है कि मेरी कविता भी आकाशवाणी के माध्यम से मेरे साध्य तक पहुंच जाए। तो श्रोताओं, कविता का विषय है तुम्हारी याद आती है। कभी सूना लगे जब घर, कभी सुनसान राहों पर, कभी अकेलेपन में भी, कभी दिलकश नजारों पर, मेरी ही परछाई मेरी आंखों से जब ओझल हो जाती है, तुम्हारी याद आती है। कभी उलझे सवालों में, कभी बिखरे जवाबों में, कभी जब बीतता है दिन किसी मसनबी ख्यालों में, चिड़िया ढलती हुई शाम को जब लोरी सुनाती है, तुम्हारी याद आती है। कैसे बताऊं कि मेरी हर रात काली है, जो तुमसे हो परे प्रिय वो हर एक बात जाली है। कैमरे में कैद खुद को अकेला देखता हूं मैं, बगल की कुर्सी खाली है कि ये संसार खाली है।

कोई मीरा जब अपने कान्हा में समाती है, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। श्रोताओं, जंगल हमारे जीवन का मूलाधार रहे हैं, वो मनुष्य के क्रमिक विकास और उनकी उन्नति में मूल रूप से सहायक हैं। इसलिए हम सभी को पर्यावरण का बहुत ध्यान रखना चाहिए, जंगलों की कटाई से बचना चाहिए और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। यदि यही बात मैं आप सभी के अंतस में उतार पाऊँ तो मेरा ये कविता लिखना सफल हो जाएगा। तो श्रोताओं, इस बात को केंद्र में रखते हुए कि हमको पर्यावरण को बचाना है और जंगलों का संरक्षण रखना है, जंगलों की हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भागीदारी है, मेरी ये आतुकांत कविता इस ओर ही इंगित करती है। कविता का विषय है जंगल। जंगल सिर्फ जंगल नहीं है, वो अपार एकांत के स्रोत हैं। इनमें बसा हुआ है एक अनोखा संसार जो स्वयं ही स्वयं में रहता है विलीन। यहां की प्रकृति निर्धारित है प्रकृति के द्वारा। हस्तक्षेप से पीड़ित जंगलों ने कभी नहीं छोड़ा एकांत का सानिध्य। वो देते रहे बादलों को बारिश, करते रहे सूर्य के अस्तित्व की तुष्टि, करते रहे मनुष्य का क्रमिक विकास, देते रहे रोगियों को जड़ी बूटी। वे बने रहे मनुष्य की समृद्धि और उपलब्धियों का मूलाधार। वो देते रहे राम को आसरा, करते रहे बुद्ध की जिज्ञासा की तृप्ति, बदलते रहे वासना को ऊर्जा में। और हम सब बुद्धिजीवी मनुष्यों ने हमेशा चलाई जंगलों की गर्दन पर छुरी। किंतु पतन की पराकाष्ठा तो तब हुई जब चेतना संपन्न महापुरुषों ने पहचाना जंगलों के सामर्थ्य और करुणा को। वो हो गए जंगलों को आजीवन समर्पित और दुनिया वालों ने कर दिया घोषित जंगलों को पलायन का केंद्र। तो श्रोताओं, अगली कड़ी में प्रस्तुत है मेरा एक गीत। गीत है अनकहे गीत वो जो मैं गा ना सका, वेदना अपने दिल की सुनाता हूं मैं।

कर निभा ना सका, कामना कुछ ना हो, कामना है यही, कामना को कामना से लड़ाता रहा, कामना कुछ

यश पांडे का काव्य पाठ अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है सुनहरे पल कार्यक्रम।

श्रोताओ, आज से 20 बरस पहले 5 मई 2006 को हमसे अंतिम विदा लेने वाले मधुर धुनों के रचनाकार नौशाद की यादों को ही समर्पित कर रहे हैं हम आज का सुनहरे पल कार्यक्रम। यूं तो भारतीय सिनेमा को समृद्ध बनाने वाले संगीतकारों की कभी कमी नहीं रही, लेकिन संगीतकार नौशाद के संगीत की बात ही कुछ अलग थी। अपने साज का जादू बिखेरने वाले संगीतकार नौशाद ने कभी भी फिल्मों की संख्या को तरजीह नहीं दिया, बस अपने संगीत को परिष्कृत करने का लगातार काम करते रहे। एक से बढ़कर एक नायाब तोहफे दिए अपनी मधुर धुनों के जरिए।

श्रोताओ, संगीतकार नौशाद अली को बचपन से ही संगीत से लगाव था। हिंदी फिल्म संगीत को हिंदुस्तानियत का जामा पहनाने वाले नौशाद का जन्म तहजीब और नज़ाकत के लिए मशहूर नवाबों के शहर लखनऊ में हुआ था 25 दिसंबर 1919 को। एक समय ऐसा आया जब उन्हें संगीत और घर में से किसी एक को चुनना था। बेशक उन्होंने संगीत को चुना। 16 वर्ष की किशोर उम्र में उम्मीदों की नगरी मुंबई का रुख किया वर्ष 1935 में। काफी संघर्ष भी किया।

अनमोल घड़ी, शारदा, आन, संजोग, दीदार, मुगले आजम और बैजू बावरा जैसी फिल्मों में नौशाद के संगीत का ही जादू था, जिसने न केवल इन फिल्मों को हिट बनाया बल्कि कालजयी

शास्त्रीयता से समृद्ध नौशाद के संगीत को लोगों ने अपने दिलों में खास जगह दी। फिल्म बैजू बावरा के संगीत की सफलता ने तो उन्हें सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा दिया।

श्रोताओं, नवोदित गायक गायिकाओं को प्रोत्साहित करने में भी संगीतकार नौशाद हमेशा आगे रहे। सुरैया, अमीरबाई कर्नाटकी, निर्मला देवी, उमा देवी को भी हिंदी फिल्मों में अवसर देने का श्रेय नौशाद को ही जाता है। सुरैया को पहली बार उन्होंने फिल्म नई दुनिया में गाने का मौका दिया। इसके बाद शारदा और संजोग में भी गाने गवाए। निर्मला देवी को भी सबसे पहले फिल्म शारदा में मौका दिया और अभिनेत्री टुनटुन यानी उमा देवी की आवाज का इस्तेमाल किया फिल्म दर्द के इस लोकप्रिय गीत में।

0: श्रोताओ, फिल्म शाहजहां में कुंदन लाल सहगल से जो गीत नौशाद ने गवाए थे उनका तो कहना ही क्या। जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे, गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल। ये दोनों गीत गाने के बाद सहगल ने नौशाद से कहा था, काश मुझसे तुम पहले मिले होते। मोहम्मद रफ़ी को भी जब अपनी फिल्मों में गाने का अवसर नौशाद ने दिया तो उनके फिल्मी करियर ने एक अलग ही उड़ान भरी।
1: लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमार, होय गवा सारा चौपट मोरा रोजगार।

फिल्म गंगा जमुना के लगभग सभी गीत भोजपुरी बोली के साथ लोक धुनों में ढले थे। नौशाद का कहना था, हमारे संगीत की अपनी परंपरा है, यह परंपरा सैकड़ों वर्षों की तपस्या और रियाज से बनी है, इसमें हमारी मिट्टी की सुगंध है, हमारी जिंदगी की शक्ल है। नौशाद के संगीत को सुनकर आज भी एक अजीब सी खुशी मिलती है, संगीत प्रेमियों को दिल झूम उठता है। कामयाबियों से भरी संगीतकार नौशाद के फिल्मी सफर के साथ उन्हें हिंदी फिल्मों में अनमोल बेमिसाल योगदान के लिए कई सम्मानों और पुरस्कारों से नवाजा गया। पद्मश्री पद्मभूषण के साथ ही हिंदी सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला नौशाद को। प्लेटिनम जुबली, गोल्डन जुबली और सिल्वर जुबली मनाने वाली कई फिल्मों में ऐसी शानदार कामयाबी बहुत ही कम संगीतकारों को मिली है। अपनी जिंदगानी में वे शोहरत की बुलंदियों को छू चुके थे। 5 मई 2006 को नौशाद ने इस फानी दुनिया से अपनी रुखसती ली है।

0: अरे बैठना होनी, काई हुई गई हो?
1: हम सुनी रहे आज आकाशवाणी खंडवा, निमाड़ की सुरीली धड़कन।
2: न आज तक निमाड़ की सुरीली धड़कन सुनी खना?
3: मजा आ गया।
4: सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।
5: आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है, कुछ ही पलों में समाचार प्रभात हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा सरकार बनाने के लिए तैयार, पुद्दुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बरकरार, केरलम में कांग्रेस

0: के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन की जीत तमिलनाडु में टीवीके 108 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। राज्य में किसी को बहुमत नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोगों ने प्रदर्शन की राजनीति पर भरोसा जताया। ईरान के ड्रोन हमले में संयुक्त अरब अमीरात में 3 भारतीय नागरिक घायल। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की है। वाम दल को 1 सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर और नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से हार गई हैं। बहरमपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ पहली बार पश्चिम बंगाल की सत्ता पे आ रही है भाजपा। लगातार 15 साल सत्ता में रहने के बाद तृणमूल कांग्रेस की इस हार से राज्य की राजनीति एक नई मोड़ पर आ चुकी है। पहले ही बताया गया था कि चुनाव आयोग के निर्देश पर दक्षिण 24 परगना की फलता विधानसभा के क्षेत्र में पुनः चुनाव 21 मई को होगा। उस सीट की गिनती 24 मई को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा के सुशासन की राजनीति की जीत हुई है। जनता की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नई सरकार हर संभव प्रयास करेगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम टीवीके ने गठन के बाद हुए पहले चुनाव में 108 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है और राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कजगम डीएमके ने 59 सीटें हासिल की, जबकि अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम ने 47 सीटें जीती। इससे जुड़ी और जानकारी हमारे संवाददाता से।
2: तमिलनाडु के सियासी पर्दे पर फिल्म स्टार विजय ने सुपरहिट एंट्री ली और उनकी पार्टी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। थलाइवा, जननायकन, मरसल, सरकार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के नायक रहे जोसेफ विजय अब फिल्मी पर्दे पर नहीं बल्कि असल जीवन में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उनके सामने राज्य के मतदाताओं के सपनों को पूरा करने की बड़ी चुनौती है। 51 साल के अभिनेता को आज उनकी पार्टी के विधायकों द्वारा नेता चुने जाने की संभावना है। पार्टी गठबंधन सरकार के गठन को लेकर फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं और विजय के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती सरकार बनाने और उसे बेहतर ढंग से चलाने की होगी, क्योंकि इस बार उन्हें अपनी कामयाबी की स्क्रिप्ट खुद लिखनी है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने ऐतिहासिक रूप से लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल कर 126 सदस्यीय विधानसभा में 64 सीटों के बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। भाजपा को 82 सीटें मिली, जबकि उसके सहयोगी असम गण परिषद एजीपी ने 9 सीटें और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 10 सीटें जीती। दूसरी ओर कांग्रेस को 19 सीटें, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और रायजोर दल को 2-2 सीटें और टीएमसी को 1 सीट मिली। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने निर्णायक जीत हासिल की है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती, जबकि उसके सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 22 सीटें जीतकर गठबंधन को पूरे राज्य में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। राज्य भर में लगभग सभी प्रमुख यूडीएफ नेता स्पष्ट बहुमत से निर्वाचित हुए। सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ से सीपीआईएम ने 26, सीपीआई ने 8 और आरजेडी ने 1 सीट हासिल की। विधानसभा में एक भी सीट ना होने के बावजूद भाजपा ने इस बार 3 सीटें अपने नाम की। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 30 सदस्यीय विधानसभा में 18 सीटों के आरामदायक बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। इसके घटक दलों में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 12 सीटें, भाजपा ने 4 सीटें जीती, जबकि अन्य सहयोगी दलों अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम और एलजेके ने 1-1 सीट हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया है। कल शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में चुनाव परिणामों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही।
3: ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्गो

0: पोषण का दिन है, ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुद्दुचेरी, तमिलनाडु और केरलम की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 20 से अधिक राज्यों में भाजपा एनडीए सरकारें सत्ता में हैं।
0: देश के 20 से ज्यादा राज्यों में भाजपा एनडीए की सरकारें हैं। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। हम जनता की सेवा में जुटे हुए हैं और इसलिए जनता भाजपा पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा कर रही।
1: श्री मोदी ने कहा कि भाजपा का मंत्र है नागरिक ही भगवान है और पार्टी जनता की सेवा के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि देश में एक नया सवेरा हुआ है और जनता ने भारत के महान लोकतंत्र, प्रदर्शन की राजनीति और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना में अपना विश्वास जताया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने के लिए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने चारों राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की जनता को भाजपा और एनडीए पर अपना समर्थन और विश्वास जताने के लिए आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल, असम और पुद्दुचेरी में पार्टी की जीत का स्वागत किया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की जीत को भय, तुष्टीकरण और घुसपैठियों को पनाह देने वालों के खिलाफ जनता की करारी प्रतिक्रिया बताया। श्री शाह ने असम की जनता को ऐतिहासिक हैट्रिक जनादेश के लिए बधाई दी। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में एनडीए सरकार द्वारा सुरक्षित, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील राज्य के निर्माण के लिए किए गए अथक प्रयासों का सशक्त समर्थन बताया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने जमैका की विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने भारत और जमैका के बीच साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, डिजिटल पर्यटन, खेल, मनोरंजन और बहुपक्षीय मुद्दों में संबंधों को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। सरकार ने कहा है कि देश भर में एलपीजी वितरकों के यहाँ आपूर्ति की कोई कमी नहीं हुई है और पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपाय किए जा रहे हैं। कल दोपहर नई दिल्ली में हुई अंतर मंत्रालयीय बैठक में अधिकारियों ने नागरिकों से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की घबराहट में खरीदारी न करने और सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने का आग्रह किया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में प्रमुख अधिकारियों और मुख्य वार्ताकारों के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौतों की प्रगति का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने भारत से निर्यात करने के लिए अधिक व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के तरीकों पर चर्चा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ईरान के ड्रोन हमलों के बाद कल फुजेराह तेल उद्योग क्षेत्र में भीषण आग लग गई। पिछले महीने युद्ध विराम लागू होने के बाद से संयुक्त अरब अमीरात पर यह पहला हमला है जिसमें भारी नुकसान हुआ है। इस हमले में 3 भारतीय नागरिकों को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
2: सोमवार के हमलों ने 8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम लागू होने के बाद से हफ्तों से बनी शांति को भंग कर दिया। ईरान ने इस कदम को खारिज करते हुए चेतावनी दी कि जलमार्ग में प्रवेश करने वाली प्रत्येक जहाज पर हमला किया जाएगा। इसी पृष्ठभूमि में ईरानी ड्रोन और मिसाइलों ने संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाया, जिससे फुजेराह में एक प्रमुख तेल संयंत्र में आग लग गई। एक वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारी ने सरकारी टेलीविजन पर कहा कि ईरान के संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाने की कोई योजना नहीं है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में इन हमलों को हिंसा और अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर का स्पष्ट उल्लंघन बताया है और चेतावनी दी है कि ये देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। फुजेराह पर ड्रोन हमलों की

0: खबरें ऐसे समय में सामने आई जब अमेरिका और तेहरान के बीच युद्ध विराम वार्ता ठप पड़ी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: अमेरिका और ईरान के बीच नई चेतावनियों और सैन्य कार्रवाइयों के दावों के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान अमेरिका के जहाजों को निशाना बनाता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पश्चिम बंगाल में उद्योग जगत और व्यापार संघों ने विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत पर उन्हें बधाई दी है। व्यापारिक नेताओं का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार औद्योगिकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और निवेश अनुकूल नीतियों के एक नए युग की शुरुआत करेगी। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स द्वारा निर्धारित 229 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस ने 18 ओवर और 4 गेंद में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। रॉयल रिकेल्टन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होगा। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश की संभावना है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गांगेय पश्चिम बंगाल सहित उत्तरी राज्यों के कुछ हिस्सों में दिन के समय गरज के साथ बारिश होने की उम्मीद है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुनीष शर्मा।
2: धन्यवाद मुकेश। पश्चिम बंगाल में भाजपा की रिकॉर्ड जीत, ये आज सभी समाचार पत्रों की पहली सुर्खी है। असम पुदुचेरी में एनडीए गठबंधन के सर सत्ता का ताज सजने, तमिलनाडु में टीवीके के धमाल और केरलम में कांग्रेस गठबंधन की जीत को भी मुख्य अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है, छा गए बाबू मोशाय। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, बाबू मोदी शाय। तमिलनाडु में टीवीके की लहर को प्रकाशित करते हुए हिंदुस्तान ने सुर्खी दी है, विजय की सुनामी में सियासी दिग्गज साफ। केरलम में कांग्रेस गठबंधन की जीत पर पंजाब केसरी लिखता है, केरलम में कांग्रेस को सत्ता, सीएम पिनराई का इस्तीफा। असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही भाजपा की जीत पर नवभारत टाइम्स ने जीत के नायक मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, असम में सत्ता की हैट्रिक। भाजपा के पक्ष में आए भारी जनादेश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान, बदला लेने के बजाय बदलाव के लिए करें काम को भी ज्यादातर अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। हिंदुस्तान ने जनादेश का संदेश शीर्षक से संपादकीय में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के हाथों सत्ता फिसलने का विश्लेषण करते हुए लिखा है, अव्वल तो ऐसा यार की जरूरत से ज्यादा आलोचना तृणमूल को भारी पड़ी। दरअसल इससे संदेश गया कि पार्टी संदिग्ध वोटरों को बचाना चाहती है। होर्मुज जल क्षेत्र पर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम से बढ़ता तनाव भी मुख्य समाचार पत्रों की सुर्खी बना हुआ है। और आंधी बारिश ने दिल्ली को दिलाई सबसे साफ हवा, 88 रहा AQI। मौसम के मिजाज पर यह है नवभारत टाइम्स के शब्द।
1: धन्यवाद मुनीष। और अंत में एक बार मुख्य समाचार फिर। पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा सरकार बनाने के लिए तैयार, पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बरकरार, केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF गठबंधन की जीत, तमिलनाडु में TVK 108 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, राज्य में किसी को बहुमत नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोगों ने सुशासन की राजनीति पर भरोसा जताया। पश्चिम बंगाल के औद्योगिक निकायों और व्यापार संघों ने भाजपा की जीत का स्वागत किया। और IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये है FM खंडवा 101.2 MHz पर। पेश खिदमत है सुगम संगीत। कलाकार हैं मेहदी हसन। आगाज कर रहे हैं खुर्शीद हिल्लौरी के इस कलाम से।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत, फनकार मेहदी हसन। अगली पेशकश है दिलीप ताहिर के लिखी यह गजल।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: इस संदेश से पहले आप सुन रहे थे मेहदी हसन की गाई गजलें आज की सुगम संगीत में। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है आपके मीत ये गीत।

आपके मित्र गीत कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को रेडियो मित्र मनीष शर्मा का नमस्कार। आइए शुरू करते हैं आज के फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये सफर।

कार्यक्रम का ये पहला गीत हम समर्पित कर रहे हैं संगीतकार नौशाद की मधुर स्मृति को। फिल्म लीडर का ये गीत है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के युगल स्वर में। शब्दकार शकील बदायूनी और संगीत जी हाँ नौशाद का। फरमाइश आप सभी ने की है। सनावल जिला खरगोन से अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा, राजकुमार बोडाना, आदलपुरा गोगावा से संजय बामनिया, माया कान्हा और कृष्णा, बागवान मंजिल फूलपट्टी करजत से नूर आयशा अहमद बागवान, अफसरी रफत, नवासी आमना आसमा परी और आशु अहमद, नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी से अक्रम हुसैन, प्रिंस बेगम, इशरत अकरम, रुबीना वसीम और इनके बहुत से साथी, रहमानिया मोहल्ला महसूल सीतामढ़ी से वसीम अकरम, नदीम अकरम, शमीम और इनके बहुत से साथी, शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनिता गौराव, भानु, दीपिका सैनी, लक्कड़ बाजार खंडवा से भवानी सहबेस, रिया, रोहन, अंगद ठाकुर, बड़सिंगी जलगांव जामोद से अमोल मानकर, शोभा, दीपाली, श्लोक मानकर, पहारा दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण बंछोर, चंद्रकिरण, प्रीति छाया, खंगवाड़ा सनावत से दगलूजी सेन, धर्मेंद्र, श्रीराम, आयुष, दीपांशु, कलाबाई, सावित्री बाई और सेन परिवार के सभी सदस्य, मलयान सरधना मेरठ से अनिल जैन, संयम मुस्कान, जीवीएम जैन सरधना मेरठ से आदि अंश और भव्य जैन, बरकाकाना से डॉक्टर तस्नीम कौशर, इशिता साहनी और अफजल इब्राहिम, हरियाणा से अंकित कागड़ा, मोनी कागड़ा, प्रिंस बोट, सीताराम कागड़ा, साहिल कागड़ा, धाड़ी नांदुरा महाराष्ट्र से श्रीकृष्ण बाठे, संदीप, अमूल्य बाठे, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत कभाणकर, राही, सरिता, सिद्धांत, प्रिंस एकांश कभाणकर, किशोरनगर अमरावती से हीरामन शिंडे, शीला देवी, सुहास शिंडे और सिद्धार्थ गोंडाने, ग्राम रतनपुर झनैना से भागीरथ नायक, जितेंद्र सुभाष, रविंद शिवानी, अश्विनी हर्षराज, अरविंद आदित्य और इनके परिवार के सभी सदस्य, वीरमगाम सिटी से रश्मि लता पाटिल और हिमलता पाटिल, बिहार भवन दिल्ली से अशोक और अजीत जाटव, मोटक्का माफी से किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, शुभम देवी किशन, भावना मनमाना और कनिका पटेल, सौराष्ट्र राजकोट से जूली, जगदीश गुजराती, स्वाति, ख्याति, कलावती और प्राची शर्मा, शिवकोटी चौक जेल रोड से प्रमिला रानी कुटरिया, यामिनी राज और राकेश कुमार कुटरिया, ग्राम पुदकी कला से नीलेश और उमा पांडे, बुलंदशहर से संगीत और वीणा कुमारी, गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, जगदीश, पूजा और पायल, सिटी सेंटर अहमदाबाद से कंचन, कुसुम, कुंदन, रंजन और रूही श्रीमाली, रिंगनी से प्रियंका और किरण शर्मा, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या हेमलता डिम्बल देवांगन, ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल अंसारी, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, इंदिरा बिहार दिल्ली से डब्ल्यू अंसारी, मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, बड़ाबम चौक खंडवा से ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और किट्टू, ओंकारेश्वर रोड ग्राम थापना से राजेंद्र सिंह भदौरिया, ज्योति भदौरिया, उदय राज और अश्विन राज सिंह भदौरिया, धर्मपुरी धार से शेख फहीम मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम शेख, मुजफ्फर, अयान फैजान, सुमेरा कशिश और साइमा, सनावत से हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, बाबूलाल चौधरी, कृष्णपाल सिंह चौहान, मिश्रा गोल्डन, दीपक, सचिन कटारिया, कृष्णा, विराज, अर्नव,

कृतिका काव्यांशी और प्रभा कटारिया, सनावत से योगांश और लक्षिता प्रजापति, झरनिया रतनपुर से जितेंद्र सिंह गोल, नरेंद्र सिंह, सचिन प्रीति भावना, अंतिम श्रुति यशराज सिंह गोल और देवराज किट्टू, माँ बिजास की माता चौक खंडवा से राजेंद्र कटारे, अनीता उदय और उज्ज्वल कटारे, सिंगार तलाई खंडवा से राधेश्याम यादव, प्रभा यादव, भारती कामेश और शालिनी यादव। लीजिए सुनिए आप सभी के पसंद का संगीतकार नौशाद को समर्पित फिल्म लीडर का ये गीत।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: आप सुन रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
2: और आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप लुत्फ उठा रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का। शामिल करते हैं हमारे कुछ और श्रोताओं की पसंद। आप हैं कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनू राज शिमाली। ग्राम जसवाड़ी से दुर्गेश नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु गोलू और सूरज कुमार ढाक से। ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब, मोइन छोटू पवार, मोहम्मद हसनैन पवार। बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता छोटू, पूजा रोशनी और अजय गंगराड़े। अहमदपुर के गांव से कैलाश फुलमाली, दीपक, समर और वेदिका फुलमाली। भीकन गांव से हमें खत लिखा है संतोष सातले, चंदन, सारिका, रोहित, शुभम, शैलेंद्र और कंचन भाई सातले ने। ईमेल शामिल करते हैं ग्राम सूर्यगांव भैरव मंदिर सोनपुर से सुमेश कुमार सिंह, अंकित कुमार, राजू कुमार और अभय कुमार सिंह का। कोल सिटी बरकाकाना से अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम और कमल कुमार। एयरपोर्ट कॉलोनी पटना से इम्तियाज, तबस्सुम, परवीन, इमरान। भिलाई नगर से अशोक जाटव, श्याम और ज्योति, प्रदीप जाटव। सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से गजानन येले, नवदीप, विश्वदीप, अवंतिका येले। अनारकली बाजार जगराव से कमल पाठक, सुनील पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा और गव्या। आदिपुर से जानकी, सोनी, कौशल्या, मंजूमाला सिन्हा। दोहा कतर से हमें ईमेल मिला है शेख जियाउर रहमान का। निलारी रोड मानपुर साबित मुरादाबाद से शेख अताउर रहमान, शेख हबीबुर रहमान। कापसहेड़ा छोटी बलिया से इमरान अंसारी और जोही परी अंसारी। मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक और आकांक्षा मलिक। उमरे नांदेड़ महाराष्ट्र से बालुआपा घटबले, ज्योति घटबले। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की, विक्की नानू, रविंद्र, रौनक सेन। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लाडो, कोयल मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा। रोहतक से पीयूष और कोनिका सिक्का। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, धनेश तिवारी, सावन नायक, अंकिता और वैदेही जोशी। ग्राम बडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू, टॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा। आदिपुर अंजार कच्छ से प्रतिमा देवी, प्रफुल्ल, प्रवीण भाई पुजारी। डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद मंदुरकर और गौरव मंदुरकर। तलेगांव यवतमाल से निशा रानी, नीलेश, आरव और अर्पिता। परभणी से रूपेश संघई, महेश, प्रज्ञेश, प्रीतेश और संघई परिवार के सभी सदस्य। दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी, झुमरी तलैया। जिला गिरिडीह से शिवानी कुमारी, प्रियंका, अजय कुमार और बी के सिन्हा, बाके बिहारी। शिवपुरम कॉलोनी खंडवा से कमला देवी महोबिया, सपना, शिविक, सलोनी, अनय, अनाया, ईशु और पेंटर बाबू। रामगंज खंडवा से विजय महोबिया, कविता, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू। बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन। चंडीगढ़ से राहुल और रचिता खुराना। शनि मंदिर चौक खंडवा से निशा सैनी, देवकी बाई, दुर्गा। ग्राम पंचायत बठेना पाटन, जिला दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, रेखा कश्यप और इनके बहुत से साथी। राजापुर बिहिया से मोनिका जैन और प्रमिला जैन। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदुलाल सिंगरोल, नारायणी, नोमेश, नेहा, वान्या सिंगरोल। छत्तीसगढ़ सरगांव से नसीब मोहम्मद, सलमा, रेहान, फैजान मोहम्मद। शास्त्री नगर बीड़ से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया और विशाल सपकाल। चरोदा छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन सिद्दीकी, जिशान अहमद और शहना अहमद सिद्दीकी। जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान, मोहिनी, कल्पित चौहान और गर्वी। दतरेंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि और नोखेलाल वर्मा। बोरखेड़ा पितरमल उज्जैन से विनोद मुणत, नेहा, दीपक, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह, कुश मुणत। देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश, कमलेश, गन्नूलाल रजक, मुरली क्षत्री। यादव मोहल्ला सनावत से दिलीप मालाकार, सुनीता, मुस्कान, योगेश और मालाकार परिवार के सभी सदस्य।

0: इस बुधवार एक ही फिल्म से कार्यक्रम में सुनिए कहानी एक अजेय योद्धा की, जिसने पूरे हिंदुस्तान को अपनी तलवार से जीता।
1: जीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते।
0: एक पत्नी जिसने टूट कर भी रिश्तों की मर्यादा निभाई।
2: हीरे में हीरा हो तो उसे कहते हैं कोहिनूर। राव का नाम लेते ही काशी के चेहरे पे आता है नूर।
0: एक प्रेमिका जिसने अपना सब कुछ मोहब्बत के नाम कर दिया। तो तैयार हो जाइए शनिवार वाड़ा की शान, रणभूमि की गर्जना और बाजीराव मस्तानी के अमर प्रेम को महसूस करने के लिए।
3: हमारे दिल एक साथ धड़क।

0: चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते।
1: एक पत्नी जिसने टूटकर भी रिश्तों की मर्यादा निभाई।
2: हीरे में हीरा हो तो उसे कहते हैं कोहिनूर। राव का नाम लेते ही काशी के चेहरे पे आता है नूर।
1: एक प्रेमिका जिसने अपना सब कुछ मोहब्बत के नाम कर दिया। तो तैयार हो जाइए शनिवार वाड़ा की शान, रणभूमि की गर्जना और बाजीराव मस्तानी के अमर प्रेम को महसूस करने के लिए।
3: हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं मस्तानी,
2: और एक साथ रुकते भी हैं।
1: इस बुधवार सुबह 7:20 पर फिल्म बाजीराव मस्तानी।
4: जी हाँ श्रोताओं, एक ही फिल्म से कार्यक्रम तो आप सुनेंगे इस बुधवार प्रातः 7:20 पर। फिल्म होगी बाजीराव मस्तानी। फिलहाल आकाशवाणी खंडवा से आपकी मीते गीत कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं हमारे कुछ और श्रोताओं की फरमाइश। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक, परी, खुशी, वंदना और स्वाति प्रयाग चौधरी। ग्राम राजनी जामनेर से गणेश भाव भवरे, कविता योगिता, ममता भवरे। जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा मीना और विपुल कामड़े, सरिता भवरे। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी। शेरी बडनेर से बलदेव दामोदर, अरुणा दामोदर, अनामिका दामोदर। पिंक सिटी जयपुर एससी से कृष्णा कुमारी, वीणा कुमारी और इनके बहुत से साथी। माँ नर्मदा श्रोता परिवार शिवकोटी ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर से राकेश पप्पू सेन, निशा सेन, ओम, सपना, धर्मेंद्र, मुकेश सेन, द्वारकीबाई और ऋषि सेन। इंदौर लिम्पोदी से गिरधारीलाल चौधरी और मनीषा बाई चौधरी। वैष्णो कॉलोनी सनावर से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा, अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। पंजाब मलोट कैंप से सतीश मिगलानी, सीमा, अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह, लखविंदर संधूर इनके साथ ही। छत्तीसगढ़ बेमेतरा से सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत, वीरेंद्र, ब्रजकांत सारथी। मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, सीमा, शारदा, दामिनी वर्मा। इंदौर से अनिल कवचले, सभिया, फलक, सीमा और इनके साथ ही। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम। शास्त्री नगर खंडवा से रमेश पंचोली, बीनू देवी, प्रकाश उर्मिला, दीपक नंदिनी, निखिल पंचोली। बड़ा आवार से तेजन लीलकंठ, मीरा देवी, शिवानी, पिंकी और राधाबेन। गोयल जीन सनावत से मोहम्मद सुफियान, मोहम्मद हासिम, इशाक। ग्राम डबरापारा सोंगा छत्तीसगढ़ से कोमल सेन, तोषण और विनायक सेन। शिवाजीनगर से दिनेश खोपरखेड़े और मन्नत खोपरखेड़े। तेलंगाना निजामाबाद से अल्लाह बख्श, राबिया, रहीम, मुन्ना। जेल रोड जालंधर से रोशन जहां, नुसरत जहां। रायगढ़ से संदीप और मक्कार जहां। दाई गांव नांदुरा से धोंडू भातुरकर, मंगला विवेक कुमार भातुरकर, प्रतीक्षा कोमल समाधान भातुरकर। कोटवा नारायणपुर बाबा बट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित कुमार, हैप्पी। नवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल राय। गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर और आरती जोगले। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से रांसिर शेख, नाजिया, नासिर, साजिद और इनके बहुत से साथी। समीर का लिखा और जतिन ललित का संगीतबद्ध एक और गीत आप सभी ने सुनना चाहा है, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। फिल्म का नाम है कभी खुशी कभी गम।

आपके मीत ये गीत। अभी आप सुन रहे थे आपके मीत ये गीत कार्यक्रम, आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। अब हम अनुप्रसारित करेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, इस फिल्म का गीत, आवाज और गीत संगीत मित्राज का।

आज वर्ल्ड अस्थमा डे है, एक ऐसा दिन जो हमें अस्थमा जैसी सांस से जुड़ी बीमारी के प्रति जागरूक करता है। अस्थमा में सांस लेने में तकलीफ, सीने में जकड़न और खांसी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन सही देखभाल और नियमित इलाज से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। धूल, धुआं और प्रदूषण से बचाव बेहद जरूरी है, तो आइए जागरूक बने, सावधानी अपनाएं और हर सांस को स्वस्थ, सुरक्षित और आसान बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। और लीजिए अगला गीत आपको सुनवाते हैं विशाल मिश्रा, नेहा भसीन और इरशाद कामिल की आवाजों में। रचना है इरशाद कामिल की, संगीत है विशाल मिश्रा का और इस फिल्म का नाम है बड़े मियां छोटे मियां 2024 वाली।

विशाल शेखर और की आवाज़ों में अब आपको सुनवाते हैं फाइटर फिल्म का ये गीत। कुमार ने इस गीत को लिखा है, संगीत विशाल शेखर का।

इस फिल्म का गीत सुनिए जुबीन नौटियाल और सुवर्णा तिवारी की आवाजों में, और जिल दलाल ने इसे लिखा है तनिष्क बागची का संगीत।

चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं हक फिल्म का गीत। मालिनी अवस्थी और ज्योति मोहन की आवाजें हैं, कौशल किशोर ने इसे लिखा है, विशाल मिश्रा का संगीत।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं भूत बंगला इस फिल्म का गीत, विशाल मिश्रा, नक्श अजीज और अंतरा मित्रा की आवाजों में। कुमार ने लिखा है, धुन बनाई है प्रीतम ने।

और चित्रलोक कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनिए फिल्म भूल भुलैया 3 से। आवाजें हैं पिटबुल, दिलजीत दोसांझ और नीरज श्रीधर की। गीत को लिखा है ध्रुव योगी, समीर और पिटबुल ने, और इस गीत को सुरों में ढाला है तनिष्क बागची, प्रीतम और पिटबुल ने।

भूल भुलैया 3 इस फिल्म के गीत के साथ ही अब चित्रलोक कार्यक्रम को संपन्न करने की नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।

0: एक ज़माना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए,
1: संगीतकार रवि।
0: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियाँ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
2: आप खाए थाली में, हमने कोदे प्याली में।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: आज के फनकार।

0: नमस्कार, हमारे आज के फनकार हैं भारतीय सिनेमा के सुप्रसिद्ध संगीतकार नौशाद।
1: जो

0: 25 दिसंबर सन 1919 को लखनऊ में जन्मे संगीतकार नौशाद की गिनती भारतीय सिनेमा के एक सफल और सुरीले संगीतकार के रूप में होती है। मुंबई आने से पहले नौशाद ने लखनऊ में ही वाद्यों की एक दुकान पर काम किया। इसी संदर्भ में संगीतकार नौशाद के उद्गार।
1: हमारे पास बाजा वाजा तो था नहीं। अब लखनऊ में एक दुकान थी लाडरूस रोड पर, वो वहाँ म्यूजिकल साज तमाम बनते थे। गुरबत अली साहब थे, उनकी ये दुकान थी, उस्ताद गुरबत अली साहब, और उनके वहाँ पियानो, हारमोनियम, सितार, तबला, हर कस्म के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उनके वहाँ बिकते थे, और उनका एक कारखाना था, वहाँ बनते भी थे। हम जाके उनके साजों को देखा करते थे खड़े हुए घंटों। तो वो एक रोज़ उस्ताद ने कहा, बेटा इधर आ, तू ये खड़ा होकर घंटों क्या देखा करता है? मैं देखता हूँ कितने दिनों से तू आता है यहाँ खड़ा रहता, क्या देखा करता है? तो मैंने कहा, उस्ताद ये साज और सामान जो आपके हैं, हारमोनियम, सितार, पियानो, ये सब देखा करता हूँ। तो उस्ताद से मैंने कहा कि आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूँ उस्ताद, पता नहीं मुझे कैसे हिम्मत आई। हाँ कहो बेटा, क्या है? तो मैंने कहा, हुजूर अगर आप हुक्म दें तो सुबह आके मैं झाड़ू वाड़ू दे दिया करूँ और लोबान लोबान दे दिया करूँ यहाँ आके। तो उस्ताद मुझे देख के मुस्कुराए। ऐसे फरिश्ता लोग थे वो साहब, वहाँ से। अच्छा बेटा, वो घामी के तकिए पर उधर मैं रहता हूँ, तुझे घर मालूम? मैंने कहा, हुजूर मालूम है आपका घर? तो कहने लगा, कल सुबह आ जाओ वहाँ। मैं पहुँच गया साहब, उन्होंने चाबी दे दी दुकान की कि जाओ खोल लो दुकान। और मैं जल्दी जल्दी आके दुकान खोल के झाड़ू वाड़ू साफ सफाई करके लोबान वान दे के और पेटी लेके कुछ प्रैक्टिस करना शुरू कर दूं कि उस्ताद के आने से पहले ये अपना रियाज हो जाए। तो ये चलता रहा सिलसिला। वही चीज़ें जो रात को वहाँ सुनी मैंने रॉयल सिनेमा में। तो एक रोज़ उस्ताद आ गए, मुझे नहीं मालूम, मैं आँख बंद के पसीने पसीने लगा हुआ हूँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वो आके पीछे बैठे अपनी मसनत पर, उन्होंने किया, अरे मेरी जान निकल गई कि आ गए उस्ताद। मैंने देखा उस्ताद बैठे, मैं मुजरिम की तरह खड़ा हो गया उनके सामने हाथ बांध के। कहने, अच्छा तो आप इसलिए आते थे कि मेरे नए नए साजों का सत्यानाश करें? आप दुकान साफ करने नहीं आते थे, हाथ साफ करने के लिए आते थे? मैंने कहा, उस्ताद गलती हो गई, आज के बाद ये गलती नहीं होगी, माफ़ कर दीजिए। नहीं नहीं, माफ़ तो नहीं करूँगा, मैं सजा दूंगा इसकी। मैंने कहा कि आप जो भी आपका हुक्म हो सर। आँखों पर कहने लगे कि ये कहाँ से सीखा तुमने जो बजा रहे थे अभी? मैंने कहा, हुजूर वो रॉयल सिनेमा में जाता हूँ मैं, लड्डन साहब वहाँ बजाते हैं तो उनके पीछे बैठ के सुना करता हूँ, तो वो जो सुना वो इसकी प्रैक्टिस करता था मैं। खैर सज़ा तो दूंगा साहब, तैयार हो जाइए सज़ा के लिए। अब मैं हुजूर माफ़ कर दीजिए, इसके बाद कभी नहीं छूँगा। नहीं सज़ा तो दूंगा। तुम्हारे घर में बाजा है क्या? मैंने कहा, जी नहीं। आपकी सज़ा ये है कि ये हारमोनियम जिस पर आप प्रैक्टिस कर रहे थे, मेरा नया हारमोनियम

सत्यानाश कर रहे थे, यह आपको मैं देता हूँ आपकी ये सजा, और प्रैक्टिस किया करो, तुम्हारा हाथ अच्छा, जहन अच्छा है, हैं? और लंदन साहब को मैं एक रोज़ बुला के उनको सुनवाऊँगा, उनसे सीखा करो।

मुंबई में स्वतंत्र संगीतकार के रूप में स्थापित होने के लिए नौशाद को बहुत संघर्ष करना पड़ा। उनकी लगन, मेहनत, धैर्य और समर्पण का सकारात्मक परिणाम सामने आया। सन 1940 में नौशाद को स्वतंत्र रूप से संगीत निर्देशन का अवसर जिस फिल्म के लिए मिला वो थी प्रेम नगर।

संगीतकार नौशाद की धुनों से सजी 35 फिल्मों ने सिल्वर जुबली मनाई, 12 फिल्मों ने गोल्डन जुबली और 3 फिल्मों ने मनाई डायमंड जुबली।

संगीतकार नौशाद शास्त्रीय संगीत के चितेरे थे, लोक संगीत की शैलियों के भी वो मर्मज्ञ थे। नौशाद के संगीत से सजी फिल्म बैजू बावरा भारतीय शास्त्रीय संगीत की मिठास का उदाहरण है। इस फिल्म के लिए नौशाद ने उस्ताद अमीर खान और पंडित डीवी पलुस्कर से पार्श्व गायन करवाया था। फिल्म बैजू बावरा के लिए नौशाद साहब को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

फिल्म मुगले आजम की भी एक रचना भारतीय शास्त्रीय संगीत की खूबसूरत मिसाल है, जिसके लिए नौशाद ने शास्त्रीय संगीत के महान गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का स्वर

सन 1952 में आई फिल्म आन। इस फिल्म के हीरो थे दिलीप कुमार। महबूब साहब की इस फिल्म के लिए नौशाद साहब ने 100 पीस ऑर्केस्ट्रा का इस्तेमाल किया था और उसकी रिकॉर्डिंग लंदन में हुई थी।

सन 1955 में फिल्म उड़न खटोला के एक गीत को नौशाद जी ने बिना ऑर्केस्ट्रा के रिकॉर्ड किया था और वाद्यों के स्थान पर समूह स्वरों का प्रयोग किया था।

गायक मोहम्मद रफी को पार्श्व गायन का पहला मौका नौशाद साहब ने ही दिया था, पहले एक कोरस में और फिर प्रमुख स्वर के साथ। फिल्म थी पहले आप और वो गीत था ये।

नौशाद साहब के संगीत से सजी प्रसिद्ध फिल्म मदर इंडिया का नामांकन ऑस्कर के लिए किया गया था। इस फिल्म के सभी गीत आज भी बेहद लोकप्रिय है।

नौशाद साहब ने डी एन मधोक, शकील बदायूनी, मजरूह सुल्तानपुरी, जिया सरहदी और खुमार बाराबंकवी जैसे चर्चित गीतकारों के साथ काम किया और शायद सबसे ज्यादा गीत संगीतबद्ध किए शकील बदायूनी के।

संगीतकार नौशाद के व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित 5 फिल्मों का निर्माण किया गया। उनके संगीत और जीवन पर आधारित जो किताबें प्रकाशित हुईं, उनके नाम हैं दास्तान नौशाद, आज गावत मन मेरो, नौशाद की कहानी, नौशाद की जुबानी और नोट्स ऑफ नौशाद।

सन 1988 में टीवी धारावाहिक अकबर द ग्रेट के लिए भी नौशाद साहब ने बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोज किया था। लंबे अंतराल के बाद नौशाद जी ने माय फ्रेंड और तेरी पायल मेरे गीत नामक फिल्मों के लिए संगीत दिया।

सन 2005 में ताजमहल एन इटर्नल लव स्टोरी के लिए भी नौशाद साहब ने धुनें तैयार की थी। नौशाद एक उम्दा शायर भी थे। उनकी रचनाओं के संग्रह का नाम है आठवां सुर। भारतीय सिनेमा और संगीत में नौशाद साहब को उनके अमूल्य योगदान के लिए पद्म भूषण के अलंकरण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। भारतीय सिने संगीत के महान कलाकार नौशाद का सुरीला संगीत आज अमूल्य धरोहर है हमारी। उनके कालजय गीत अपने सुरों से यूं ही सम्मोहित करते रहेंगे संगीत प्रेमियों को। 5 मई सन 2006 को संगीत का ये महान साधक इस नश्वर जगत को छोड़कर चला गया, उस सफर पर जहां से लौटकर कोई नहीं आता।

0: के फनकार। आप सुन रहे थे फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार नौशाद पर केंद्रित ये कार्यक्रम। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। जिले की चिट्ठी अब हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है श्योपुर जिले की चिट्ठी। आलेख है अश्विनी बालोटिया का, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। पिछले एक सप्ताह से आंधी और तूफान के साथ हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं लोगों को गर्मी से भी थोड़ी राहत मिली है। शादी विवाह के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के चलते जिले में जिला प्रशासन द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूलों को 4 दिन तक बंद रखा गया था। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को धूप और लू से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की गई तथा लोगों को समझाइश दी गई कि घर से बाहर निकलते वक्त अपने कान व सिर को ढक कर निकले तथा समय समय पर तरल पदार्थ पीते रहें। ज्यादा परेशानी होने पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाकर डॉक्टर से परामर्श लें। कूनो नेशनल पार्क में बाड़े में बंद चीतों को गर्मी से बचाने के लिए भी घास की झोपड़ी और पानी का उचित प्रबंध किया जा रहा है। श्योपुर जिले में 33 सोसाइटियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का कार्य जारी है। अभी तक श्योपुर जिले में 39,895 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है तथा 34,818 मीट्रिक टन गेहूं का परिवहन गोदाम और वेयरहाउस में कर दिया गया है। जिले में समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं के लिए किसानों को अभी तक 86 करोड़ रूपये से अधिक का भुगतान भी कर दिया गया है। जिले में जनगणना कार्य के लिए 1379 HLB अर्थात हाउस लिस्टिंग ब्लॉक बनाए गए हैं, जिन्हें प्रगणकों को

आवंटित किया गया है। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत एकत्र की गई सभी व्यक्तिगत जानकारियां पूरी तरह से गोपनीय रहेंगी और किसी भी न्यायालय जांच या अन्य प्रयोजन के लिए साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं की जा सकेंगी। जिले के 7 प्रगणकों द्वारा 6 एचएलबी में प्रथम चरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। बीते दिनों मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के तहत 27,167 से अधिक श्रमिक परिवारों को 600 करोड़ रुपए की अनुग्रह सहायता राशि का वितरण सिंगल क्लिक के माध्यम से किया गया। श्योपुर जिले में 458 हितग्राहियों को 9,60,00,000 रुपए की राशि अंतरित की गई। पिछले दिनों श्योपुर प्रवास पर आए विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने आदिवासी विकास खंड कराहल के पनवाड़ा ग्राम में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से 2,40,00,000 रुपए की लागत से 4 ग्रामों में बनाए गए मल्टीपर्पज सेंटर का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आदिवासी विकास खंड कराहल के अंतर्गत नौनार सरकार पर आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन समाज सेवा का सबसे बड़ा कार्य है। नौनार सरकार मंदिर परिसर में आयोजित 351 कन्याओं के सामूहिक विवाह सम्मेलन के इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने वर वधुओं को आशीर्वाद दिया। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा गांधी पार्क स्थित विजय स्तंभ का लोकार्पण किया गया और शहर के बाईपास रोड पर 3 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली आधुनिक चौपाटी के निर्माण तथा 19,87,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का इस मौके पर भूमि पूजन किया गया। सांसद निधि से 10,00,000 रुपए की लागत से वार्ड 12 में निर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण भी संपन्न हुआ। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला द्वारा पिछले दिनों राजस्थान के अलवर जिले में सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिजनों से मुलाकात की गई और उनके निवास पर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की गई। उन्होंने शासन की ओर से हर संभव मदद का भरोसा परिजनों को दिलाया। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा बीते दिनों राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का आयोजन किया गया। श्योपुर जिले में ये परीक्षा 3 सेंटरों पर आयोजित की गई जिसमें दोनों पालियों में 692 परीक्षार्थी शामिल हुए। जनपद पंचायत कराहल के सभागार में मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन बीते दिनों किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान 6 बालिकाओं को 1,18,000 रुपए की राशि के प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। प्रदेश भर में संचालित जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत श्योपुर जिले में भी जल संरक्षण एवं जल संवर्धन के प्रगतिरत कार्यों को पूर्ण कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके साथ ही पंचायतों को प्लास्टिक मुक्त पंचायत बनाने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा और जिले में स्थित 40 गौशालाओं में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। श्योपुर जिले की चिट्ठी में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी शिवपुर जिले की चिट्ठी। आलेख अश्विनी बालाचुलिया का था, वाचन था अभिषेक कटियार का, और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
1: जिले की चिट्ठी अभी हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित कर रहे थे। FM 101.2 MHz पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: संबंध
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है श्रोताओं, आप सबका विमलेश का नमस्कार कीजिए स्वीकार
1: और अजीत का भी जोहार और जय जोहार। सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से। रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने लिखा है,
2: भीड़ में बच्चा जब तक अपनों का हाथ पकड़कर चलता है उसे मेला बहुत सुंदर और खूबसूरत लगता है, पर वही बच्चा अगर अपनों से बिछड़ जाए तो वही मेला उसे डरावना और नीरस लगने लगता है।
1: दुनिया के मेले में भी हम सब की स्थिति भी यही है। जब तक हम अपनों से जुड़े हुए हैं, उनका हाथ थामे हुए हैं, दुनिया हमें सुंदर लगती है। इसीलिए हमेशा अपनों का साथ और हाथ थामे रहिए।
2: जी, बहुत ही सुंदर विचार भेजा है आप लोगों ने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जब सोशल मीडिया और आधुनिक

0: की दौड़ में लोग एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं। बहुत जरूरी है कि हम अपने सामाजिक पारिवारिक ताने बाने को संभाल कर रखें, खासकर बच्चों और बड़े बुजुर्गों को जरूर समय दें।
1: अगला संदेश हमें मिला है मेन रोड तेल्हारा से प्रकाश पोहरकर, नर्मदा पोहरकर, कुमारी सुजाता पोहरकर का। लिखते हैं,
0: आदरणीय अजीत जी एवं विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। दिनांक 3 अप्रैल 2026 को प्रसारित हुआ कार्यक्रम हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रभावशाली लगा। आयुर्वेद के इस गौरवशाली इतिहास और उसकी वैज्ञानिकता को साझा करने के लिए आप दोनों का हार्दिक धन्यवाद।
1: आपको भी धन्यवाद।
0: ऐसी जानकारी आसानी से नहीं मिलती। एनसीईआरटी उमंग की पूरी टीम को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दिनांक 8 अप्रैल 2026 को प्रस्तुत आसमान गिरा, ये कार्यक्रम हमें बाल कथा के रूप में बेहद पसंद आया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी भी बात पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए और हर काम सोच समझ कर करना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। बच्चों के लिए इतनी सुंदर और शिक्षाप्रद कहानी प्रस्तुत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी।
0: धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने लिखा है, 3 अप्रैल को कार्यक्रम उमंग में वैदराज जीवक के बारे में जानकारी सुनने को मिली जो बहुत अच्छी लगी। आपका कार्यक्रम जानकारी से भरपूर होता है। उमंग परिवार के साथ लेखक और प्रस्तुतकर्ता को बहुत बहुत बधाई।
1: और अगला संदेश हमें मिला है ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया और श्रीमती कल्पना चंसोलिया जी का।
0: कृष्णा पार्क दिल्ली से आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर, अकरम आसमा फकीर।
1: आपके संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। आपसे निवेदन है, इसी तरह से लिखते रहिए और सुनते रहिए हमारा आपका सबका चहेता कार्यक्रम उमंग। स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर सी कविता से।
0: जी अजीत जी, श्रोताओं, जब ये कविता कही जाए तो आपको अंदाजा लगाना है कि ये कविता किस पर है। जल निधि चहु ओर अपार, प्रकृति का ये कैसा विस्तार, दिखता नहीं है आर पार, लहरों में छिपा अनंत संसार।
1: क्या बात है, दिखता नहीं है आर पार, लहरों में छिपा है अनंत संसार। और आगे लिखा है, गहराई इसकी अति गंभीर, रहस्य भरे इसमें शरीर, जीवों का अद्भुत परिवार, सृष्टि का ये अनुपम उपहार।
0: तो श्रोताओं, लगा कुछ अंदाजा?
1: जरूर लगा लिया होगा। यदि आपका अंदाजा समुद्र है तो श्रोताओं, आप बिल्कुल सही हैं। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे समुद्र और उसके रहस्यमय दुनिया की। तो आइए जानते हैं समुद्र की कुछ रोचक बातों को।
0: तो अजीत जी, पहला प्रश्न ये उठता है कि समुद्र या सागर क्या है?
1: विमलेश जी, कहा जा सकता है कि समुद्र पृथ्वी पर फैला हुआ विशाल खारे जल का क्षेत्र है।
0: जी,
1: पृथ्वी का लगभग 71% भाग समुद्र से ढका हुआ है।
0: जी,
1: लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है।
0: वो क्या?
1: वो ये है कि कुछ लोग इसे समुद्र कहते हैं तो कुछ इसे सागर कहते हैं।
0: जी,
1: लेकिन महासागर भी तो हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि सागर और महासागर में क्या अंतर है?
0: बहुत अच्छा प्रश्न अजीत जी। देखिए, पहली बात है आकार या क्षेत्रफल। सागर आकार में छोटा होता है, जैसे अरब सागर, और महासागर बहुत विशाल होता है, जैसे प्रशांत महासागर।
1: जी, तो मुझे लगता है कि स्थिति या लोकेशन भी मायने रखती है।
0: जी,
1: जैसे महासागर पृथ्वी के बड़े और खुले हिस्सों में फैले होते हैं, जबकि सागर अक्सर महाद्वीपों के बीच होते हैं।
0: जी अजीत जी, एक और महत्वपूर्ण बात, और वो है गहराई। महासागर अधिक गहरे होते हैं, जबकि समुद्र या सागर थोड़े कम गहरे होते हैं। वैसे ध्यान से देखा जाए तो सभी सागर अपवादों को छोड़कर महासागरों से जुड़े होते हैं।
1: विमलेश जी, इसे हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का सागर हिंद महासागर से जुड़े हुए हैं।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब जानते हैं कि पृथ्वी पर कितने महासागर हैं। आपसे शुरू करें।
1: जी, प्रशांत महासागर, ये सबसे बड़ा और गहरा महासागर है।
0: जी,
1: दूसरा है अटलांटिक महासागर, ये यूरोप और अमेरिका को अलग करता है। अब आपकी बारी है।
0: और तीसरा महासागर है हिंद महासागर, ये एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है, और ये सभी महासागरों में सबसे गर्म माना जाता है। फिर चौथा है दक्षिणी महासागर, ये अंटार्कटिका के पास है, इसे अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं।
1: और पांचवा महासागर है आर्कटिक महासागर, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा महासागर है। आपको विशेष रूप से बता दें कि विश्व व्यापार का सबसे बड़ा माध्यम महासागर और समुद्र ही हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी, श्रृंखला ये भी जानिए मैं। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से, प्रश्न है,
1: तो प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए।
1: श्रोताओं, 8800440559 हमारा IBRS नंबर है और हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
0: आप इन पतों पर अपने

0: संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप सीआईटी एनसीईआरटी को फॉलो करना मत भूलिएगा।
1: जी,
0: इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है माय नेम।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक टेकपाठ पर आधारित है, जिसमें एक मक्खी अपना नाम भूल जाती है। वो कई पशु पक्षियों के पास जाती है और अंत में बड़े मजेदार ढंग से उसे अपने नाम का पता चलता है। लेकिन कैसे, आइए सुनते हैं।
2: Once there was a little fly. One day he could not remember his name. He tried and tried to remember it, but it was of no use. He had forgotten his name. He asked an ant.
3: Ant, do you know my name? I don't know. You may ask the tree I climb. Dear tree, do you know my name?
4: I don't know. You may ask the cow sleeping in my shade.
2: The fly went near the cow and asked,
3: Dear cow, do you know my name? I don't know. You may ask the grass I ate.
2: The fly went to the grass and asked,
3: Dear grass, do you know my name?
5: I don't know. You may ask the leaves fallen on me.
2: The fly asked a leaf fallen on the grass.
3: Dear leaf, do you know my name?
2: The leaf was about to answer when the wind blew. The leaf began to fly. Seeing this, the fly remembered his name.
3: Oh, my name is Fly.

0: What do you hear? Can you recognize the sounds? Can you make these sounds? Note to the teacher. Help children find the meanings of their names as it is related to their identity.
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम माय नेम और अब सुनते हैं कार्यक्रम
2: मौलाना अबुल कलाम आजाद।
1: ये कार्यक्रम भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद के जीवन और देश के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान की जानकारी देता है।
3: मौलाना अबुल कलाम आजाद।

0: ये गजल है भारत के मशहूर राष्ट्रवादी नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद की। सन 1888 में उनका जन्म मक्का में हुआ। उनके बचपन का नाम गुलाम मुहीउद्दीन अहमद था और आजाद बाद में उनका तखल्लुस यानी उपनाम बना।
1: उनके पिता मौलाना खैरुद्दीन बहुत बड़े विद्वान और धर्मशास्त्री थे। उनकी वालिदा आलिया बहुत नेक और रहमदिल थीं। वे मदीना के प्रसिद्ध विद्वान की पुत्री थीं। बालक अबुल कलाम को पढ़ाई का माहौल विरासत में मिला। उनके जन्म के कुछ साल बाद उनके वालिद को एक दुर्घटना में चोट लग गई। वे इलाज के लिए कलकत्ता आ गए और कलकत्ता में ही बस गए। अब सवाल बालक अबुल कलाम की शिक्षा का था, तो उनके पिता ने उन्हें घर पर ही शिक्षा दिलवाई। मजहबी परिवार में पैदा होने की वजह से दीनी तालीम पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया।
2: मेरा सपना है मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा और मजहबी इंसान बने। मुझे यकीन है मेरी परवरिश और उसको मिली तरबियत एक दिन जरूर रंग लाएगी। वो बड़ा होकर मेरे सपने को साकार करेगा।
1: पर बालक अबुल कलाम के बचपन के खेल तो निराले हुआ करते।
3: इसको इधर लगा देता हूँ।
4: अरे ये क्या कर रहे हो अबुल? ये सारे बक्से एक लाइन में क्यों लगा दिए?
3: रुको, मैं अभी अम्मी से तुम्हारी शिकायत करती हूँ। जब मार पड़ेगी ना तब पता चलेगा तुम्हें।
5: ना ना, ऐसा ना करना फातिमा आपा। ये तो रेलगाड़ी बनाई है मैंने,
3: पता है क्यों?
5: क्यों? ताकि अब आप लोग संदूक पर चिल्ला चिल्ला कर कहें, हटो हटो, रास्ता दो, दिल्ली के मौलाना आ रहे हैं।
3: लेकिन भाई यहाँ तो कोई आदमी है ही नहीं, हम किससे कहें रास्ता दो?
5: अरे
3: ये तो खेल है। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? नीचे उतरो गिर जाओगे।
5: नहीं गिरूंगा आपा, बस आप लोग मेरे बोलने के बाद तालियां बजाएं।
3: क्यों तालियां क्यों बजाएं हम?
5: भूल गई, मैं भाषण दे रहा हूँ।
3: अच्छा तो ये बात है।
0: उनका बचपन दूसरे बच्चों से अलग था। उनके खेल इस तरह के हुआ करते कि उनके घर वाले भी हैरान रह जाते। शायद वो उन खेलों के जरिए ये बताना चाहते थे कि वे भविष्य में क्या बनेंगे। मासूम बचपन के पास निराले खेलों में एक जिंदगी देखने को मिलती।
1: वक्त बीतने के साथ साथ जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उनका पढ़ाई की तरफ रुझान बढ़ता गया। नतीजा ये हुआ कि उनके शौक को देखकर उनके पिता ने कई अध्यापक रख दिए। ये सभी अध्यापक उन्हें अलग अलग विषय पढ़ाया करते। अबुल कलाम बड़े मेहनती छात्र थे। 16 वर्ष की आयु में ही अनेक विषयों का गहन अध्ययन उन्होंने पूरा कर लिया। इसी उम्र में अन्य विद्यार्थियों को दर्शन शास्त्र, गणित और तर्क शास्त्र पढ़ाकर उन्होंने अपनी योग्यता दिखा दी।
0: उनकी शिक्षा धार्मिक वातावरण में पुरानी परंपरा के अनुसार

0: सार हुई। इस बीच उन्हें कुछ ऐसे लेख पढ़ने को मिले जिन्हें पढ़कर उन्हें यह महसूस हुआ कि आधुनिक विज्ञान और समाजशास्त्र पढ़ना भी बहुत जरूरी है। उन्होंने अंग्रेजी सीखनी शुरू की और जल्द ही विभिन्न विषयों की पुस्तकें पढ़ने लगे। वे 14 साल की उम्र से ही शेर कहने लग गए थे। वे बहुत कम उम्र से ही आजादी के आंदोलन से प्रभावित हो गए थे। परंपरागत रूढ़ियों के विरुद्ध मौलाना के मन में विचारों का संघर्ष आरंभ हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपना रास्ता खुद बनाएंगे। इसी समय उन्होंने अपने नाम के साथ आजाद लगाने का निश्चय किया और वे मौलाना अबुल कलाम आजाद कहलाने लगे। वे बहुत अच्छे लेखक और वक्ता थे, इसलिए उन्होंने अपनी कलम के सहारे देश की जनता को प्रेरित करने का निश्चय किया।
1: उन्होंने तर्जुमानुल कुरान किया। उनके कई लेख लाहौर के पैसा, लखनऊ के अल अवध और अमृतसर के वकील अखबारों में छपे। समय के साथ साथ उनके लेखों से लोगों के बीच उनकी शोहरत बढ़ने लगी।
0: बीसवीं सदी का आरंभ। देश में क्रांतिकारी आंदोलन जोर पकड़ रहा था और बंगाल इसका मुख्य केंद्र था। अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भेदभाव पैदा करके इस आंदोलन को कमजोर करना चाहते थे। 1905 में उन्होंने बंगाल का विभाजन करने का निश्चय किया। पूरे देश में जमकर विरोध हुआ। इसी बीच मौलाना आजाद बंगाल के क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और उनकी सहायता की। वे चाहते थे कि मुसलमान स्वतंत्रता संग्राम में हिंदुओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें और अंग्रेजी शासन समाप्त करने की भरपूर कोशिश करें।
1: मौलाना के मन में ये विचार जमता चला गया। उन्होंने अनुभव किया कि भारतीय मुसलमानों को आजादी के आंदोलन से जोड़ने और जनमत तैयार करने के लिए एक अच्छा उर्दू पत्र निकालना जरूरी है। अल हिलाल पत्र का जन्म इसी निश्चय का सुफल था। अल हिलाल को लोकप्रिय बनाने के लिए उसमें बेहतर से बेहतर पठनीय सामग्री का समावेश किया गया और उसके गेटअप को भी उतना ही खूबसूरत बनाया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि अल हिलाल उर्दू पढ़ने वालों का सबसे प्रिय पत्र बन गया। ये थी कुशल पत्रकार के रूप में मौलाना अबुल कलाम आजाद की जोरदार सफलता। अल हिलाल का निकलना था कि उर्दू पत्रकारिता के इतिहास ने एक नया मोड़ ले लिया। लोगों में क्रांति की लहर दौड़ गई। ये अखबार इतना मशहूर हुआ कि 3 महीने में ही सभी पुराने अंक दोबारा छापने पड़े, क्योंकि लोग दोबारा उसे शुरू से पढ़ना चाहते थे। अल हिलाल के जरिए क्रांति की जो आवाज उठी, उससे ब्रिटिश सरकार परेशान हो गई और वो जब्त कर लिया गया। तब अबुल कलाम ने दूसरा पत्र अल बलाक 1915 ईस्वी में प्रकाशित करना शुरू कर दिया।
0: ब्रिटिश सरकार ने समझ लिया कि इसके जादू का जोर प्रेस एक्ट का सहारा लेकर नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि अल बलाक की भी वही शान थी। अप्रैल 1916 में मौलाना को कलकत्ता छोड़ देने पर मजबूर कर दिया गया। पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मौलाना के प्रवेश पर पहले ही पाबंदी लग चुकी थी। वे कलकत्ता से रांची आ गए। 6 महीने बाद ही वहां उन्हें नजरबंद कर लिया गया और वे 3 साल बाद छूटे। रांची की कैद ने मौलाना को अब राजनीति के क्षेत्र में पूरी तरह उतार दिया और वे कुशल पत्रकार, पूरे देश के चहेते नेता बनकर उभरने लगे थे।
1: जेल से छूटने के बाद मौलाना कुछ दिनों तक तो सारे देश के

0: दौरे में लगे रहे और तभी वे गांधी जी से मिले। गांधी जी तो उनसे पहले से ही मिलना चाहते थे। पूरे देश में असहयोग आंदोलन की एक आग सी फैल रही थी। मौलाना आजाद अब पूरी तरह राजनीति के क्षेत्र में उतर आए थे। भारतीय जनता को जगाने, विशेष रूप से मुसलमानों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध रोष पैदा करने का अब एक विशेष अवसर हाथ लगा था। उन्हें प्रकृति ने लेखन शक्ति और वाक शक्ति दोनों उच्च कोटि की दी थी।
1: स्वराज उस समय तक निरर्थक है जब तक ये गरीब और अमीर के अंतर को नहीं मिटाता, और मेरे विचार से खादी का आम व्यवहार ही ये अनुभूति उत्पन्न कर दे कि हम भी इन लाखों गरीब भाइयों में से हैं जो इस देश में बसते हैं। क्या हमारी इच्छा नहीं कि हमारे बदनसीब भाई हमारे कंधे से कंधा मिलाकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लें और स्वतंत्रता प्राप्ति से आनंद विभोर हों?
0: सितंबर 1923 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता के लिए मौलाना का नाम आया। मौलाना की उम्र उस समय केवल 35 वर्ष की थी, जो अब तक के अध्यक्षों को देखते हुए काफी कम उम्र थी। 1923 में वे पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और खुशकिस्मती से 1940 में दोबारा यही पद उन्हें हासिल हुआ। इस बार वे 6 साल तक अध्यक्ष रहे। कांग्रेस का एक पार्लियामेंट्री बोर्ड यानी संसदीय समिति बनी। वे उसके सदस्य घोषित किए गए। उनके जिम्मे बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, सिंध और सीमांत प्रांत के संसदीय मामले थे। उन्होंने उन मामलों को बखूबी सुलझाया। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में ही मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था,
1: आज भारत में न किसी हिंदू संगठन की जरूरत है न मुस्लिम संगठन की, हमें केवल एक संगठन की जरूरत है और वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस।
0: मौलाना आजाद कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सभी प्रांतीय नेताओं से मिलते रहे। भारत छोड़ो आंदोलन जोरों से शुरू हो गया था। हजारों लोग गिरफ्तार हुए। मौलाना को भी 8 अगस्त 1942 को फिर गिरफ्तार कर लिया गया और वे 1945 तक जेल में रहे।
2: भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनकी पत्नी का देहांत हो गया, मगर वे इस दुख को सब्र के साथ सह गए। उन्होंने उस गम को चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया।
0: उनका चरित्र आदर्श था। एक जगह उन्होंने स्वयं लिखा है,
1: 1918 से जिन बातों का संकल्प लिया है उनमें से एक बात यह भी है कि मेरे खिलाफ चाहे कोई कितना कुछ क्यों न कहे या लिखे, अपने दिल में उसके लिए कोई शिकायत पैदा न होने दूंगा। अपना दामन कांटों से उलझाओ और जरूर उलझाओ, मगर इतनी सख्त बाकी रहे कि जब चाहो निकाल लो।
2: 15 अगस्त 1947, देश आजाद हुआ। आजाद भारत के वे पहले शिक्षा मंत्री बने। उन्होंने पुरुषों से ज्यादा महिला शिक्षा पर अधिक जोर दिया। उनका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य रहा ललित कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अकादमियों की स्थापना। उन्होंने साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी की स्थापना की और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थापित करने के लिए साधन उपलब्ध कराए। उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा के अनेक कार्यक्रम शुरू किए।
0: मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का गठन किया और

0: नागपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना उनकी इस क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इससे इंजीनियरिंग की उच्च व श्रेष्ठ शिक्षा के काम को बढ़ावा मिला।
1: ऐसी आला शख्सियतें बार बार जन्म नहीं लेती और उनके दुनिया से चले जाने के बाद भी हम उन्हें कभी भूल नहीं पाते। मौलाना अबुल कलाम आजाद महान नेता, महान राजनीतिज्ञ, महान लेखक, महान वक्ता सभी कुछ थे। उनमें एक साथ अनेक गुणों का समावेश था।
0: 22 फरवरी 1958 को इस महान देशभक्त का देहांत हुआ। वे अंतिम क्षणों तक शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत रहे। महात्मा गांधी ने कहा था,
2: मुझे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के साथ देशी और कौमी सेवा करने का गौरव प्राप्त है। इनकी राष्ट्रीयता उतनी ही दृढ़ है जितना उनका इस्लाम पर ईमान और

0: मौलाना अबुल कलाम आजाद, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: आकाशवाणी खंडवा से अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।
4: इस बुधवार एक ही फिल्म से कार्यक्रम में सुनिए कहानी एक अजेय योद्धा की, जिसने पूरे हिंदुस्तान को अपनी तलवार से जीता।
5: जीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते।
4: एक पत्नी जिसने टूट कर भी रिश्तों की मर्यादा निभाई।
6: हीरे में हीरा हो तो उसे कहते हैं कोहिनूर। राव का नाम लेते ही काशी के चेहरे पे आता है नूर।
4: एक प्रेमिका जिसने अपना सब कुछ मोहब्बत के नाम कर दिया।
7: कहती है ये दीवानी मस्तानी हो गई।
4: तो तैयार हो जाइए, शनिवार वाड़ा की शान, रणभूमि की गर्जना और बाजीराव मस्तानी के अमर प्रेम को महसूस करने के लिए।
8: हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं मस्तानी,
9: पर एक साथ रुकते भी है।
4: इस बुधवार सुबह 7:20 पर फिल्म बाजीराव मस्तानी।
10: ईछे निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
3: निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा से प्रस्तुत है फरमाइशी निमाड़ी लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंजिनी, प्रस्तुति विशाखा सोनी की।

0: लोक रंजनी।
1: लोक रंजनी कार्यक्रममां आज आपका साथ छे आपकी बहन विशाखा। सबै भाई बहन ने कमारी राम राम। भाई बहन होनी, गर्मी का इना दिन नम हम सबै नख अपना स्वास्थ्य को ध्यान रखनु जायजे। इना दिन नम सूर्य की तपन इतनी तेज रहे कि दोपहर का समय में तो घर से बाहर निकलने को मन नहीं करतो है। भाई बहन होनी, असी तपती दोपहरी में घर से बाहर जानू स्वास्थ्य का लेना नुकसानदायक हो सकज। एका लेना जी भी जरूरी कार्य होए सुबह या शाम का समय में निपटाई लेनु चाहिए। साथ ज गर्मी का इना दिन नम आशा ठंडा

पेय पदार्थ न को हमको सेवन करता रहना चाहिए जी की हमको पोषण भी दे, ठंडक भी दे और हमारा शरीर में पानी की कमी की पूर्ति भी करता रहे। भाई बहनों ये तो थी आपकी ना हमारी थोड़ी सी बातचीत। न अब आपका इंतजार होएगा आपकी पसंद का फरमाइशी निमाड़ी लोकगीत न को, तो शामिल करांज आपका पत्र नख आना सुनी लेवांज आपकी पसंद का फरमाइशी निमाड़ी लोकगीत। ये पहला निमाड़ी लोकगीत का लेना हमारा पास पत्र आया जिनका लिखने वाला छे घंटाघर चौक खंडवासी संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, सन्मित हेमेंद्र न सन्मति पंचोलिया, पीरान पीरोर सनावत से मानक चंद्र राठौर, दीपेश कुमार, शकुंतला राठौर, पहल कुमारी, दीपिका कुमारी, सपना कुमारी, यश कुमार, राजा राठौर, न बागोद से संतोष गुर्जर, कवर कॉलोनी बड़वाहा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति शिवानी, मीनूरा श्रीमाली, ग्राम जसवाड़ी से दुर्गेश नागनपुरे, वंदना बाबू, दिव्यांश, सूरज कुमार ढक से, रामनगर रोड शांतिनगर इंदौर से कुमारी देविका चौधरी, कविता, संजय, मनीष, ब्रोनो खर्चे, गणेश, कार्तिक खर्चे, संजना परी, ललिता नारायण खर्चे, स्वाति प्रयाग, न मालती चौधरी, आप सभी ने पसंद करियो देवेंद्र सिंह सोलंकी को गायो ई निमाड़ी लोकगीत।

अगला फरमाइशी निमाड़ी लोकगीत का लेना हमारा पास पत्र आया जिनका लिखना वाला छे बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन से विनोद मुणत नेहा जैन दीपक मयंक चेतन नाहटा दिलीप सिंह पवार दीक्षा कुशमुणत सागर से हेमंत जोशी बबन राव जोशी मनीषा जोशी अभिजीत करिश्मा ताई अशोक देशमुख यादव मोहल्ला सनावत से दिलीप मालाकार योगेश मालाकार सुनीता मालाकार मुस्कान मालाकार मोटका माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल कमला पटेल मन मानस ज्योति ललित अंतिम कनिका पटेल ने इनका परिवार का सभी सदस्य आप सभी नना पसंद करो हेमलता उपाध्याय को गायो ई निमाड़ी लोकगीत

अगला निमाड़ी लोकगीत का लेना पत्र आया, जिनका लिखने वाला छे दुर्गा चौक जूना पानी सनावत से कालू सिंह बड़ोले, सीताराम बड़ोले, हीरालाल, तेर सिंह डावर, साहिल, हरिओम, विशाल, सुमन, रमा, कंचन, इनका परिवार का सभी सदस्य। ग्राम रतनपुर तहसील झिरन्या से भागीरथ नायक, जितेंद्र नायक, सुभाष, रविन्द्र, शिवानी, अश्विनी, हर्षराज, अरविंद्र, आदित्य, गुनगुन, इनका परिवार का सभी सदस्य। रिंगणी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, शिवकोठी ओंकारेश्वर से पप्पू सेन, निशा सेन, इनका परिवार का सभी सदस्य। ग्राम खेड़ी से भैयालाल पटेल, नर्मदा पटेल, नीतीश पटेल, मंजुला पटेल, इनका परिवार का सभी सदस्य। आप सभी ने पसंद करियो साधना उपाध्याय को गायो ए निमाड़ी लोकगीत।

भाई बहनोहणी, लोकरंजनी कार्यक्रम में पत्र लिखने का लेना हमारो पतो छे लोकरंजनी कार्यक्रम द्वारा कार्यक्रम प्रमुख आकाशवाणी सिविल लाइन खंडवा न खंडवा को पिन कोड छे 450001। एका साथ है अपना कार्यक्रम को समय यहाँ ज पूरो हुई रोज आपके बहन विशाखा का आज्ञा देव। राम राम।

0: लोक रंजनी।
1: आप सुन रहे थे फरमाइशी निमाड़ी लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंजनी, प्रस्तुति विशाखा सोनी की। आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। अब हम अनुप्रसारित करेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

हम सुन रहे थे ये गीत शिखर फिल्म से जगजीत सिंह और साथियों की आवाज में, सुधाकर शर्मा के बोल और विजू शाह के संगीत के साथ।

प्यार का पहला खत इस एल्बम से सुन रहे थे हम ये नगमा, जिसे गाया जगजीत सिंह ने और जिसे लिखा हस्ती ने, और जगजीत सिंह ने ही इसे संगीतबद्ध किया। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग।

नई दिशा एल्बम से हम ये सुन रहे थे, ये नगमा जगजीत सिंह की आवाज़ में। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे लिखा और जगजीत सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया।

0: यूनिक एल्बम से जगजीत सिंह की आवाज, उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए कैफ भोपाली के बोलों के साथ इस नगमे को सुन रहे थे हम। आइए सुनते हैं एक संदेश।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

हम सुन रहे थे ये नगमा तुम तो नहीं हो एल्बम से, जगजीत सिंह की आवाज़ में डॉक्टर बशीर बद्र के बोल हैं और जगजीत सिंह ने ही इसे संगीतबद्ध किया है। आइए सुनते हैं अगला नगमा जो कि ट्रैफिक सिग्नल फिल्म से है, जगजीत सिंह की आवाज़ में गुलजार की पोल और जगजीत सिंह ने ही इसे संगीतबद्ध किया है। आप रंग तरंग कार्यक्रम में सुन रहे हैं सुनहरे नगमे।

द लेटेस्ट ऑफ जगजीत सिंह चित्रा सिंह गजल्स हम सुन रहे थे। ये गजल जगजीत सिंह की आवाज़ में, जिसे लिखा सुदर्शन फ़कीर ने। आइए सुनते हैं अगली खूबसूरत सी गज़ल को, जो सोज़ एल्बम से है, जिसे पंकज उदास ने बनाया है जगजीत सिंह की आवाज़ में, जावेद अख्तर के बोल और जगजीत सिंह के संगीत के साथ।

दीपिका सजाई और उन्हें आवाज दी सिलसिले एल्बम से सुन रहे थे हम ये प्यारा सा नगमा। और आइए सुनते हैं अगला नगमा, बड़ा खूबसूरत सा है और इसे भी गाया है जगजीत सिंह ने, शाहिद कबीर ने इसे बोल दिए हैं और जगजीत सिंह ने इसे अपनी आवाज़ लता मंगेशकर के साथ में दी है। जगजीत सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया है, सजदा एल्बम से है ये नगमा।

मिर्ज़ा गालिब गज़ल एल्बम से हम सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज़ में उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए इस शेर को मिर्ज़ा गालिब की लिखनी से कलम से निकले हुए। आपके साथ रंग तरंग कार्यक्रम में बस इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, हम थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि विकास सहयोग भारत और जमैका के बीच साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। डॉक्टर जयशंकर जमैका के विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट सदस्यों के साथ अपनी बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया और सहयोग को और मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे गए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए और डिजिटल परिवर्तन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, खेल और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में हाल ही में संपन्न हुए समझौता ज्ञापनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की, ताकि जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने फिलीपींस के प्रवासी कामगार विभाग के मंत्री हंस ल्यूक कैगडेक से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने प्रवासियों के आवागमन और पलायन से जुड़े साझा मुद्दों पर सहयोग के बारे में चर्चा की। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में हुए हमले में 3 भारतीय नागरिकों के घायल होने की घटना को अस्वीकार्य बताया है। कल ईरान के ड्रोन हमले में फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने इस शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया है और इस संघर्ष में नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुकूल होर्मुज जलडमरों मध्य में मुक्त और निर्बाध आवाजाही की भी अपील की। मंत्रालय ने कहा है कि भारत मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान में सभी प्रयासों में सहयोग देने के लिए तैयार है। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी नेताओं ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का स्वागत किया है और इसे ऐतिहासिक जनादेश तथा राज्य में सुशासन, सुरक्षा और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया है। प्रख्यात भारतीय

0: अमरीकी नेता डॉक्टर भरत बराई ने इस परिणाम को राज्य की जनता की विजय बताया और पिछली सरकार पर राज्य की सभी संसाधनों का दुरुपयोग करके माफिया साम्राज्य को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर अदापा प्रसाद ने भाजपा की इस अभूतपूर्व ऐतिहासिक जीत पर बंगाल और असम की जनता को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया है। कल शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में चुनाव परिणामों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम की जनता तथा पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 20 से अधिक राज्यों में भाजपा एनडीए सरकारें सत्ता में हैं।
1: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली के सिया पार्क स्थित कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में श्री नवीन ने विधानसभा चुनाव के परिणाम पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संस्कृति और विरासत का संरक्षण करते हुए देश को विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पार्टी सांसद बांसुरी स्वराज ने भी कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश में एक मजबूत अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। नई दिल्ली में आज आईआईटी मद्रास तकनीकी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने नवाचार संचालित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। मध्य चीन के हुनान प्रांत में आतिशबाजी के कारखाने में हुए विस्फोट में 21 लोग मारे गए और 61 अन्य घायल हो गए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में।

हम सुन रहे थे ये गीत बैजू बावरा फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में शकील बदायूनी के बोल और नौशाद के संगीत के साथ। आज नौशाद का स्मृति दिवस है, तो चलिए आज की यादों की महफिल में हम उन्हें ही याद करते हैं और सुनते हैं उनका ही एक और गीत जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। शकील बदायूनी के ही बोल हैं और फिल्म है उड़न खटोला।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल, और आज की यादों की महफिल हमने सजाई है नौशाद की गीतों के साथ। आज नौशाद का स्मृति दिवस है, तो हम सुन रहे हैं संगीतकार नौशाद के संगीत से निकले हुए गीतों को। आज लेते हैं अगला गीत उड़न खटोला फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज में, शकील बदायूनी के बोल।
1: चले आज तुम जहां से

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
5: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और हमने सजाई है

हम सुन रहे थे अनमोल घड़ी फिल्म का यह गीत, नूरजहां ने जिसे गाया तनवीर नकवी के बोल और नौशाद के संगीत से सजा हुआ यह सुंदर सा गीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में अगला गीत, जो कि है फिल्म अमर से, लता मंगेशकर ने गाया है, शकील बदायूं ने बोल दिए हैं और नौशाद ने दिया है संगीत।

हम सुन रहे थे ये गीत कोहिनूर फिल्म से लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में शकील बदायूनी के बोल और संगीतकार नौशाद के संगीत से निकले हुए खूबसूरत से नगमों को। आइए सुनते हैं अगला नगमा नौशाद के ही संगीत से सजा हुआ, गंगा जमुना फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ है, शकील बदायूनी के हैं बोल।

साज और आवाज फिल्म के इस गीत को सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, नौशाद के खूबसूरत से संगीत के साथ।

0: धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं इस खूबसूरत से कार्यक्रम में नौशाद के संगीत से सजे हुए इस गीत को।

हम सुन रहे थे ये गीत मदर इंडिया फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में शकील बदायूनी के बोल और नौशाद के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का अंतिम गीत मेरी महबूब फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में शकील बदायूनी के बोल और संगीतकार नौशाद के संगीत से सजी हुई सुमधुर सी तरन्नुम को।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर सुनेंगे बस थोड़ी ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। ये सुरीला सफर शुरू होता है अब जब हम एक इबारत के साथ आपके बीच में आते हैं, और वो इबारत, वो बात, वो जज्बात हमने जो आपके साथ साझा किए वह यह थे कि सरिता बहती है सागर में जाकर मिलती है। वैसे ही जीवन संगीत बहाव का नाम है, तो चलिए चलते हैं सुमधुर गीतों के साथ विविध भारती को।

चाहने वाले जब उसे सुबह से लेकर सांझ तक और रात्रि तक चाहते हैं और सुनते हैं तो अपना बचपन जी लेते हैं। कई स्मृतियां और मन के भाव जाग उठते हैं जो स्वप्न की लीला में सो गए थे कहीं जाकर। यही से आरंभ होता है एक ऐसी प्रेम कहानी का जो शिखर यात्रा की ओर बढ़ती जाती है और हौले हौले बढ़ती जाती है। पर्वत, नदी, वन, उपवन होते हुए यात्रा गीत संगीत पर ही समाप्त हो जाती है। और आज हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें पहले ही लिखकर भेज दी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे श्रोता हमसे ज्यादा होशियार हैं, समझदार हैं, और उनकी समझदारी को हम प्रणाम करते हैं। और उसी समझदारी के साथ हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीजें दी हैं। जैसे हमारे श्रोताओं में से एक श्रोता ने बड़े अच्छे से उत्तर दिया है कि पर्वत, नदियां, वन, उपवन, प्रकृति का यह पावन नंदनवन, कल कल बहती नदियां गाएं, पहाड़ शीश झुकाएं, धरती का यह सजल रूप मन को भाए, हर पल पर्वत, नदियां, वन और उपवन। कितना बढ़िया लिखा है ना आपने। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जो शब्द मुझे समझ में आ रहे हैं वो निम्नलिखित हैं कि सरिता, सागर, संगीत, बहाव, सुबह, सांझ, रात्रि, स्वप्न, स्मृतियां, बचपन, प्रेम कहानी, यात्रा, हौले हौले, पर्वत, नदी, वन, उपवन, यही सांझ सवेरा, यही है वो सांझ सवेरा, ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, बचपन की मोहब्बत को जाने। कितने सारे गीत इन्होंने बता दिए। हमारे एक श्रोता ने लिखा है यही वो सांझ हो सवेरा, बचपन के दिन भी क्या दिन थे। पर बढ़िया, बहुत खूबसूरत बातें आप लिख रहे हैं और आपके जो भी जज्बात हैं उन्हें और पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन पढ़ते पढ़ते ख्याल आया कि जब यह इबारत मैं लिख रही थी और सोच रही थी इसके बारे में, तो मैं मेरे बचपन को जी रही थी। मेरा वो बचपन जहाँ एक कमरा है, उस कमरे में एक झूला है, झूले के बगल में एक बड़ा खूबसूरत सा आईना लगा है और उसके बगल में रखा है एक रेडियो जिसके साथ मैं मेरी विविध भारती की यात्रा को तय कर रही हूँ। और ऐसी ही यात्रा आपने भी तय की होगी। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, गीत संगीत की बात करूं तो मेरे बचपन से ही साथ है, नदिया की धारा की तरह कल कल करता हुआ संगीत के सुरों में कुछ ऐसा जादू है कि हर गीत के पीछे कोई ना कोई याद जुड़ी है। अब जब एक साथ एक बजे सुरीला सफर शुरू होगा तो हर गीत के साथ एक याद, एक न एक याद जीवंत तो हो उठेगी। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता ने लिखा बड़ा बड़ा प्यारा सा संदेश कि पार हुआ वो रहा जो सफर में, जो भी रुका गया फिर गया वो भंवर, मैं नाव बह जाए किनारा, बड़ी तेज समय की है धारा। बहुत खूबसूरत सा लिखा है, तुझको चलना होगा, इसके बड़े प्यारे बोल लिखे हैं। प्रकृति एक स्वतंत्र सत्ता है, पर्वत, वन, उपवन, वाटिका, नदियां आपस में एक दूसरे के सहचर और परस्पर पूरक है। यहाँ प्रकृति उदात और दिव्य है। प्रकृति मानव के प्रेम और विरह के उद्दीपन रूप को परिभाषित करती है। एक ओर पर्वत ऊंचाई या गौरव का प्रतीक है तो वन पर्वतों का श्रृंगार करते हैं और नदियां एवं झरने इनको जीवन प्रदान करते हैं। ये हमारे एक श्रोता लिखते हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, वन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे, तेरे जहां सुरभि मनमानी, नानी की एक कहानी याद आ गई। उपवन से कविता की ये लाइन याद आ गई। बहुत बढ़िया कविता है, बहुत सुंदर यादें हैं आपकी। और ऐसे ही हमारे श्रोताओं ने बड़े अच्छे से लिखा है कि एक जिस तरह नदी लगातार बहती है वैसे ही जीवन भी समय के साथ साथ आगे बढ़ता है। नदी अपना रास्ता बदलती है, उसमें मोड़ आते हैं, उसी तरह जीवन की परिस्थितियां समय और पड़ाव बदलते हैं। नदी के रास्ते में पत्थर, चट्टाने और पर्वत आते हैं लेकिन वह रुकती नहीं बल्कि रास्ता ढूंढकर आगे बढ़ती जाती है। वैसे ही जीवन की मुश्किलें आती हैं लेकिन वे अंत नहीं है। नदी अपने लिए पानी नहीं रखती, दूसरों की प्यास बुझाती है। जीवन का भी उद्देश्य यही है, दूसरों के काम आना। नदी अंत में सागर में मिल जाती है जो उसके अस्तित्व का मिलन बिंदु है। नदी के इस बहाव में संगीत में लय होता है। नदी इस लय में निरंतर बहती जाती है। कितनी अच्छी बात कही है ना। और यही नदी का बहाव अगर हमारे जीवन में हो जाए तो क्या कहना है। और ऐसी ही एक नदी है विविध भारती, जिस नदी के बहाव में हम बहते आ रहे हैं। तो आप भी साझा कीजिए अपनी विविध भारती के साथ वो किस्से, वो पहला किस्सा जब आपने पहली बार, सबसे पहली बार विविध भारती को सुना था, कैसा लगा था बताइएगा जरूर। और तब तक सुनिए ये गीत जिसे गाया है मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और साथियों ने।

हाँ, तो ये जो मिलन आपका और हमारा है, ये तो सदा ही रहेगा। चाहे विविध भारती परिवार का कोई भी सदस्य कहीं रहे, पर वह विविध भारती से किसी ना किसी तरह से जुड़ा ही रहेगा। तो आज हम बात कर रहे हैं आपकी और हमारी यात्रा की, बड़ी सुंदर सी यात्रा है। और हमारे श्रोताओं से हमने पूछा कि आपने कब विविध भारती को पहली बार सुना था, तो मन में मत रखिए, जरूर बताइए। हालांकि हमारे एक श्रोता ने लिखा कि उन्हें याद ही नहीं है कि वो कब से विविध भारती सुन रहे हैं। ऐसा मैं भी कह सकती हूँ कि मैं शायद पालने में थी तब से विविध भारती सुन रही हूँ, ऐसा आप भी कह सकते हैं। पर हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिया है कि 1968 में फर्नीचर से बने रेडियो पर विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर गीतमाला सुनने का मौका मिलता था। क्या बात है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि बचपन बहुत नटखट था, पूरा दिन धूप में घूमना, फल तोड़ना, फिर मार का डर कोई घर आकर बता ना दे, फिर नदी में पूरा दिन नहाना, और पापा विविध भारती सुनते थे तो मुझे विविध भारती सुनना पापा ने सिखाया। पिता ही हमारे जीवन में सही दिशा हमें देते हैं, और आपके लिए भी बहुत अच्छी दिशा दी है। हमारे श्रोता ने इसके बारे में लिखा है कि हमने जो उन्हें संदेश दिया है, उस संदेश को उन्होंने संक्षिप्त में बताया है कि इंसानी जीवन बहता रूप सरिता नदी सागर, जीवन की उम्र बढ़ती धारा जो बचपन से जीवन की संध्या तक बहती रहती है, कभी दुख की रात, कभी कभी खुशी के दिन, मन में कई स्वप्न संजोए आखिरी तक प्रयत्नशील रहता है। जीवन हर तरह के संकटों के पहाड़ों से उभरते, समस्याओं के जंगल में घेरे हुए अगर डटकर जीवन के प्रवाह में बहते रहें तो फूलों के बाग किनारों तक पहुंच जाते हैं। कितनी बढ़िया बात लिखी है। हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छी कविता भी लिखी है, लेकिन कविता सुनाने के पहले जान लें कि जो गीत हम सुन रहे थे तू गंगा की मौज में, वो गीत बैजू बावरा फिल्म से हमने लिया था। मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ें, शकील बदायूनी के बोल और नौशाद के संगीत के साथ बहुत सुंदर।

गीत हम सुन रहे थे। चलिए हम चलते हैं उस कविता की तरफ जो हमारे श्रोता ने लिखी है कि सरिता बहती रहती रही चुपचाप अपने ही सागर की तलाश में, हर मोड़ पर कुछ खोती गई, कुछ यादें बसी रही सांस में। जीवन भी कोई राग ही तो है जिसमें सुर कम सिसकियां ज्यादा हैं। हम मुस्कुराते जरूर हैं बाहर से पर अंदर ही अंदर कहीं बारिश आधी आधी है। विविध भारती उन लहरों में जब कोई पुराना गीत उतरता है तो लगता है जैसे बचपन फिर से मेरे आंगन में चुपके से ठहरा है। वो दोपहर है, वो शाम है, वो रात है जब रेडियो ही अपना यार था, हर धुन में अपना कोई मिलता, हर दिल बेकरार था। कुछ सपने थे जो सो गए थे, वक्त की चादर ओढ़ कर कहीं आज वही जाग उठे हैं फिर से इन सुरों में, हल्की रोशनी में यहीं। ये प्रेम कहानी भी अजीब है, ना पूरी हुई ना खत्म हुई, बस एक धुन बनकर रह गई जो हर दिल में चुपके से नम हुई। पर्वत भी रोई, नदियां भी बोली, वन उपवन में दर्द सुनाया है। ये सफर नहीं एक एहसास है जिसने जीना सिखाया है। तो चलिए बहते हैं आज भी उन अधूरे गीतों की राहों में, जहां हर सुर में दर्द छुपाए, हर दर्द में प्यार है चाहों में। क्या बढ़िया लिखा है आपने, बहुत खूबसूरत सा लिखा है। और हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं बड़े प्यार से कि आपने विविध भारती को सबसे पहले कब सुना और सुनकर कैसा लगा था। तो हमारे कई श्रोताओं ने उत्तर दिया कि हमारे लिखते हैं श्रोता कि 1980 में मौसम का तकाजा है ये गीत VBS चित्रलोक में सुना, और वो वाल्व वाला रेडियो शॉर्ट के साथ सुना था। जी बिल्कुल। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि उन्होंने 1957 में अक्टूबर में सुना था सबसे पहली बार। और हमारे श्रोता कह रहे हैं कि हमारे गीतों को शामिल करें, बिल्कुल प्रयास करेंगे। अब आपके और हमारे गीत पसंद के हों तो बहुत अच्छी बात है। हमारे श्रोता ने भी लिखा कि पिताजी के रेडियो सुनते आ रहे थे, तब से हम सुन रहे हैं। कोई लिखता है 55 वर्षों से विविध भारती से जुड़ाव उनका बना है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में उन्होंने 10 बैंड का रेडियो लिया था, इसमें मेगावाट, शॉर्टवेव, FM, TV1 सब कुछ था, और इसमें विविध भारती के गाने सुनते थे और पढ़ाई भी करते थे। हेलो फरमाइश फौजी भाइयों के लिए प्रोग्राम लकड़ी से बनी रेडियो देखा बचपन में, जब बच्चे थे तो कोशिश थे कि इसमें कौन आदमी कहाँ से बोलता है, इस चक्कर में रेडियो तक खोल देते थे। आपको सच बताऊं मैंने भी खोल दिया। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि माँ सुनती थी इसलिए विविध भारती हम की अनायास आदत हम में भी पड़ गई। हमारे श्रोता लिखते हैं विविध भारती कब पहली बार सुना है तो नहीं पता, लेकिन जब भी सुना यहाँ तक सभी कुछ है भाई, संगीत, नाटक, कहानियाँ, समाचार, दुर्लभ जानकारियाँ, सखी सहेलियाँ, अब तो फेसबुक पर यार मित्र भी मिल जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता ने लिखा कि विविध भारती से गाने तो सुनाई देते पर ध्यान से अगर कुछ सुनने की बात होती तो वह था हवा महल, और हमारे घर के खाने का टाइम हुआ करता था, हम सभी थाली लेकर रेडियो के आसपास बैठ जाते। करौंदे की चटनी, उदयपुर की ट्रेन, कौन से बाबूजी, शनिवार के दिन जयमाला, महमूद साहब का जयमाला, चलो ख्वाबों की दुनिया में। क्या बात है आपकी, कितनी सुंदर यादें हैं विविध भारती के साथ में। और हमारे श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती को हमने शॉर्ट वेव बैंड पर खरखराती आवाज में सुना था, उसके बाद विविध भारती दिल्ली विज्ञापन प्रसारण सेवा को सुना, फिर हमें मालूम पड़ा कि विविध भारती के और भी स्टेशन है, तो सर्च किया तो रेडियो पर बड़ी मुश्किल से पकड़ में आते थे, सिर्फ रात के समय पति पकड़ में आते थे। विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम बेला के फूल एक मशहूर कार्यक्रम है। जी बिल्कुल। उसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, ये मेरे मन की बात है, मनपसंद विषय, मुझे याद नहीं विविध भारती पहली बार कब सुना। मैं अपने शब्दों में कहूं तो विविध भारती के साथ ही बड़ी हुई हूँ, होश भी संभाला है, पैदा ही हुई हूँ विविध भारती के साथ, यह मेरी हमजोली है, ये कुछ ही दिनों बड़ी है मुझसे। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब मैं अकेला आंख बंद करके थोड़ा रिलैक्स होता हूँ तो बचपन याद आ जाता है, गांव की नदी में नहाने जाते थे, दोपहर के बरगदों के पेड़ों के झूला झूलते थे, फल खाते थे, वो भी क्या बचपन था, 100% प्रकृति से जुड़ाव था जो छूट गया है मुझे, गाँव का वो पत्थर वो ओटले सब कुछ याद है, जहाँ हम सब दौड़ते थे और बैठ जाते थे। कितनी बढ़िया अच्छी बातें हैं, पर अभी मन कर रहा है कि हम आपको उस समंदर के किनारे ले जाएं, क्योंकि हमने आपके सामने जो इबारत रखी थी उस इबारत में हमने इस बात की भी चर्चा की थी कि जो जीवन संगीत है उसमें सरिता बहती है और सागर में जाकर मिलती है।

लिया इस फिल्म से ये गीत हम सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, शकील बदायूनी के बोल। और हमने आपसे पूछा था कि इस गीत के संगीतकार कौन है, तो हमारे श्रोताओं ने तो खिलखिलाकर मुस्कुराकर इस प्रश्न का उत्तर दिया। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरी चॉइस आ गई और आपकी पसंद का गीत हमने आपको सौंपा, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। और जी बिल्कुल सही, नौशाद अली इस गीत के संगीतकार हैं और आज उनकी पुण्यतिथि यानी उनका स्मृति दिवस है, तो हम उन्हें याद करते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि दिलीप कुमार पर फिल्माया गया ये बेहद खूबसूरत गीत है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब हमने प्रश्न पूछा था आपसे कि आपने विविध भारती सबसे पहली बार कब सुना, तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारी विविध भारती सबसे ज्यादा सुना लता जी के गीतों को, और जिसके साथ पढ़ाई भी की और रेडियो को कई बार खोला भी, बिगाड़ा भी और बन गया। गीत लिखना जितना फिर जितना रह जाए वो अगली बार आने पर पूरा करना कितना अच्छा था। सो टाइम से अपना काम करना और समय का पता भी ना चले, गीतों से प्यार तो था ही, तो जब हमारी पसंद का गीत आता तो खुशी से नाचना। बिल्कुल, हमारे श्रोता लिखता है हमारे पास लकड़ी का बना वॉल्व वाला रेडियो था जिसको गर्म होने में भी समय लगता था फिर चलता था। 1978 के आसपास से रेडियो सुनना शुरू किया, तब मात्र 8 साल के थे। क्या बात है, इतनी छोटी उम्र से ही। हमारे एक श्रोता ने विविध भारती के लिए बहुत अच्छी बात लिखी कि आपने आपने विविध भारती से जुड़ी यादें और संगीतों के बहाव को बहुत ही काव्यात्मक तरीके से पिरोया है। यह सच है कि विविध भारती के गीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि एहसास है जो हमें बचपन की गलियों और सुनहरी यादों तक ले जाते हैं। सरिता सागर, जीवन का बहाव और बचपन की स्मृतियां, ये शब्द सुनते ही मन में एक रोमानी, शांत और पुरानी यादों वाली प्लेलिस्ट बन जाती है। और हमारे कौशोता ने उत्तर दिया, बचपन में जब शाम होती थी घर में रेडियो की आवाज गूंजती थी, बीबीसी की खबरें, विविध भारती के मधुर गीत, हवा महल की कहानियां। विविध भारती सिर्फ मनोरंजन नहीं है, धागा है जिसने पूरे समाज को एक साथ जोड़ रखा है। बारिश की रातों में बिजली गुल होने पर भी ट्रांजिस्टर से गूंजता कोई पुराना नगमा माहौल को जीवंत कर देता था। एक वक्त था जब सुबह जयमाला की

से दिन की शुरुआत करते थे और रात को छाया गीत सुनते हुए सो जाते थे। रेडियो में कोई चेहरा नहीं दिखता था, लेकिन आवाजों के साथ आत्मीय रिश्ते बन जाते थे। बिल्कुल सही बात है, और इन्हीं रिश्तों के लिए आज हम आपके साथ में यहाँ पर बैठे हैं और बातें कर रहे हैं। देखिए, हम बात कर रहे थे और हमने जो इबारत लिखी उस इबारत में हमने बात की थी कि जीवन जो है ना, वो संगीत जो है उसका बहाव का नाम है, बस संगीत बहते जाना चाहिए। तो बह चलते हैं सुमधुर गीतों के साथ। अब ये सुमधुर गीतों में ये वाला जो गीत मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ ना, ये गीत मुझे ये नहीं पता कि ये रेडियो का पहला गीत है जो मैंने सुना था, लेकिन ये मेरी याद का पहला गीत है जो मेरे कानों में पड़ा था। तो चलिए सुनते हैं ये मेरी याद का पहला गीत, और आप बताइएगा कि इस गीत की गायिका कौन है।

हम सुन रहे थे नाचे मयूरी फिल्म का यह गीत आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा था बस इतना ही कि इसके गायिका कौन है, तो आपने बहुत अच्छे से उत्तर दिया कि एस जानकी ने इसे गाया है, सुधा चंद्रन ने बड़ा खूबसूरत नृत्य इस पर किया है। अब हम वापस आ जाते हैं हमारे श्रोताओं की बातों पर। और ये जो बचपन की बात है ना, ये बड़ा खूबसूरत सा दौर होता है और इसी दौर में हम अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी लेते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे नाना नानी मामा मामी मौसी हैं सब हमारे यहाँ रेडियो सुनते थे, तो उनके साथ हम भी रेडियो सुनने लगे, इसलिए मेरी मम्मी को भी रेडियो की आदत है, गाना सोने के पहले बेहद शौक है, वह सुनती हैं। और अब हम आपका प्रोग्राम रेडियो पर चलाकर सुनते हैं, मेरी मम्मी भी चला लेती हैं और वह बड़े प्यार से विविध भारती तो सब

के दिल की धड़कन है, ऐसा वह लिखती है। और वह यह भी लिखती है कि आई लव रेडियो। ऐसा प्यार बना रहे तो कितनी अच्छी बात है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि मैं और मेरे भाई बहन पढ़ते वक्त विविध भारती सुनते थे और अब वह रोज सुनती हैं। हमारे श्रोताओं ने लिखा कि विविध भारती 2003 में आज के फनकार का कार्यक्रम सबसे पहला सुना था, ऐसा उन्हें थोड़ा थोड़ा याद है। क्या बात है, आज के फनकार कार्यक्रम में हम याद भी हमारे बड़े सुरीले या बड़े अच्छे कलाकारों को याद करते हैं। उसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि दिल दिया दर्द लिया फिल्म में जो बड़ा खूबसूरत सा गीत है उसके बारे में लिखते हैं कि ये रचना बड़ी प्यारी है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उनका 60 साल की उम्र उनकी उम्र हो गई है और बचपन से ही विविध भारती सुनती हैं और अब 60 प्लस हो चुकी हैं। धन्यवाद, ऐसे ही सुनते रहिए। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब से होश संभाला है तब से सुनते आ रहे हैं। विविध भारती की पहचान कमल शर्मा जी से है, ऐसा हमारे एक श्रोता लिखते हैं। बिल्कुल, आपको उनका अंदाज पसंद है, सभी को पसंद आता है किसी ना किसी का बोलना सुनना और अद्भुत उद्घोषक इस मंच से आप सबके बीच में आए हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि इस दुनिया में आई थी तो एक आवाज भी आई थी, विविध भारती की धुनें और पापा की परछाई, आज भी जब बजता है वो पुराना सा तराना लगता है जैसे फिर उनकी गोद में लौट आई हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। हमारे श्रोताओं ने लिखा कि मैं जो गीत वो सुन रहे हैं, जो रेडियो वो सुन रहे हैं, उसके बारे में लिखते हैं कि एक बड़ा सा एंटीना लगा था और जब भी स्टेशन नहीं पकड़ता था तो बिजली के किसी तार को उसमें टच कर देते थे और वो तुरंत सही हो जाता था। हाँ, ये हम लोग भी करते थे। तो ये बचपन की बड़ी अच्छी बातें हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि वह 60 के आसपास आ गए हैं और ये सफर का जादू जो है वो उनके साथ लगातार चलता जा रहा है। बिल्कुल, ऐसे ही आप सजे रहिए, विविध भारती के साथ बने रहिए, क्योंकि हम सब साथ में मिलकर एक बहुत सुंदर सा परिवार बनाते हैं और ये परिवार एक दूसरे को साथ में जोड़े रहता है। अब मैं अगला गीत आपको सौंपूं तो उसके पहले एक प्रश्न आपको देना चाहती हूँ। हालांकि हमारे श्रोता ने एक और लिखा है, शोले फिल्म का डायलॉग था, यह काम तुम लोग कब से करते हो? जवाब था, बस होश संभालते ही शुरू कर दिया था। बस यही हाल है अपना भी कि हम भी तो विविध भारती तब से ही सुनते आ रहे हैं। चलिए, बढ़िया बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं, खाना और गाना दोनों चीज मन को सुकून देती हैं। बचपन से ही मुझे रेडियो का शौक है, मेरी माँ भी रेडियो सुनती है, बैटरी वाले रेडियो से लेकर इन्वर्टर वाले रेडियो तक, और फोन पर भी रेडियो सुन रहे हैं। किचन में फ्रिज पर रेडियो रखा हुआ है, 5 बजे शुरू हो जाता है, रात को 11:30 बजे बंद होता है। जब जो भी घर में आता है कहता है, अरे आप रेडियो सुनते हैं, खुश हो जाता है। मेरे बच्चों को भी यही आदत है, क्योंकि बच्चे छोटे थे तो मैं उनके पास ट्रांजिस्टर रख देती थी छोटा वाला, जिससे उन्हें लगता था कि उनसे बात कर रहा है। मैं अपना काम भी कर लेती थी और संगीत इतना पसंद है कि मैंने विशारद किया है और 5000 से अधिक गाने तो इन्हें मुंह जवानी आते हैं। क्या बात है, रेडियो का साथ आपके साथ ऐसा ही बना रहे, बहुत बढ़िया बात है, बने रही ऐसे ही साथ में। और हमारी श्रोता लिखती है, 7 साल की थी तब से संगीत में डुबकी लगाई है और अब तक वह रेडियो से लोन पर गाने सुनने की आदत हो गई है। विविध भारती शुरू होने के बाद वह भी सुनने लगी। महज 7 साल की उम्र से संगीत का लगाव आज तक 75 साल से बरकरार है और ये प्रेम आपका ऐसे ही बना रहे, हम तो कामना करते हैं। अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। बस इतना सा बता दीजिए, इसमें लता मंगेशकर के साथ में दूसरी गायिका कौन है, जल्दी से बताइएगा। और एक और बात आपसे पूछनी है कि रेडियो घर पर तो सुना है, घर के बाहर ले जाकर कहीं सुना है क्या रेडियो, जरूर बताइएगा।

हम सुन रहे थे दीदार फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में, शकील बदायूनी के बोल और नौशाद के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा था कि बताइएगा जरूर कि इस गीत में इन लता मंगेशकर के साथ में और कौन सी गायिका हैं जो गा रही हैं, और आप सबने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि ये गाना फिल्म दीदार का है, लता मंगेशकर के साथ शमशाद बेगम है। शायद प्रेम त्रिकोण पर यह फिल्म थी जिसमें दिलीप कुमार, नरगिस और अशोक कुमार हैं। देखिए क्या है, देखते हैं, जानते हैं। और चलिए, हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से बताया कि बीच में विविध भारती से संपर्क टूट गया था, न्यूज़ ऑन एयर एप्लीकेशन पर फिर से सुनना शुरू किया, गीतमाला प्रोग्राम में वापस शुरू कर दिया, अब आदत पड़ गई है। हमारे श्रोता लिखते हैं, पहले तो बाहर ले जाने का सवाल ही नहीं था, हाँ गर्मियों के दिनों में छत पर ले जाकर सुनते थे रेडियो जब टेस्ट मैच चलता था, और छोटी ट्रांजिस्टर का जमाना आ गया तो घर के जेंट्स लोग जो थे वो पॉकेट में ट्रांजिस्टर लेकर चलते थे, कई बार तो लोग हाथ में भी कंधे पर ट्रांजिस्टर लेकर लटका कर चलते थे। बाहर निकलती हूँ, कोई प्रोग्राम सुनना होता है तो छोटे वाले मोबाइल पर FM विविध भारती सुनते हैं। जी बिल्कुल सही बात है, हमारे श्रोता बहुत अच्छे से बताते हैं कि ये जो गीत हैं, ये जो संगीत है, ये इन्होंने सुनना शुरू किया बहुत पहले से। और हमारे श्रोता ने 5 मई, अच्छा इनकी इनका विवाह वर्षगांठ है तो उन्हें हम शुभकामनाएं दे देते हैं। और इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि सांस लेना कब से शुरू की, वैसे ही रेडियो भी जन्म से सुन रहे हैं, ऐसा प्रश्न आपने कर दिया है। एक बस बश का वॉल्व रेडियो था जो टैप आज तक 60 वर्षों से वह लगातार सुनते आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। और ऐसे ही हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी, बचपन हर गम से बेगामा ना होता है, और उसी समय कोई भी शरारत अगर हम सोचते हैं तो हमने क्या किया था वो आज कर नहीं सकते, वैसे करके देखें क्या, बड़ा मजा आएगा। हमारे श्रोता ने लिखा है, बहुत बचपन से ही लखनऊ के आकाशवाणी में प्रसारित आओ बच्चों बाल संग आदि प्रोग्राम सुनती थी। हमारे सगे फूफा जी रज्जन लाल उस समय प्रोग्राम को प्रसारित करते थे, रेडियो पर पहली बार चुन चुन करती आई चिड़िया, नानी तेरी मोनी को ले गए, ये आदि बच्चों के गीत सुने थे। आज भी रेडियो सबसे ज्यादा जरूरी है और आपके साथ भी जरूरी है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सुबह दोपहर शाम सभी सेवाएं चालू रहती हैं और वो लगातार सुनते हैं। अच्छा, ये जो सब कुछ चलता रहता है आपके जीवन में, जो रेडियो चलता रहता है, उस रेडियो के साथ में आपने कई सारी यात्राएं भी की होंगी। जैसे एक बार हम पर्वतों पर यात्रा करने के लिए गए थे और वहां पर हमें कुछ मिला नहीं मिला, हमारे मोबाइल पर नेटवर्क मिला नहीं मिला, लेकिन विविध भारती जरूर सुनने को मिला। तो ऐसी कोई याद अगर आपकी है तो जरूर बताइएगा। और अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, बताइएगा इसके गीतकार कौन है, गीतकार का नाम बताइए, और ये बताइए कि कोई ऐसी जगह जहां पर आपको कुछ नहीं मिला पर विविध भारती मिला।

और इस खूबसूरत से साथी के साथ में हम बात कर रहे थे उस इबारत की कि सरिता बहती है सागर में जाकर मिलती है, वैसे ही जीवन संगीत का बहाव का नाम है। तो चलिए बहते हैं सुमधुर गीतों के साथ विविध भारती को चाहने वाले, जब सुबह से लेकर सांझ तक और रात्रि तक चाहते हैं और सुनते हैं तो जी लेते हैं अपना बचपन और कई स्मृतियाँ और मन के भाव उठ जाग उठते हैं और स्वप्न की लीला में जाकर कहीं सो गए थे। यहीं से आरंभ होता है एक ऐसी प्रेम कहानी का जो शिखर यात्रा की ओर बढ़ती है और जो हौले हौले बढ़ती जाती है। पर्वत नदी वन उपमन होते हुए ये यात्रा गीत संगीत पर समाप्त होती है और इसके साथ ही हमने आपसे बहुत सारे प्रश्न किए हैं और उनका उत्तर आप बड़ी मोहब्बत से देते जा रहे हैं। हमारे श्रोताओं ने पूछा हमने उनसे कि आपने कहाँ कहाँ जाकर इस रेडियो को सुना है, यानी विविध भारती को सुना है। तो विदेश में रहकर विविध भारती को सुनने का मजा कुछ और है। विदेश में विविध भारती मिली, इस बात के लिए उन्होंने हृदय यानी दिल का चिन्ह हमारे लिए भेजा है। हमने एक और प्रश्न आपसे पूछा था कि ये जो गीत है इसके गीतकार कौन है। हमारे श्रोता ने उत्तर दिया मजरूह सुल्तानपुरी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और हमारे श्रोता ने एक बड़े प्यार से लिखा है कि जब बचपन में परिवार के साथ घूमने जाते थे तो रेडियो साथ में ले जाते थे, क्योंकि उस समय 7:05 पर सैनिकों के लिए प्रस्तुत जयमाला प्रोग्राम जो आता था। सबकी अपने अपनी पसंद है, अलग अलग पसंद है और वह सुनते थे। आज के मोबाइल में अनेक तरह की एक्टिविटी होती है, मगर आज भी हम रेडियो से जुड़े हैं। विविध भारती रेडियो ऐप

पर कमेंट करते हैं और जिससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितने दीवाने हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं, मैं आज तक ऐसी जगह नहीं गई जहां कुछ भी ना मिले, जहां कुछ भी ना मिला हो कुछ ना कुछ तो मिल ही गया है। मैं मसूरी गई थी तो दूर शॉप की दुकान पर दुकानदार अंकल लोग गाना लगाकर सुना करते थे, जहां से मैं गुजरी गाना चल रहा था तो अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, ये गीत ही तो है जो हमें जोड़ते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं, नॉर्थ ईस्ट पर पहाड़ियों पर घूमने भी गई थी, उन्हें शायद रात में वहां रुकना अच्छा नहीं लगा। देखिए, सबको अपना अपना बिस्तर, अपनी अपनी जगह अच्छी लगती है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि छोटे थे तो पापा 15 रुपए देकर बोलते थे दुकान से रेडियो की बैटरी के लिए ले आओ, तो जब तब शेल बोलते थे। हाँ, तो शेल लेने कौन कौन जाता था ऐसा इनका प्रश्न है। मेरे जीवन में कुछ ऐसा समय आया, दोस्तों ने रिश्तेदारों ने साथ नहीं दिया, तब साथ दिया विविध भारती ने, और धन्यवाद विविध भारती, हम सब एक साथ हैं हमेशा। ये विविध भारती केवल रेडियो नहीं, एक बड़ा परिवार है और हम उस परिवार के साथ हैं। बिहार की पहचान साइकिल और रेडियो हुआ करता था, सुना है बिहार में शादी से पहले रेडियो साइकिल ही दिया जाता था लड़कों को। क्या बात है। हमारे यहाँ हमारे श्रोता बड़े प्यार से लिखते हैं, घर के बाहर ले जाकर तो नहीं सुना पर छत पर ले जाकर उन्होंने जरूर कई बार विविध भारती को सुना है। तो आप विविध भारती को ऐसे ही सुनते रहिए। हमारे कुछ श्रोता ये शिकायत भी कर रहे हैं कि इस पर हम बात ज्यादा कर रहे हैं, गीत कम सुना रहे हैं, हम बात नहीं कर रहे, हम इस पर वही सुना रहे हैं जो हमारे श्रोता लिख रहे हैं, तो उनके मन की भी सुनना थोड़ी सी जरूरत लगती है। विविध भारती बने से सुख दुख का साथी है। एक बार डिप्रेशन में चली गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, तब विविध भारती पर गीत बजने लगा, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार उदासी मन काहे को डरे, लगा कि यह गाना मेरे लिए ही है। और उस समय मैं फिर से जीवन से भर गई, मैं संभल गई, विविध भारती ने मुझे संभाला है। कितनी बड़ी बात है ये हमारे लिए। हमारे श्रोता ने लिखा कि ऊंचे बर्फीलों की यात्रा कर रही थी, कार में की विंडो से पहाड़ों का नैसर्गिक सौंदर्य निहार रही थी, साथ में यशुदास के बजे हुए गीतों के ने उनके मन को बड़ा सुकून दे दिया। तो चलिए, ऐसे ही बातें हमारे पास बहुत सारी हैं, लेकिन आपके पास भी बहुत सारी हैं विविध भारती से जुड़ी ही बहुत सारी बातें। बस इतना बता दीजिए कि कभी विविध भारती को सुनने के लिए अपने भाइयों से या बहनों से लड़ाई की है? हमने तो की है, आप जरूर बताइएगा। तब तक सुनिएगा ये प्यारा सा नगमा और बताइएगा इस गीत के संगीतकार कौन है।

हम सुन रहे थे रुला के गया सपना मेरा, ये गी ज्वेल थी फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में सचिन देव वर्मन के संगीत के साथ मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे बोल दिए। बिल्कुल, हमने आपसे कहा था संगीतकार पहचानिए और आप सबने बिल्कुल सही पहचाना, बड़े वर्मन दा यानी सचिन देव वर्मन, ऐसा करके आपने उत्तर दिया है, उसके लिए आपको धन्यवाद। और हमारे श्रोताओं से हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं विविध भारती के को लेकर, जो उनकी यादें हैं उसको लेकर, और उसी उन्हीं यादों को लेकर हमारे श्रोताओं ने बड़े अच्छे से बताया है कि पहले जो 1997 में उनकी शादी हुई थी तो उन्हें रेडियो, पंखा, आयरन, सोने की अंगूठी ये सब मिला था, पर रेडियो उनके दिल से लग गया था, यानी सोने की अंगूठी से अधिक उन्हें रेडियो पसंद आया था। अब हमारे श्रोता बताते हैं कि हमारे घर हो या पड़ोस का घर हो, पूरा दिन विविध भारती बजती रहती है, इसलिए लड़ाई कहा सुनी करने की जरूरत नहीं होती, या संस्कार विरासत में मिले। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, जी बिल्कुल, लड़ाई झगड़ा होता था जब 72 में विविध भारती के कमर्शियल प्रोग्राम शुरू हुआ था, बीके अंताक्षरी जैसे शिव कुमार जी पेश करते थे, उस समय अगर टेस्ट मैच आता होता तो भैया से झगड़ा होता था, ना रहेगा बांस ना बजरेगी बाजुरी, यह कहते हुए बड़े ट्रांजिस्टर की बैटरी निकाल देते थे। ये लड़ाइयाँ बड़ी अच्छी होती हैं, आज भी याद आती हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती के लिए कभी लड़ाई नहीं हुई, मेरी बहन है नहीं तो हाँ मेरे मिस्टर से जरूर लड़ाई करती हूँ रेडियो के लिए, जब विविध भारती चालू हो तो आप उसे कम जो बोलना हो है वो पहले बोल दिया कीजिए। बिल्कुल सही बात है, विविध भारती एक ऐसा एहसास है, कोई भी व्यक्ति कितना भी अकेला हो, कितना भी दूर हो, विविध भारती एक ऐसा चैनल है जो कहूँ परिवार है, जो व्यक्ति के अकेले के एहसास हो नहीं सकता, रेडियो से जुड़ा है जो वो अकेले हो नहीं सकता। हमारे श्रोता लिखकर कहते हैं कि आपको भी याद होगा कि पहले जब कोई रेडियो खरीद कर लाता था तो सबसे पहले कितने बैंड का है ये पूछा जाता था, बाद में ब्रांड का। बिल्कुल सही है, रेडियो पर कमेंट्री आती थी, कान लगाकर कमेंट्री सुनते थे, उसके लिए कई बार घर वालों से डांट भी खाई है, पढ़नी ही चाहिए जब पढ़ाई नहीं करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि उन्हें एफएम रेडियो चाहिए जो मिल नहीं रहा है, अगर कोई मदद कर सके तो अवश्य कीजिएगा। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें इस विषय पर लिखी हैं, हम आपको अगला गीत पेश करना चाहते हैं और हम आज की जो इबारत हमने लिखी उस इबारत में हमने आपसे एक और जिक्र किया, एक जिक्र किया हमने प्रेम कहानी का, और ये प्रेम कहानी आपकी और हमारी है, यानी उस विविध भारती के साथ आपकी हमारी जो प्रेम है, उस प्रेम कहानी में शायद कोई और आज तक आ ही नहीं पाया, जलन की बात ही नहीं थी और किसी के होने का जज्बात ही नहीं था। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा प्रेम कहानी का गीत और आपकी विविध भारती के साथ आपके प्रेम को जांचते हैं, आंकते हैं, बताइएगा कि इस गीत के गायक कौन है, और सुनिए ये प्यारा सा नगमा।

हम सुन रहे थे लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में ये गीत, बिल्कुल सही पहचाना आप सभी ने, आनंद बख्श के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ प्रेम कहानी फिल्म का यह प्यारा सा नगमा। और हम चल रहे हैं अंतिम पड़ाव की ओर। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे संदेश भेजे हैं, मैं थोड़ा थोड़ा करके आपका पढ़ देती हूँ। कि हमारे श्रोता ने बताया कि उन्होंने किस तरह से 2002 में रेडियो सुनना शुरू किया था, और किसी का कहना है कि वो दुबई आना जाना था तो वहाँ पर भी उन्होंने लोगों के बीच में विविध भारती फेमस कर दिया लोगों को सुना सुना कर। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि 1967 में मर्फी का विज्ञापन जो आया था वह उन्होंने, उसकी डिमांड काफ़ी होती थी, वह बता रहे हैं। हमारे श्रोता ने बताया कि वह, एक श्रोता ने तो बड़ी अच्छी बात कही कि उनके लिए कहा जाता है कि उनके घर वाले कहते हैं कि जब ये अगर इस दुनिया से जाए तो इनके बगल में रेडियो ज़रूर रख दीजिएगा, क्योंकि वह रेडियो रसोई में भी सुनती हैं, बेडरूम में भी सुनती हैं, हर जगह सुनती हैं। और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से बताया है कि वह रेडियो को किस किस जगह पर सुनते हैं, मार्केट जाते हैं तब भी सुनते हैं और बहुत अच्छे से सारी बातों को सुन लेते हैं। और ऐसा हमारे श्रोता ने बताया कि एक बुरा काल आया था इस धरती पर, उस काल में भी रेडियो ने इनका बहुत साथ दिया, बहुत अच्छी बात है। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि अपने भाई के साथ लड़ाई भी उन्होंने बहुत अच्छी करी, क्योंकि रेडियो नहीं सुनने देता, एक बार रेडियो तोड़ दिया था, फिर बाद में सुधरवा के वापस सुनने लगे। ऐसे ही आप विविध भारती के साथ में प्यार करते रहिए, क्योंकि बचपन से आप रेडियो सुनते आ रहे हैं और आगे तक सुनते रहेंगे, जीवन पर्यंत हम सुनते रहेंगे। रेडियो का साथ, विविध भारती का साथ हमारा और आपका कभी ना छूटे। और आज की भारत में बहुत सारे गीत थे जो आपको सुनवाने थे, पर ये वाला गीत आपको सौंपती हूं और इसके बाद आपसे आज्ञा लेना चाहूंगी।

वन उपवन पर्वत नदियाँ कहीं पर भी चले जाएं, पर हम हमारे प्रेम को हमारे साथ को नहीं छोड़ सकते। विविध भारती का परिवार यूं ही बना रहे। आप सबके मंगल की कामना करती हूँ। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। सुरीला सफर यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।

नमस्कार श्रोताओं, किसी ने कहा था कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। आज का जमाना कई जगह ऐसा देखा जाता है कि हर कोई सोचता है कि ये जो काम है वो बड़ी सरलता से बड़ी आसानी से हो जाए, हमें उसके लिए मेहनत ना करना पड़े। एक जमाना था जब इस देश की स्वतंत्रता के लिए मेहनत की गई, और जब मेहनत की गई तभी राष्ट्र स्वतंत्र हुआ, वरना बैठे बैठे सोचने से कुछ हो नहीं सकता था। मुंगेरी लाल के सपने तो सभी देखते हैं, पर उन्हें पूरा करने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी जैसे रण युद्ध में कूदना पड़ता है और जीतना पड़ता है उस विजय को।

ये बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें, ये चौड़ी सड़कें, ये चलता हुआ कारखाना, ये सब इसके पीछे कोई ना कोई मेहनतकश व्यक्तित्व है, उनका समर्पण है। कोई इंजीनियर दिन रात मेहनत करके इनकी डिजाइन बना रहा होगा, कोई श्रमिक पूरी मेहनत और पूरी श्रद्धा के साथ इन्हें सजा रहा होगा, तभी आज हम बड़ी बड़ी कारखानों को चलते हुए देख रहे हैं और अपनी सुविधाओं की प्रत्येक वस्तु को अपने पास तक आते प्राप्त कर रहे हैं। यह सब आसान नहीं है, इसके लिए मेहनत करना जरूरी है। आज के जमाने में कई जगह ऐसा पाया जाता है कि कई बच्चे, कई बड़े ये सोच कर बैठ जाते हैं कि हमें तो वो एक छोटी सी एसी कमरे में बड़े सामान्य सी कुर्सी के साथ में बैठ जाना है और काम करना है। यहाँ पर वही काम किया जा सकता है जो सरल है, परंतु कुछ नया करने के लिए जंगे मैदान में उतरना पड़ता है। तो चलिए आज विचार करते हैं कि वो मैदान कौन सा है जिस युद्ध को लड़कर हमें अपने आप को विजित करना है। नहीं, नहीं।

0: जो लोग हमारे लिए दुनिया बना रहे हैं, ये जो लोग हमारे लिए दुनिया सजा रहे हैं, ये दुनिया बनाते समय, इसे सजाते समय उनके सपने होंगे, उनके ख्वाब होंगे कि कोई तो होगा जो आएगा हमसे और अच्छा करेगा। मेहनत करने वाला वही अच्छा करने का गुरूर रखता है और मन में एक आशा रखता है कि अभी तक जो हुआ है उससे अच्छा हम कर जाएंगे। आज हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में अलग जगाता हुआ खड़ा है। उसके पहले उस पर की गई मेहनत, आज हमारा देश सारी दुनिया में गर्व से खड़ा है। उसे बनाने के लिए उस पर की गई मेहनत, प्रत्येक वैज्ञानिक, प्रत्येक व्यक्तित्व, प्रत्येक श्रमिक, प्रत्येक उस इंसान को प्रणाम करते हैं जिसने अपनी जंजीरों को तोड़ा, जिसने अपने आलस्य को छोड़ा और जिसने मेहनत को अपनाया और मेहनत को अपनाकर आज इतना सुंदर राष्ट्र का निर्माण कर दिया। हम उन्हें बहुत धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि हमारी आगामी पीढ़ी, अभी की पीढ़ी और प्रत्येक व्यक्तित्व अपने और अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए सतत मेहनत करते रहेंगे। आज हम उन सभी को प्रणाम करते हैं जिन्होंने
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह पर हुए ईरानी ड्रोन हमले की कड़ी निंदा की है। इस हमले में पेट्रोलियम इलाके में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा है कि आम लोगों और बुनियादी सुविधाओं पर हमला करना बिल्कुल भी मंजूर नहीं है और भारत यूएई के साथ पूरी तरह खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया पर एक संस्कृत सुभाषित साझा करते हुए कहा कि असली कामयाबी सिर्फ ताकत या बाहुबल से नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि सत्य, करुणा, नैतिकता और लगातार मेहनत के दम पर ही टिकाऊ और सच्ची जीत हासिल होती है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि ईमानदारी से पाई गई सफलता न सिर्फ लंबे समय तक बनी रहती है बल्कि मन को गहरा सुकून भी देती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट बैठक हुई, जो वंदे मातरम के सामूहिक गान से शुरू हुई। बैठक में बताया गया कि इंदौर में 9 से 13 जून तक ब्रिक्स समूह का अंतर्राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें ब्राजील, रूस, चीन, सऊदी अरब, यूएई समेत कुल 21 देशों के प्रतिनिधि, कृषि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। इसके अलावा दलहन आत्मनिर्भर मिशन के तहत अगले 5 साल में 2,442 करोड़ रूपये खर्च करने की मंजूरी भी दी गई है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया,
1: दलहन उत्पादन के लिए एक मिशन चालू किया गया है, दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन। इसके तहत मध्य प्रदेश के अंदर 2,442 करोड़ रुपए की स्वीकृति आज दी गई है, जो आगामी 5 वर्षों के लिए पूरा खर्च का अनुमान है। इन 5 वर्षों में दलहन की गुणवत्ता, उसका बीज का प्रमाणीकरण, उनके बीजों का ग्रेडिंग और उनकी मार्किंग करना, प्रोडक्शन और उसके यूनिट लगवाना, ये सारे कार्य यहाँ पर चलाए जाएंगे। हम लोग इसके अंदर खड़े उतरेंगे। कृषि कल्याण इस पर भी विशेष फोकस किया।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा की जीत पर खुशी जताई है। उन्होंने बंगाल की जीत को डर, तुष्टिकरण और घुसपैठियों को शरण देने वालों के खिलाफ जनता का कड़ा जवाब बताया। असम में हैट्रिक जीत को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में किए गए कामों पर जनता की मुहर करार दिया। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि अब तक 7.5 लाख से ज्यादा किसानों से करीब 39 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है और किसानों को 6,490 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। किसानों की सुविधा के लिए गेहूं खरीदी की आखिरी तारीख 9 मई से बढ़ाकर 23 मई 2026 कर दी गई है। हर खरीदी केंद्र पर तौल कांटों की संख्या 4 से बढ़ाकर 6 की गई है और तौल पर्ची बनाने का वक्त रात 10 बजे तक कर दिया गया है। प्रदेश में आज सुबह से धार, बड़वानी और झाबुआ समेत कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। भोपाल मौसम केंद्र ने प्रदेश के 39 जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है।

जबलपुर सिंगरौली सीधी शहडोल उमरिया और कटनी में तेज आंधी चलने की सबसे ज्यादा आशंका है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम कलेक्टर ने समय सीमा की बैठक में सीएम हेल्पलाइन शिकायतों को लेकर सख्ती दिखाते हुए 3 जनपद पंचायत सीईओ और 1 नगर पालिका सीएमओ सहित 5 अफसरों पर जुर्माना लगाया है। खंडवा जिले की जावर तहसील के ग्राम भकराड़ा में मुरम के अवैध उत्खनन के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की है। आगर मालवा जिले में 9 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की तैयारियां जिले में व्यापक स्तर पर की जा रही हैं। शिवपुरी जिले में कल कलेक्टर ने पशुपालन विभाग के उपसंचालक और मत्स्य विभाग को किसानों के क्रेडिट कार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं। मंडला जिले में खरीफ सीजन की तैयारियों के तहत किसानों को खाद वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जबलपुर में आज बड़ा सड़क हादसा हुआ। कटनी से जबलपुर आ रही यात्री बस गोसलपुर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 50 से अधिक यात्री घायल हो गए और 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात में फुजैरा हमले की कड़ी निंदा की। हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। श्री मोदी का पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण के लिए संघर्ष के बीच अमेरिका और ईरान ने खाड़ी में नए सिरे से हमले किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमैका के विदेश मंत्री कामिना जे स्मिथ से बातचीत की। दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों का आह्वान। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नवाचार आधारित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान तंत्र को बदलने की आवश्यकता पर जोर। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कल ईरान के ड्रोन हमले में फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने भी इस हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया है। मंत्रालय ने संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष को हल करने के लिए भारत लगातार वार्ता और कूटनीति का समर्थन कर रहा है ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: मध्य पूर्व के देशों और क्षेत्रीय संगठनों ने संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा बताया है। उधर खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका और ईरान के बीच नए सिरे से हमले शुरू हुए हैं। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य के नियंत्रण को लेकर तनाव और बढ़ गया है तथा पहले से ही नाजुक युद्ध विराम और कमजोर हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई पहल प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा के बाद मिसाइलें और ड्रोन दागे गए। इस पहल का उद्देश्य फंसे टैंकरों और वाणिज्यिक जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य के जरिए गुजरने में मदद करना है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि विकास सहयोग भारत और जमैका के बीच साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। डॉ जयशंकर जमैका के विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट सदस्यों के साथ अपनी बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया और सहयोग

0: को और मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे गए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए और डिजिटल परिवर्तन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, खेल और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में हाल ही में संपन्न हुए समझौता ज्ञापनों के प्रभावी कार्यान्वयन पर चर्चा की ताकि जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जा सके। डॉक्टर जयशंकर ने आज जमैका के किंगस्टन में वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय में परिवर्तनशील दुनिया और भारत की प्रतिक्रिया विषय पर लोगों को संबोधित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने वैश्विक दक्षिण, सुधारित बहुपक्षवाद और बहुध्रुवीयता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम भारत की 3 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज बिहार के बोधगया पहुंचे। हवाई अड्डे पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनका स्वागत किया। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति तो लाम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे बोधगया स्थित वियतनामी मठ का भी दौरा करेंगे। राष्ट्रपति तो लाम के साथ वियतनाम सरकार के कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ एक व्यापारी प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति आज दोपहर बाद नई दिल्ली पहुंचेंगे। कल राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में राष्ट्रपति तो लाम का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के बाद राज्य में नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। नए मंत्रिमंडल के सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इसी दिन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को राज्य में केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इन नामों को भाजपा संसदीय पर्यवेक्षक बोर्ड ने मंजूरी दी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय की पार्टी तमिलगा विक्ट्री कड़गम 108 सीटें लेकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी के शानदार चुनावी प्रदर्शन के बाद नवनिर्वाचित टीवी के विधायकों ने आज चेन्नई के पास पन्नयूर स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित विधायक दल की बैठक में श्री विजय को औपचारिक रूप से अपना नेता चुना। एक रिपोर्ट।
2: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर फिलहाल केरल में हैं, इसलिए सरकार बनाने का दावा पेश करने वाला पत्र भेजने में देरी हो सकती है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा आज सौंप दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। एक बयान में स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेगी। AIADMK के महासचिव ई पलानीसामी ने कहा कि वे जनता के जनादेश को स्वीकार करेंगे। भाजपा नेता के अन्नामलाई ने नतीजों का स्वागत करते हुए कहा है कि जनता ने वोट खरीदने और वंशवादी राजनीति के खिलाफ अपना संदेश दिया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: केरलम में सरकार गठन को लेकर कांग्रेस पार्टी में अनौपचारिक चर्चाएं जारी हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF विधायक दल की बैठक के बाद राज्यपाल से सरकार गठन के लिए संपर्क करेगा। UDF सूत्रों ने संकेत दिया है कि विधायक दल की बैठक दिल्ली से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों के आने के बाद ही निर्धारित की जाएगी। नव निर्वाचित विधायकों में वर्तमान विपक्ष के नेता VD सीताशान, पूर्व विपक्ष के नेता और पूर्व KPCC अध्यक्ष रमेश चेन्नितिल्ला और वर्तमान KPCC अध्यक्ष सनी जोसेफ प्रमुख वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलुलुथी की रिपोर्ट के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार।
1: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली के CR पार्क स्थित कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में श्री नवीन ने विधानसभा चुनाव के परिणाम पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संस्कृति और विरासत का संरक्षण करते हुए देश को विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी नेताओं ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का स्वागत किया है और इसे

0: ऐतिहासिक जनादेश तथा राज्य में सुशासन, सुरक्षा और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया है। प्रख्यात भारतीय अमेरिकी नेता डॉक्टर भरत बराई ने इस परिणाम को राज्य की जनता की विजय बताया और पिछली सरकार पर राज्य के सभी संसाधनों का दुरुपयोग करके माफिया साम्राज्य को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश में एक मजबूत अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति भारत की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। नई दिल्ली में आज आईआईटी मद्रास तकनीकी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने नवाचार संचालित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अनुसंधान क्षेत्र में एक नया इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वो दिन बीत गए जब संस्थान केवल शिक्षा तक ही सीमित रहते थे। अब प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अनुसंधान केवल पीएचडी थीसिस, साइटेशन पेपर या प्रकाशन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अनुसंधान से नवाचार यानी इनोवेशन होना चाहिए।
2: रिसर्च मस्ट लीड टू इनोवेशन।
0: भाजपा सांसद राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक और राजेंद्र गुप्ता ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा कथित तौर पर राज्यतंत्र के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पर आरोप लगाया कि वो हाल ही में पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सांसदों को निशाना बनाने के लिए राजतंत्र का इस्तेमाल कर रही है।
3: मैं सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप ये विजिलेंस, ये पॉल्यूशन बोर्ड, ये पंजाब पुलिस का सहारा लेकर जो बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं, एक डेंजरस खेल है जिसकी शुरुआत तो आपने कर दी है लेकिन इसका अंत बहुत खराब होने जा रहा है। जब तक हम आपके साथ थे हम तमाम लोग बहुत अच्छे थे, बड़े संस्कारी थे, आज्ञाकारी थे और जैसे ही आपका साथ हमने छोड़ा हम सब लोग भ्रष्टाचारी हो गए।
0: इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के भाजपा में शामिल होने के संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी सांसदों का भाजपा में विलय असंवैधानिक है और उन्होंने राज्यसभा से उनकी अयोग्यता की मांग की। दिल्ली पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय साइबर धोखाधड़ी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए उत्तराखंड से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त राजीव कुमार ने बताया कि आरोपी ऑनलाइन निवेश घोटालों में शामिल थे। उन्होंने कहा कि वो साइबर जालसाजों के लिए फर्जी बैंक खाते बनाने और वित्तीय लेनदेन में सहायता करने में सक्रिय रूप से शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत के 2 पत्रकारों ने देश में साइबर अपराध का पर्दाफाश करने वाली चित्र आधारित रिपोर्टिंग परियोजना के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा तथा नताली ओबिको पियर्सन को इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में विजेता घोषित किया गया। उन्होंने ये रिपोर्ट ब्लूमबर्ग के लिए तैयार की थी। एक रिपोर्ट।
4: हनोई के रिपोर्टर अनिरुद्ध घोषाल को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग वर्ग में विजय घोषित किया गया है। उन्होंने अमेरिका की बॉर्डर पेट्रोल द्वारा गुप्त रूप से इस्तेमाल किए जा रहे व्यापक निगरानी उपकरणों की जांच की जिन्हें मूल रूप से सिलिकॉन वैली में विकसित किया गया था और बाद में चीन में उन्नत रूप से विकसित किया गया। इस श्रृंखला ने चीन और अन्य देशों द्वारा इनके उपयोग को भी उजागर किया। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसे अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता है। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: भारत सूडान विदेश कार्यालय परामर्श का 9वां दौर कल पोर्ट सूडान में आयोजित किया गया। परामर्श की अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका मामलों के संयुक्त सचिव और सूडान के विदेश मामलों तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अवर सचिव ने की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों देशों ने पारस्परिक हित के क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मध्य चीन के हुनान प्रांत में आतिशबाजी के कारखाने में हुए विस्फोट में 21 लोग मारे गए और 61 अन्य घायल हो गए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 0.3% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 246 अंक गिरकर 77,024 पर, जबकि निफ्टी 73 अंक लुढ़क

0: 24,047 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज भी ऐसी स्थिति रह सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात ने फुजैरा हमले की कड़ी निंदा की। हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी का पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण के लिए संघर्ष के बीच अमरीका और ईरान ने खाड़ी में नए सिरे से हमले किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमैका के विदेश मंत्री कामिना जे स्मिथ से बातचीत की। दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों का आह्वान। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

हम सुन रहे थे उड़न खटोला फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में शकील बदायूनी के बोल और नौशाद के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत सदाबहार नगमे में जिंदगी और हम फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में पंडित शिव कुमार के बोल और रोशन के संगीत के साथ सजा हुआ।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत

0: अनस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज।

0: आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

हम सुन रहे थे ये गीत आशिक फिल्म से मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत असली नकली फिल्म से, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत से सजा हुआ ये खूबसूरत सा नगमा।

0: हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं अगला नगमा, बात एक रात की फिल्म से, सुमन कल्याणपुर की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और सचिन देव वर्मन के संगीत से सजा हुआ।

0: सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। नेहा आपको भी मेरा नमस्कार।
2: नमस्कार सोनाली जी और सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
1: और क्या हालचाल है
2: भाई? हालचाल तो देखिए गर्मी सब जगह है तो गर्मी से हाल बेहाल है। तो हमने एक तरीका निकाला है।
1: कैसा
2: हमने
1: तरीका?
2: सोचा है कि देखिए अगर हम गर्मी में गर्मी की बात ना करें तो गर्मी कम लगती है।
1: अच्छा
2: क्योंकि गर्मी में गर्मी की ही बात करते रहेंगे तो अगर हम अंदर भी बैठे तो ऐसा लगेगा बाहर तो गर्मी है, अब अगर बाहर गए तो गर्मी लगेगी, अब धूप लगेगी, अब लू लगेगी। उसकी बात मत कीजिए, उसके बारे में मत सोचिए, परेशानियों के बारे में मत सोचिए।
1: परेशानियों को हमें बाय बाय कहना है, अलविदा कहना है और अच्छी अच्छी बातें करना है ताकि ये गर्मी से हमें राहत मिल जाए और ठंडक एहसास हो जाए ना।
2: तो ठंडे एहसास के लिए भी हम सखी सहेली भी सुनते हैं क्योंकि ठंडी ठंडी ऐसी मतलब एक ताजगी का अनुभव मिलता है क्योंकि बहुत सी बातें हमारे साथी भी करते हैं इसमें और हम भी करते हैं, अलग अलग विषय लेकर आते हैं
1: और हमारे साथी इतने सुंदर विचार लिखकर हमें भेजते हैं ना कि सचमुच दिल बाग बाग हो जाता है।
2: हाँ, और इसकी खुशबू से हम महक उठते हैं और ऐसा लगता है कि बस ठंड तो कहाँ है, ठंड ही यहाँ है ऐसा लगता है, गर्मी तो कहाँ है,
1: गर्मी है ही नहीं, है ना
2: जी।
1: वैसे आज के जो विषय है घर में डाइट फूड और बाहर जंक फूड, यानी आज के जो युवा है, युवा वर्ग है, उनका ऐसा मानना होता है कि भाई घर का खाना है उस वक्त मम्मी ने अगर घी भी दे दिया या कुछ अच्छी से मिठाई खिला दी तो कहें कि नहीं नहीं नहीं मैं तो अभी डाइट पे हूँ, और जैसे ही घर के बाहर जाते हैं तो पिज्जा बर्गर और सब नूडल्स वगैरह खाते हैं। तो घर में डाइट फूड और बाहर जंक फूड वाला ये फंडा उन्होंने अपना लिया है।
2: तो इस पर इनके क्या विचार है हमारे श्रोता वो बातें तो कहेंगे, साथ ही बातें हल्की फुल्की में आज हमारे श्रोता अपने विचार बता सकते हैं। पुराने जमाने के जन्मदिन किस तरह से मनाए जाते थे, उनका कोई जन्मदिन अगर उन्हें याद हो या उन्होंने मनाया हो, तैयारी की हो, तो ये सारी बातें हमसे साझा कर सकते हैं।
1: क्योंकि आजकल जो जन्मदिन मनाते हैं ना नेहा, वो बहुत ही अलग होते हैं। आजकल तो यानी शिशुओं के

0: हर महीने के भी जन्मदिन मनाते हैं।
1: हाँ।
0: साल भर जन्म, और उसमें अलग भले ही वो शिशु को पता ना हो पर केक लाई जाती है उसे कुछ समझ में आए ना आए पर हम सेलिब्रेट करते हैं, पर वो जो सादगी भरे जन्मदिन हुआ करते थे वो कैसे थे, आपके कैसे होते थे जन्मदिन, इस विषय पर आप हमें लिख कर भेजिए
1: जी। और उद्यमी महिला में हम आज याद करने वाले हैं शहनाज हुसैन को, जो हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट्स की उनकी कंपनी रही, उस उन्हें हम याद करने वाले हैं। और मुहावरों की दुनिया में हम कौन से मुहावरे की बात करेंगे आज
0: घर की मुर्गी दाल बराबर
1: तो ये वही जंक फूड वाले मामला ही हो गया।
0: हाँ,
1: ऐसा
0: बिल्कुल वैसे ही हो गया है। और जैसे हर्बल प्रोडक्ट्स की भी बात चलती है तो हम जो चंदन है, तुलसी है, एलोवेरा है, इन्हें हम इग्नोर करके हम जो है ना केमिकल वाले प्रोडक्ट्स को अपनाते हैं।
1: केमिकल तो वाला चंदन लेके आते हैं जिसमें सिर्फ चंदन की खुशबू हो
0: और पाउडर ही होता है बस। हाँ। और साथ ही आज एक खास दिन है, विश्व अस्थमा दिवस है
1: जी,
0: तो उस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे। पर अब क्या करना है, हमें
1: भी गाने सुनेंगे और क्या करेंगे,
0: तो सुनते हैं गीत।

0: ये गाना सुनते सुनते ऐसे ठंडी ठंडी वादियों का आनंद आने लगता है, क्योंकि वहां याद आ जाती है ना, जब सीन भी याद आने लगता है कभी कभी गाने का।
1: सचमुच हम नेपाल पहुंच गए थे।
0: हाँ, तो ठंडी ठंडी हवा ऐसे लगने लगी, ऐसा बड़ा अच्छा लगता, आनंद आ रहा था।
1: पर जो जो ठंडी होती है ना नेहा, ये जो जिन्हें अस्थमा होता है उन्हें परेशान करती है।
0: जी बिल्कुल।
1: क्योंकि उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है। वैसे आज विश्व अस्थमा दिवस है, तो पूरे विश्व में अस्थमा रोग के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ये दिन मनाया जाता है। और ये जो है ये दिवस प्रत्येक वर्ष मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। और इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को अस्थमा के कारण, लक्षण और बचाव और उपचार के बारे में जानकारी देना है, ताकि लोग समय रहते इस बीमारी को पहचान सके और उचित इलाज करा सके।
0: जी सोनाली जी, और आज के समय में अगर हम देखते हैं तो प्रदूषण बढ़ता हुआ, धूल धुआं और जीवन शैली भी जिस तरह से हमारी बदल रही है, उसके कारण भी अस्थमा एक गंभीर समस्या बन जा रहा है, क्योंकि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर उम्र के लोगों में ये रोग दिख रहा है और उसे प्रभावित कर रहा है उन्हें। और देखा जाए तो श्वसन तंत्र से जुड़ी एक बीमारी है अस्थमा, और व्यक्ति की श्वास नलिका में इसमें सूजन आ जाती है, जिसके कारण सांस लेने में उन्हें कठिनाई होती है। और अस्थमा के रोगी को आमतौर पर बार बार खांसी आना, सांस फूलना, सीने में जकड़न सी महसूस होना और सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज आती है, इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं।
1: और कई बार ऐसा होता है कि नेहा मौसम परिवर्तन है, फिर धूल है, फिर धुआं है, तेज गंध, ठंडी हवा या किसी प्रकार के एलर्जी के कारण भी अस्थमा का दौरा पड़ सकता है। यदि समय पर उपचार ना मिले तो ये स्थिति गंभीर भी हो सकती है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन और विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं के अनुसार दुनिया में करोड़ों लोग अस्थमा से पीड़ित हैं। भारत में भी ये बीमारी तेजी से बढ़ रही है, विशेष रूप से महानगरों और औद्योगिक क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में इसका प्रभाव अधिक देखने को मिलता है।
0: हाँ, क्योंकि वाहन से जुड़े प्रदूषण, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं या तंबाकू का सेवन, घरों में जो धूल जमा होती है, ये सब इसके मुख्य कारण है जो इसको ट्रिगर करते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं। और इसके अलावा अनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं जिसके कारण अस्थमा की संभावना बढ़ जाती होने की। और अगर आज के दिन की हम बात करें, विश्व अस्थमा दिवस, तो इस दिन पर विभिन्न अस्पतालों, विद्यालयों, सामाजिक संस्थानों और स्वास्थ्य संगठनों द्वारा जागरूकता अभियान तो चलाए जाते हैं, कई शिविर लगाए जाते हैं, स्वास्थ्य शिविर जहां मुफ्त जांच की जाती है और अस्थमा से किस तरह से बच सकते हैं ये सारी चीजें उन्हें बताई जाती है।
1: और इन शिविरों में इनहेलर से कैसे सांस ली जाती है उसका भी उपयोग हमें सिखाया जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि जो धूम्रपान करते हैं उन्हें ही अस्थमा होता है, यानी सांस संबंधी बीमारियां होती है, पर ऐसा नहीं है। अगर आपके घर में कोई धूम्रपान कर रहा है तो उसके घर में जो मौजूद लोग हैं, बच्चे हैं, फिर बुजुर्ग हैं, उन्हें भी ये बीमारी हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कि अगर आप सिर्फ धूम्रपान करते तो आप ही को होगा, आपके पूरे परिवार को भी अस्थमा हो सकता है।
0: अप्रत्यक्ष रूप से धूम्रपान ये भी हो रहा है, क्योंकि वो जो धुआं है वो उनके शरीर में भी जा रहा है और वो ज्यादा खतरनाक भी होता कहते हैं। और इनहेलर वगैरह की जानकारी तो उन्हें दी जाती है, साथ ही अस्थमा से बचाव के लिए क्या महत्वपूर्ण सावधानियां कर सकते हैं, रख सकते हैं, ये भी बताया जाता है। जैसे कि धूल और धुएं से हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए जिन्हें इस तरह से बीमारी है, घर और आसपास की सफाई का ध्यान रखना चाहिए ताकि धूल ना ज्यादा हो, धूम्रपान से बच सकते हैं, और कोई दूसरा अगर धूम्रपान कर रहा है जैसे कि आपने बताया तो उससे थोड़ा दूर रह सकते हैं। पर इसके अलावा नियमित व्यायाम कर सकते हैं, योग प्राणायाम जब करते हैं तो फेफड़े मजबूत होते हैं और इससे हमारा जो अस्थमा की जो रोकथाम है उसमें काफी मदद मिलती है, क्योंकि सांस लेने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है। पौष्टिक भोजन अगर हम करते हैं और स्वच्छ वातावरण में हम रहते हैं तो भी बीमारी से बचाव में ये सहायता करते हैं हमारी।
1: और एक जरूरी बात है नेहा, कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि सांस लेने में तकलीफ हो रही पर हम बस ऐसे कि अरे ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं है, आप ले लो, पर ऐसे नहीं है, उसे तुरंत हमें डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए। कि एक दो बार ठीक है, घरेलू इलाज कर लिया तो ठीक है, पर इसे इस बीमारी को बढ़ने नहीं देना है। कि बुखार भी आ रहा है, सांस लेने में तकलीफ भी हो रही है, तो ऐसा ना हो कि निमोनिया वगैरह हो सकता है या और भी गंभीर

0: गंभीर रूप की बीमारी हो सकती है तो तुरंत हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और कई लोग उचित सावधानी और उपचार के साथ सामान्य जीवन भी जीते हैं, अगर उन्होंने टाइम पे उपचार ले लिया ना तो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाती है। इसलिए अस्थमा जो है डरने की जरूरत नहीं बल्कि जागरूक होने की जरूरत है।
1: जी, तो आज के दिन का यही तो संदेश भी है सोनाली जी कि स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना अत्यंत आवश्यक है, और अगर हम स्वच्छ वातावरण बनाए रखें, प्रदूषण कम करें और अपनी सही जीवन शैली को अपनाएंगे तो अस्थमा जैसी बीमारी पर काफी हद तक हम नियंत्रण पा सकते हैं। और कहा जा सकता है कि जागरूकता ही इस बीमारी का सबसे बड़ा उपाय है। और अगर जो जो चीजें अगर डॉक्टर हमें बताते हैं कि किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, अगर उनका ध्यान रखेंगे तो हम इससे बिल्कुल अच्छी तरह से बच सकते हैं और आराम से रह सकते हैं उसके साथ भी।
0: एक हमारे साथी ने भी लिखा है इस विषय में कि अस्थमा जो है वो सांस लेने में दिक्कत होती है। इसी तरह के सभी श्रोताओं ने कमेंट्स लिखे हैं कि इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं। कुछ लोगों में पीढ़ी दर पीढ़ी असर देखने को आता है। इसके रोकथाम उपचार और सचेत रहने के लिए आज का दिन अर्थात ये दिन मनाया जाता है। तो यानी कि अगर हमें जान लेना चाहिए कि अगर आपके घर में दादाजी वगैरह को, दादी को, नाना नानी को अगर किसी को अस्थमा है तो हमें समय रहते उपचार लेना चाहिए, ज्यादा वक्त जाया नहीं करना चाहिए। और अभी हमें वक्त जाया नहीं करना है क्योंकि वक्त हो चुका है एक
1: अंतराल का।

0: हुसैन को। और भारत में उद्योग जगत में महिलाओं की सफलता की जब भी चर्चा होती है तब शहनाज हुसैन का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने सौंदर्य और हर्बल उद्योग में ऐसी पहचान बनाई जिससे भारत को विश्व स्तर पर गौरवान्वित किया था। और उनका जन्म एक शिक्षित और प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। बचपन से ही वे प्रतिभाशाली और रचनात्मक स्वभाव की थी। उनकी शिक्षा अच्छे वातावरण में हुई, कम आयु में उनका विवाह हो गया था, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा। उस समय महिलाओं का व्यवसाय के क्षेत्र में आगे आना आसान नहीं था, फिर भी उन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपनी अलग पहचान बनाई।
1: और उन्हें सौंदर्य और त्वचा की देखभाल में विशेष रुचि थी और इसी रुचि ने उन्हें इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने भारत के साथ साथ विदेशों में भी कॉस्मेटोलॉजी और ब्यूटी थेरेपी का प्रशिक्षण

0: से छोटे स्तर पर काम करना शुरू किया था। धीरे धीरे उनका कार्य बढ़ता गया और उन्होंने शहनाज हर्बल्स नामक कंपनी की स्थापना की। ये कंपनी आज विश्व प्रसिद्ध ब्रांड बन चुकी है। उनकी कंपनी ने भारत के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन, खाड़ी देशों और एशिया के अनेक देशों में भी अपनी पहचान बनाई है और उनके सौंदर्य केंद्र और उत्पाद विश्व भर में लोकप्रिय हुए हैं। ये भारत के लिए गर्व की बात है। एक भारतीय महिला ने आयुर्वेदिक सौंदर्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध किया। ये महिलाओं के लिए बड़ी ही प्रेरणादायक बात है। और शहनाज हुसैन ने केवल अपना व्यवसाय ही नहीं बढ़ाया बल्कि हजारों महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भर बनाने का अवसर भी दिया।
1: बिल्कुल, तो कई बार ऐसा आप कहते हैं ना कि एक महिला अगर शिक्षित हुई तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। उसी तरह से अगर एक महिला सफल हुई तो अपने साथ कई महिलाओं को सफल होने का मौका भी देती है और साथ ही उनकी ओर देखकर भी बहुत सी महिलाएं अपना काम करना चाहती हैं। तो उन्होंने महिलाओं को ब्यूटी और वेलनेस प्रशिक्षण दिया, आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा दी और बहुत सी महिलाएं आज भी उनके प्रशिक्षण संस्थानों से शिक्षा लेकर सफल व्यवसाय चला रही हैं। और महिलाओं को उन्होंने यही संदेश दिया कि घर तक सीमित ना रहो और अपनी जो भी प्रतिभा है, जो भी क्षमता है आपकी, उसको पहचानो। लेकिन क्योंकि वो सिर्फ सफल हो गई और ये सारी चीजें कर रही हम कह रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कई संघर्ष तो होता ही है। तो उन्होंने भी कई कठिनाइयों का सामना किया। शुरुआत में लोगों को हर्बल उत्पादों पे उतना भरोसा नहीं हुआ करता था, कहते थे कि भाई पता नहीं कैसा रहेगा। आर्थिक चुनौतियां भी उनके सामने थी लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर हर चुनौती को उन्होंने पार किया। फिर धीरे धीरे उनका नाम सफल महिला उद्यमी की ओर बढ़ता गया, प्रसिद्ध होती गई। और कई महत्वपूर्ण गुण थे उनके, जैसे कि आत्मविश्वास
0: और कठिन परिश्रम, नई सोच, आयुर्वेद पर विश्वास, ग्राहकों की जरूरत को समझने की क्षमता, सकारात्मक दृष्टिकोण। पुरस्कार और सम्मान की बात की जाए तो उन्हें अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त तो उन्हें विश्व के कई मंचों पर भी सम्मानित किया गया।
1: बिल्कुल, उनकी उपलब्धियों की अगर हम बात करें, उनकी उपलब्धियां जब हम देखते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि भारतीय महिलाएं भी विश्व स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकती हैं। साथ ही उन्होंने ही भारतीय आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा को नई पहचान दी और रासायनिक उत्पादों की बजाय इन उत्पादों को अपनाएं और इसके लिए प्रेरित भी किया। और अब देखा जाए तो हर्बल और ऑर्गेनिक उत्पाद कितने बढ़ रहे हैं और लोकप्रियता बढ़ाने वाली कौन है? शहनाज हुसैन।
0: शहनाज हुसैन जी, तो उन्हें हम याद करते हैं और हम भी अपनी सखियों सहेलियों को कहेंगे कि इन सब जो महिलाओं की जब हम बातें करते हैं तो उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेना चाहिए कि हमें भी अगर मन में कुछ इच्छा है तो उसे जरूर पूरा करना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: और अब गाना सुनना चाहिए।
1: हाँ, मन में इच्छा तो हो गई है,
0: सुनते हैं गीत।

0: तो ऐसे गोरे गोरी बातें कर रहे थे हम।
1: गोरे होने की बातें।
0: हाँ, लेकिन कभी कभी ये भी कहते हैं ना कि देखिए रंग जिसको जैसे जो मिलता है उस रंग को अगर अपनाया जाए तो कितना अच्छा होता है, क्योंकि कभी कभी हम ऐसा होता है कि अपने रंग को लेकर बहुत ज्यादा मन में सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं। जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट अपनाए जाए जो त्वचा की जैसे नमी बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं,
1: यानी कि अगर
0: या
1: सर्दियों का मौसम है तो हमारी
0: हाँ
1: मॉइस्चराइजर यो घर के भी इस्तेमाल कर
0: हाँ
1: सकते हैं कि हम अगर दूध की मलाई को थोड़ा सा लगा ले, और कुछ लोग रात को अपना घी लगा लेते हैं, उससे भी
0: जी
1: सॉफ्ट हो जाती है स्किन। और बहुत सारी महिलाओं को है ना, जो हमें नहीं मिला होता उसका गम होता है कि भाई
0: हाँ
1: हमारा रंग तो सावला है तो क्या हुआ, सावले रंग के लोग भी बहुत सुंदर दिखते हैं। एक अगर हम अच्छे से रहे, एक आकर्षक व्यक्तित्व हो, तो कोई भी रंग रंग कोई मायने ही नहीं रखता है, हमारा व्यक्तित्व मायने रखता है।
0: अगर ये कह सकते हैं कि जिस तरह से हम हैं उस तरह से अगर हम खुद को अपना लें, कि जैसा जो चीजें नहीं बदली जा सकती उसको अगर उस तरह से अपना लिया जाए और उसके बाद अपने व्यक्तित्व में हम काफी काफी बदलाव ला सकते हैं, अपने स्वभाव में बदलाव ला सकते हैं, व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं, तो वहां तो हम अच्छे की ओर जाते जाएं। लेकिन जो जैसे त्वचा है, त्वचा का कोई रंग हो या कुछ, मान लीजिए कि कभी किसी के मुहासे ज्यादा निकलते हैं किसी के नहीं निकलते हैं, तो वो अब उसकी त्वचा तो अच्छी है वो क्यों नहीं निकल रहे हैं इसके मुहासे, तो इस तरह की चीजें ना सोचकर अपने आप को अपना लेना चाहिए ना,
1: और अब हमें ब्रेक
0: ब्रेक
1: लेना
0: ले
1: है,
0: लेना चाहिए
1: तो लेते हैं ब्रेक।
0: जी।

0: तो ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है सखी सहेली,
1: सहेली।
0: और हमारे श्रोताओं के हैं बहुत सारे कमेंट्स। तो जो मुहावरों की दुनिया, इसमें जो हमने लिया है मुहावरा, घर की मुर्गी
1: दाल
0: दाल
1: बराबर।
0: बराबर।
1: तो इसका सीधा सा अर्थ क्या है, ये हमारे साथियों ने भी लिख भेजा है, बहुत से कमेंट्स उन्होंने भेजे हैं और सारी चीजें बता दी हैं उन्होंने कि क्या क्या अर्थ

0: होता है।
1: हमारे एक साथी लिखते हैं नेहा कि घर घर की मुर्गी दाल बराबर, बाहर आपको कितना भी मान सम्मान मिले पर घर में कोई इज्जत नहीं मिले तब ये कहावत कही जा सकती है। अक्सर
0: हाँ
1: सबके घर में पति देव का यही हाल होता है मुझको छोड़कर आपने देखिए कितना सेफ गेम खेला है
0: हाँ
1: ना
0: क्योंकि कमेंट्स है ना, बाहर ही है कमेंट सारा।
1: हाँ तो अगर
0: हमारे
1: ऐसे
0: एक और साथी कह रहे हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर एक प्रसिद्ध हिंदी लोकोक्ति है, जिसका अर्थ है आसानी से उपलब्ध वस्तु या अपने ही आदमी की कद्र ना होना। जब कोई मूल्यवान चीज या व्यक्ति हमारे बहुत करीब होता है तो हम उसे साधारण या कम महत्व का समझने लगते हैं।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, जो चीज हमेशा पास में होती है उसकी कीमत कम समझी जाती है, नजरअंदाज कर दिया जाता है। घर में कितना भी अच्छा हो खाना, तो हमारे जो बच्चे हैं उन्हें जंक
0: हाँ
1: फूड ही पसंद आता है, ये भी उन्होंने घर की मुर्गी दाल बराबर के लिए कहा है। तो बहुत
0: हाँ
1: सारी ऐसी बातें होती है नेहा कि घर की मुर्गी दाल बराबर में ऐसा होता है कि हमारे घर में अगर हमारे दादाजी हैं, पिताजी हैं,
0: हाँ
1: उन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान है, तो भी बच्चों को कह लीजिए उनके परिवार वालों को उतनी वैल्यू नहीं होती है उनकी।
0: हाँ
1: बाहर के लोग कहते हैं कि अरे कितना ज्ञान है इन्हें और इनके ज्ञान से हमें फायदा होगा, पर घर वालों को ऐसा लगता है कि अरे इनके पास क्या है। तो ये कहावत हमारे सभी के लिए ये
0: हाँ
1: लागू होती है, तो हमें अपनों को भी महत्व देना चाहिए। अब
0: बिल्कुल
1: जैसे हमने प्रोडक्ट्स की बात की थी, तो हमारे पास में घर में इतना खजाना है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हमारे घर में मौजूद होते हैं, पर भी हम जो है ना बाहर के प्रोडक्ट्स, केमिकल वाले प्रोडक्ट्स जो होते हैं, क्योंकि उसमें कलर और फिर पैकिंग उनकी जबरदस्त होती है और उसमें खुशबू जो अलग सी आती
0: नटी
1: है,
0: वाली
1: तो उसमें हम आकर्षित हो जाते हैं और हम अपनी चीजें जो अपने पास में है उन्हें
0: हाँ
1: हम इग्नोर कर बैठते हैं।
0: वही
1: तो
0: चीज जैसे हमने अभी भी कहा था कि हम अपने पास जो चीजें हैं उसको नहीं देखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास हम ऐसे दिख रहे हैं वैसे दिख रहे हैं, सामने वाला ज्यादा अच्छा दिख रहा है, और हो सकता है वही सामने वाला हमारी उन चीजों को देखकर वैसा ही सोच रहा हो कि इसके पास कितनी अच्छी चीजें हैं, कि इसके चेहरे की बनावट अच्छी है। जैसे हम किसी का रंग देखकर सोच रहे हैं, कोई ये सोच रहा हो देखकर हमें कि इसके चेहरे की बनावट कितनी अच्छी है। तो इस तरह से क्या एक दूसरे की चीजों को देखते रहना और अपने पास जो चीजें हैं उसका महत्व ना समझना ही इस मुहावरे को बिल्कुल सार्थक कहता करता है कह सकते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि वो उन्होंने बताया कि घर की मुर्गी दाल बराबर, भाई इस मुहावरे का मूल मतलब है कि घर के लोगों की कोई कीमत नहीं, इस कारण ही से ही लोक में इस मुहावरे का चलन है। ये सच भी है क्योंकि घर के लोगों से लोग सुपरिचित होते हैं जबकि बाहर के लोगों की कद्र करते हुए अच्छा खासा भाव देते हैं। इस दृष्टिकोण से घर के लोगों में स्वयं के प्रति हीन भावना भी पनप सकती है, इसके ज्ञान से अनभिज्ञ लोग ही ऐसा करते हैं।
1: तो कई बार ऐसे होता है ना कि नेहा के अपने घर में जो बच्चे हैं उनमें अगर कुछ कला है, उनमें अगर कुछ
0: हाँ
1: प्रतिभा है, तो हम उनकी तरफ अनदेखा कर देते हैं, और सामने हम टीवी में बैठे हैं कोई बच्चे गा रहे, तो हम उनकी इतनी तारीफ करते हैं, देखो कितना अच्छा गा रहा है। अगर
0: हाँ
1: हमारे बच्चे जो हैं उनमें अगर वो कला है, वो अच्छे से गा रहे हैं या बहुत अच्छी पेंटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे नृत्य कर रहे हैं, तो उन्हें अगर हम सजाएं संवारें, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, तो वो
0: हाँ
1: भी उन्हीं की तरह नाम कमा सकते हैं,
0: तो
1: है ना।
0: कई बार ऐसा होता है कि जब उन्होंने कहा होता है कि हम ये सीख लें या हम ये करना चाहते हैं तो हम उन्हें डांट देते हैं, और फिर सामने जब टीवी पे आप जैसे कह रहे हैं कुछ चलता रहता है तो हम कह रहे हैं देखो ये छोटा सा बच्चा तुम्हारी
1: कितना
0: उम्र का है
1: अच्छा
0: कितना अच्छा गा रहा है।
1: गाया
0: तो अब उसने बच्चे ने भी शायद कभी बोला हो कि मुझे गाना सीखना है, तो हमने उसे डांट के कह दिया कि तुम पढ़ाई करो,
1: चुपचाप
0: तो
1: बैठ जाओ
0: हाँ लेकिन हम
1: पढ़ने
0: तारीफ उसकी कर रहे हैं। तो वो भी हीन भावना होती कि हमें तो सपोर्ट नहीं मिल रहा, साथ में नहीं बढ़ने मिल रहा है। हमारे एक
1: यानी
0: साथी ने भी तो ऐसे ही कुछ कहा है, वो
1: हाँ
0: कह रहे हैं कि कई ऐसे किस्से होते, दुखती रग पर हमारे हाथ रख दिया ऐसा वो कह रहे हैं कि कई ऐसे किस्से होते हैं जो मैं धर्मपत्नी और बच्चों को बताकर सावधान करता हूँ, जैसे कि साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड के विषय में हो, उस समय तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से वो निकाल देते हैं। वहीं साइबर क्राइम की कोई घटना किसी न्यूज़पेपर में छपी हो या सखी सहेली प्रोग्राम में बताई जाए तो सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्मपत्नी बड़े ध्यान से बच्चों को समझाती है, फिर मैं उनसे कहता हूँ कि इसके विषय में तो मैंने पहले ही सबको सावधान किया था पर तुमने ध्यान नहीं दिया, अर्थात घर की मुर्गी दाल बराबर। तो बताइए हमारी शिकायत हमसे ही हो रही यहाँ
1: हमें ही घर की मुर्गी दाल बराबर बना दिया
0: हाँ हम तो रोज आते भी, हम लोग घर के ही हैं,
1: हाँ
0: हम तो कोई ऐसा आप हमसे इस तरह से मतलब कहना नहीं चाहिए हम लोगों को
1: एक साथी ने लिखा है, घर का बना भोजन चाहे कितना स्वादिष्ट हो, कम पैसों में बना हो, तो भी घर का ही है। वहीं बाहर का भोजन बहुत अच्छा होता है, 10 या 20 रुपए की रोटी जो है वो और 250 का सूप, महंगी सब्जी हमें अच्छी लगती
0: हाँ,
1: है
0: स्वाद बढ़ जाता है और हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि जब मेहमान आते हैं तो नए नए बर्तन बाहर आते हैं, नई थालियां, नई चमकते चम्मच, कांच के गिलास, जब मेहमान आते हैं तभी ये सब देखने को मिलता है, बाकी तो घर की मुर्गी दाल बराबर। ये तो इससे तो हम भी सहमत हैं
1: हाँ,
0: कि
1: है
0: वो
1: ना।
0: सारी चीजें तो बस रखी ही मेहमानों के लिए जाती
1: हाँ,
0: हैं।
1: तो फिर इंतजार करती है गृहिणी।

0: कब मेहमान आएंगे तब ये नई वाली क्रॉकरी निकालेंगे।
1: अब ऐसा लगे गृहिणी से ज्यादा तो घर के लोग उसका ध्यान रखते हैं कि कब ऐसा हो कि कोई तो आए तो ये इन थालियों में हमें भी खाने मिले, है ना।
0: पर अब गाना सुन ले,
1: बिल्कुल
0: सुनते हैं गीत।

0: और घर की मुर्गी दाल बराबर जब बात हो रही है तो क्यों ना बात हो जाए घर पर डाइट फूड और बाहर के जंक फूड की।
1: ऐसा ही होता है ना,
0: हाँ?
1: जब मम्मी कहती है कि भाई लड्डू खा के जाओ या फिर कुछ अच्छी मिठाई बनाई खा के जाओ, तो
0: हाँ?
1: बच्चे कहते हैं कि नहीं, हम डाइटिंग पे हैं, हम नहीं खाएंगे, कितना घी डाला है उसमें
0: हाँ?
1: और कितना सारा बटर डाला है, कितना सारा उसमें शक्कर या गुड़ डाला है, तो हम नहीं खाएंगे। और फिर बस घर में बस हम उबला हुआ खाएंगे, उबला हुआ उबली हुई सब्जी खाएंगे,
0: हाँ
1: उबला हुआ खाना खाएंगे, और थोड़ी देर बाद ये देखते हैं कि फोटो आ रहे कि दोस्तों के संग बैठ के पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, तो ये
0: कोल्ड
1: घर घर की कहानी है।
0: हाँ, घर की कहानी तो होगी क्योंकि ऐसा लगता है कि हम बाहर ही खा लेंगे, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। अगर वो आपने टिफिन दे दिया तो फिर बहुत ही बड़ा ऐसा मजाल आपके टिफिन को लेके जाता हाथ से। तो स्वास्थ्य के प्रति तो बहुत जागरूक हो गए हैं वैसे तो हम लोग, और कहते हैं कि कम तेल घी का घर में जो भोजन बनता है, हल्का भोजन बनता है, ऐसे ही बनाना चाहिए। अरे आप कितना तेल डालती हैं, कितना घी डालते हैं घर में खाने में, ऐसा हम बोलते हैं, जबकि घी अच्छा होता है खाने के लिए।
1: पर वो बच्चों को ऐसा
0: हाँ,
1: लगता है ना कि घी से हमारा वजन बढ़
0: मोटे हो
1: जाएगा।
0: जाएंगे। हाँ, बर्गर से वो पतले होते जाते हैं। तो वो कहते हैं कि फिटनेस

0: करना
1: हाँ
0: है, हेल्दी लाइफस्टाइल। अब आज से हम एक ही रोटी खाएंगे, दूसरी रोटी नहीं होगी, इस तरह की बहुत सी बातें होती हैं। लेकिन फिर बाहर जाते हैं तो फिर सारी बातें कहती है कि एक दिन पिज्जा
1: हाँ
0: खाने वाले, जो
1: यानी
0: कि वो
1: उस
0: पूरा
1: दिन,
0: एक हफ्ते का
1: हाँ
0: सब
1: हाँ
0: निक्की निक्की हो जाता
1: यानी
0: साइज
1: हम
0: में।
1: एक दिन सिर्फ वो चीटिंग करते हैं कि
0: हाँ
1: एक दिन हम बाहर का खा लेंगे, पर फिर बाकी दिन हम घर का नहीं खाएंगे, जबकि मम्मी का प्यार दुलार भी होता है उसमें,
0: हाँ
1: आत्मीयता होती है, और जो पराठे बनाती है तो मम्मी के हाथ के, उसमें साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है
0: हाँ
1: कि उसे ढककर रखा जाता है, साफ हाथ धोकर बनाया जाता है, पर वही फिर से घर की
0: और
1: मुर्गी दाल।
0: पसंद का भी तो ख्याल रखा जाता है कि भाई
1: हाँ
0: जिसको जो पसंद है वो
1: हाँ
0: सब्जी बनती है, जिसको जो पसंद है वैसी रोटी बनती है, किसी को तिकोना पराठा पसंद है, किसी को चौकोर पराठा पसंद है, तो उसके हिसाब से। अच्छा, ये साइज भी बदलते हैं, शेप भी
1: हाँ
0: बदलते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन बस वही है कि नहीं, आकर्षक पैकिंग में जब बाहर का खाना मिलता है, स्वाद अच्छा लग रहा है, फैशन भी होता है ये सब चीजें, कि अगर अरे तुम तो घर का ही खाना खाते हो, इस तरह से अगर बोल दिया जाता है, तो वो एक फैशन के साथ में जाने के लिए भी बाहर का खाना खाना बहुत जरूरी हो जाता है।
1: और है ना, क्या होता है कि घर का खाना जब हम डब्बे में डाल के देते हैं तो कुछ समय में ठंडा हो जाता है, स्वाभाविक सी बात है ठंडा हो
0: हाँ
1: जाता है, पर बच्चों को वही लगता है कि वो गरम गरम खाना है तो स्वाद में थोड़ा सा अच्छा रहेगा,
0: हाँ
1: पर उसके पीछे जो है कितनी सारी माओं की मेहनत होती है, और फिर उसमें ये बात है ना कि हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। तो बाहर
0: हाँ
1: घर में हम कहेंगे कि हमें मैदा नहीं खाना है, और बाहर जाके हम मैदा मैदे की बनी रोटी खा लेते हैं, और ना
0: हाँ
1: जाने ऐसी कितनी चीजें खा लेते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है।
0: बिल्कुल। और आमतौर पर अगर हम देखें तो घर में जो खाने बनते हैं सिर्फ एक ही तरह का नहीं बनता, पारंपरिक भोजन बनता है, और कई बार ऐसा होता है अलग अलग मौसम के हिसाब से त्योहार होते हैं, अलग अलग मौसम के हिसाब से, भी गर्मी है तो ये चीज तो बनेगी ही बनेगी, आम पना बनेगा, आम का रस बनेगा, या ठंडी हो गई तो ये गुड़ वाली चीजें बनेंगी,
1: गोंद के लड्डू
0: हाँ
1: बनेंगे।
0: लड्डू बनेंगे, तो इस तरह से जो वो होता है ना, क्योंकि वो मौसम को ध्यान में रखकर परंपरा हमारी इस तरह की रही है,
1: यानी हमारे
0: तो हाँ
1: शरीर को जितनी जैसी जरूरत है उस
0: हाँ
1: हिसाब से वो डिजाइन किए गए हैं,
0: हाँ
1: है ना, कि उस त्योहार से जुड़ी हुई कितनी सारी, यानी सांस्कृतिक महत्व भी है उसका, कि वो फसल उगती है नहीं, तो हमारे
0: हाँ
1: शरीर के लिए कितनी जरूरी है, तो उससे बनाए हुए व्यंजन हमें खिलाए जाते
0: खाने
1: हैं,
0: चाहिए।
1: बनाए जाते हैं।
0: हाँ तो अगर हम घर का भोजन खाएं तो ये सारी चीजें भी मिलती है, बाहर तो सारी चीजें एक ही मिल रही है, हमेशा वो मिल रही है, आप जब चाहें वहां जाके लड्डू खा सकते हैं, आप जब चाहें वहां जाके कुछ भी खा सकते हैं, गर्मियों का भोजन आप सर्दी में खा सकते हैं, सर्दी का गर्मी में खा सकते हैं, क्योंकि पैकेट बंद आपको आम का रस 12 महीने मिल सकता है, लेकिन वो
1: हाँ,
0: रस तो नहीं है ना
1: फ्रोजन होता
0: उसमें।
1: है वो। हाँ,
0: हाँ
1: और फिर उसमें जो विटामिन जो है वो तो नष्ट हो ही जाते हैं,
0: हाँ
1: साथ में उसमें इतने सारे प्रिजर्वेटिव डाले होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते
0: जी
1: हैं, पर हम ये हाथ कह के हाथ ऊपर कर देते कि नहीं भाई, हम बहुत तेल घी वाला खाना नहीं खाएंगे, हम तला हुआ खाना नहीं खाएंगे,
0: सिर्फ
1: पर हम बाहर
0: समोसे खाएंगे बाहर। वो कई बार बेक्ड समोसा बोल के भी खाते हैं कई बार, बट रहता वो मैदा ही बेक्ड होता है।
1: और उसमें इतना सारा मोयन डला होता है, क्योंकि मैदे को अगर बेक भी करेंगे तो उसको जो कुरकुरा बनाने के लिए उसमें अगर मोयन ना डला होगा तो
0: जी
1: वो ऐसा कुरकुरा या स्वादिष्ट बनेगा ही नहीं।
0: तो ये कह सकते हैं कि भाई जो बच्चे हैं उन्हें भी, बच्चे या बड़े जो भी हैं जिन्हें भी ये शौक है कि घर पे डाइट करते हैं और बाहर जाते ही साथ वो तुरंत वो अपनी सारी डाइट को भूल जाते हैं, एक दिन के लिए बोलते हैं लेकिन वो पूरा एक दिन आपका पूरा एक हफ्ता की डाइट जो है बराबर कर देता है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखें। और घर में भी जो खाना दे रहे हैं उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि क्यों ये बाहर का खाना ज्यादा खाना चाह रहे हैं, तो थोड़ा उसको आकर्षक ढंग से परोस सकते हैं, ऐसे ही नहीं कि बस ये कटोरी में दाल डाली और ये, तो अगर थोड़ा सा सजा कर दे दें तो उन्हें अच्छा लगेगा शायद, हो सकता है इस वजह से। और अगर साथ में बैठकर हम खाते हैं तो भी एक अलग सा एहसास होता है, तो इस तरह से कुछ चीजों में हम भी बदलाव कर सकते हैं, घर की चीजों में, देने के तरीके में, या उनकी पसंद की चीजें तो खैर बनती ही है, तो वो सारी चीजें अगर
1: यानी
0: हम
1: उसे भी
0: बदलेंगे।
1: आकर्षक बना के अगर
0: हाँ
1: परोसे ना तो बच्चे वो भी शौक से खा लेते
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: तो दोनों तरफ ही सुधार की जरूरत है।
1: और अब गाना सुन ले,
0: हाँ
1: सुनते हैं गीत।

0: और हमें इंतजार रहता है अपने जन्मदिन का, ताकि कितनी अच्छी तरह से हम अपने जन्मदिन को मनाएं और बड़े आराम से रहें अपने जन्मदिन में, कुछ ना कुछ करते ही हैं सब।
1: पर पुराने जमाने का जन्मदिन वो बिल्कुल भी ऐसा एकदम यानी आज की चकाचौंध वाला नहीं हुआ करता था,
0: हाँ
1: बिल्कुल सादगी से मनाते थे। और मुझे तो याद है नेहा कि मैंने जब मेरी मम्मी से पूछा तो कि सभी लोगों के जन्मदिन ऐसे त्योहार के दिन कैसे आते, किसी का
0: हाँ
1: होली पे, किसी का दिवाली पे, किसी का राखी पे, तो हमारी मम्मी कहती थी कि जब उस त्योहार के आसपास जब आते थे तो उसी दिन सेलिब्रेट कर
0: तो एक साथ हो जाती है,
1: देते
0: मिठाइयां बन जाती हैं एक साथ,
1: थे।
0: ज्यादा मिठाइयां बन जाती होंगी।
1: हाँ तो इस तरह से सादगी भरे जन्मदिन हुआ करते थे। और हमारे श्रोताओं ने भी बहुत सारे कमेंट्स लिखकर भेजे हैं। तो हमारे एक साथी ने लिखा है कि पुराने जमाने के जन्मदिन हल्की फुल्की बातें, पुराने जमाने के जन्मदिन पर अक्सर क्या हुआ करता था, आज जब हम अक्सर केक लाते थे तो उस समय लोगों को प्लेट में रखकर खिलाया करते थे, कोई समोसा खिला दिया तो किसी ने ढोकला खिला दिया,
0: हाँ
1: पार्टी की जगह ऐसे ही अपने दोस्तों को बुलाकर पार्टी दिया करते थे। उसका जो मजा होता था बहुत अच्छा होता था, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं होती थी, कुछ दोस्त आधा आ जाते थे, हमें कुछ 5 5 10 रुपए वाले जो गेम या टॉयज आते थे वे
0: हाँ
1: दिया करते थे, बहुत मजा आता था, सब मिलकर एक साथ बैठा करते थे, बातें किया करते थे। खास जो बच्चे होते हैं वे, यानी उन्होंने वही लिखा है कि उपहार 5 10 रुपए के उपहार में भी हम खुश हो जाते थे
0: बिल्कुल। हम
1: छोटे।
0: एक और साथी लिखते हैं कि पुराने जमाने में जन्मदिन मनाने का उद्देश्य यही था कि बुजुर्ग व्यक्तियों को परिवार में आदर सम्मान मान प्रतिष्ठा हमेशा ऊंची रहे, इस कारण पिताजी या दादाजी का जन्मदिन बेटे पोते मनाया करते थे। खाना भी अच्छा होता था, खीर हलवा बनाकर उन्हें खिलाया जाता था, दान दक्षिणा दी जाती थी। पर आजकल का जमाना बदल गया है, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों का जन्मदिन मनाया जाता है, खान पान भोजन भी अच्छा नहीं होता, लेकिन केक जरूर आते हैं, पर मैं खुद कभी भी नहीं खाता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा है।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि आजकल के हाईटेक और भव्य समारोहों से बिल्कुल अलग सादगी और अपनत्व से भरे होते थे। उन दिनों जन्मदिन मनाना एक सादगीपूर्ण उत्सव था, जहां महंगे गिफ्ट से ज्यादा भावनाओं को महत्व दिया जाता था। यहां पुराने दिनों के जन्मदिनों की हल्की फुल्की यादें हैं कि नया कपड़ा, सादगी से सुबह सुबह नहा धोकर

0: नए कपड़े पहन लिए, फिर उसके बाद में फिर मंदिर या गुरुद्वारे में माथे टेकना। जन्मदिन की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद से होती थी। उसके बाद आस पड़ोस में मिठाई बांटी जाती थी। स्कूल में टॉफी देने का दौर था, फ्रॉक या शर्ट पहनकर जाना। पूरी कक्षा में जो है उन्होंने टॉफियों के नाम लिखे थे, टॉफियां देते थे। और घर का बना केक माँ अपने हाथ से बनाई जाती थी, जिसमें बहुत सारी टूटी फ्रूटी डालकर सजाकर बनाई जाती थी। और फिर गुब्बारे में फुलाकर गुब्बारे से फुलाए जाते थे और गेम खिलाए जाते। शोर शराबा, म्यूजिकल चेयर, पासिंग द पार्सल जैसे पारंपरिक खेल, जहाँ बच्चों की हंसी और शोर पूरे घर से गूंजता था। और गिफ्ट की सादगी, उपहार में किताबें, कलर बॉक्स और हाथ से बने ग्रीटिंग कार्ड मिलते थे, जिन्हें बहुत संभाल कर रखा जाता था।
1: और एक और साथी कह रहे हैं कि जन्मदिन की भारतीय संस्कृति में कोई परंपरा नहीं, क्योंकि जन्मदिन देवों के मनाए जाते हैं, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी, और स्वयं के अहंकार के चलते पाश्चात्य संस्कृति के अनुकरण में ये मनाया जाता है, ऐसा कह रहे हैं। इसके चलते कई उद्योग पनप गए हैं। एक और साथी कहते हैं कि हमारे जमाने में लड़कियों का जन्मदिन नहीं मनाया जाता था, लड़कों का खूब जन्मदिन मनता था। विधि विधान पूजा पाठ करते थे, गुलगुले बनते थे, पड़ोसी महिलाएं और परिवार के लोगों को बुलाकर खान पान होता था, गुलगुले बांटे जाते थे। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि पुराने जमाने में केक काटने का चलन नहीं था, सादगी और अपनेपन से मनाते थे। माता पिता बच्चों को सुबह सुबह आशीर्वाद देते, माथे पे तिलक लगाते, मिठाई खिलाकर शुभकामना देते, और जिसका जन्मदिन होता सबसे पहले सभी बड़े लोगों को शीश नवाकर प्रणाम करता और नए कपड़े पहनता। घर में खीर पूड़ी या बच्चे के पसंद का कुछ भोजन बनता, अन्य सभी छोटे बच्चों को भोजन करवाया जाता और हंसी खुशी का माहौल परिवार में रहता है। समय दिखावा कम और संस्कार अधिक होते थे। बड़ों का आशीर्वाद, परिवार का प्यार और छोटे छोटे पलों की खुशी ही जन्मदिन की सबसे बड़ी सौगात मानी जाती है।
0: एक हमारे साथी लिखते हैं कि हम अपने बच्चों के जन्मदिन पर भी घर पर ही उनके पसंद का खाना बनाकर उनके दोस्तों के साथ मनाते थे। उनके मित्र भी वैसे ही थे। आज अब बड़े होने पर भी हमारे घर यही क्रम है। वे इसी बहाने हमारे शहर में आते हैं तो फोन पर बातचीत नहीं आते हैं तो फोन पर बातचीत करके बधाई तो हम दे ही देते हैं।
1: हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जन्मदिन में अच्छे कपड़े पहन के बड़ों के पैर छूते थे, आशीर्वाद लेते थे, मंदिर जाते थे, स्कूल में सभी को छोटी चॉकलेट बांटते थे। लेकिन इनका जन्मदिन आता था 31 मई को वेकेशन में, तो ये सबकी चॉकलेट खा जाते थे, किसी को नहीं देते थे, तो इनका जन्मदिन खास हो जाता है।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि माँ जो है ना खीर पूरी बनाई जाती थी, उसका मुख्य आकर्षण रहता था, मेहमानों का तांता लग जाता था, पड़ोस के बच्चे रिश्तेदार सुबह से ही बधाई देने आते थे बिना किसी गिफ्ट के। मासूमियत भरी थी, दोस्तों से मिलने वाले रिटर्न गिफ्ट में चॉकलेट, लिपस्टिक, चॉकलेट या इडली स्टिक की खुशबू होती थी। और बहुत सारे पार्टी गेम्स भी खेलते थे, म्यूजिकल चेयर वगैरह, इन्होंने बहुत सारे नाम लिखे हैं।
1: और एक साथी कह रहे हैं कि फोटो खींचने के लिए रील वाला कैमरा होता था, जिसकी फोटो डेवलप होकर कई दिन के बाद आती थी, लेकिन वो पल अनमोल होते थे। ड्रेस कोड तो कुछ होता नहीं था, नई ड्रेस पहनने का उत्साह होता था जो अक्सर पूरे साल के लिए खास होती थी। पुराने दिनों के जन्मदिन में दिखावा कम, अपनापन ज्यादा।

0: नमस्कार, सेल्यूलॉइड के सितारे।
1: इस कार्यक्रम में आज के सितारे हैं जाने माने अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और इन सबसे पीछे छिपे हुए एक बहुत ही भोली और बहुत ही समझदार शख्सियत के मालिक मनोज कुमार, जिनका फिल्मी करियर लगभग 4.5 दशक पुराना है और आज भी मनोज कुमार जी के विचार, उनकी सोच इस समाज के प्रति, इस देश के प्रति और इस आज के युवा के प्रति उतने ही मायने रखती है जितने की उनकी फिल्में। उन्होंने हमेशा ही एक सोच समझ के एक दायरे को बांधते हुए फिल्में तैयार की हैं और एक अलग ही सोच उनकी फिल्मों से झलकती रही है। मनोज कुमार जी का सफ़र कैसा रहा, उनका बचपन कैसा रहा, उनकी फिल्मी इनिंग कैसी रही और आज वो किस तरीके से फिल्मी दुनिया को लेते हैं, देश को लेते हैं, समाज को लेते हैं और इंसानियत को लेते हैं, सारा कुछ हम उनकी जबानी जानना चाहेंगे। मनोज कुमार जी, सेल्यूलॉइड के सितारे में आपका स्वागत है।
2: रविराज जी, आपने मेरी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा प्रशंसा कर दी है।
1: मैं तो प्रशंसा ही नहीं कर सका, जिस तरीके का दौर आपने जिया है, जिस तरीके की सोच आपने दी है, जिस तरीके की समझ आपने समाज को दी है,
2: उसमें भूतकाल की तरफ मैं देखना ही नहीं चाहता। क्या किया उसको नहीं देखना चाहता, मैं आज में जीना चाहता हूँ।
1: क्या बात है,
2: खास कोई बात शुरू करनी हो तो
1: हमारे श्रोता एक वाक्य से समझ गए होंगे कि आज उनकी ज़िंदगी का फलसफा क्या है और क्या देने वाले हैं इस हमारे प्रोग्राम के माध्यम से। मनोज जी, हम तो शुरुआत करते हैं उस हरि को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो मनोज कुमार में घूम गया है।
2: उस हरि कृष्ण को मैं भी मिस करता हूँ, मैं भी ढूंढता हूँ। आपने कहा कि बचपन से लेके अब तक का सफ़र, तो ये जो सफ़र है ये एक गठड़ी है, एक पोटली है जिसमें दुख सुख हैं, उसको ना ही खोला जाए तो अच्छा है।
1: आज आपको खोलना होगा हमारे श्रोताओं के खातिर और आपके चाहने वालों के खातिर जो कि जानना चाहते हैं मनोज कुमार को और ज़्यादा और ज़्यादा।
2: उस व्यक्ति का बचपन क्या होगा जिसकी उम्र में 10 साल में पार्टीशन हो गई, लाहौर से दिल्ली रिफ्यूजी कैंप में आ गए, तो 10 साल की उम्र में जिस पे ये बात बीत जाए आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में लोग ज़्यादा भावुक हैं कि उस व्यक्ति के अंदर क्या दुख दर्द होंगे। तो उस पोटली को के दुख ना याद करते हुए मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी का जो सफ़र अब तक बहुत अच्छा गुजरा। कभी सोचा नहीं था

0: प्रभु इतनी कृपा करेंगे। मुझे बचपन में फिल्में देखने का शौक था, सभी को है, और सभी हीरो बनना चाहते हैं। मैं ग्रेजुएशन कर रहा था कि मुझे न्योता आया, मैं बम्बई आ गया। फिर उसके बाद काफ़ी स्ट्रगल हुई। मेरी पहली अपीयरेंस जो है पर्दे पे, वो एक 19 साल की उम्र में एक बुड्ढे की थी। मैंने एक एक्स्ट्रा से शुरू किया, वो फिल्म फैशन थी। तो हरी कृष्ण से मनोज कुमार बनने में बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी।
1: जैसे बचपन कैसा रहा बताइए, कि वो जो 9 साल 10 साल के जो पहले के दिन थे, जब पार्टीशन के पहले के उन दिनों, आप किस तरीके से अपनी शरारतें वगैरह, अगर हरी के पास थी तो किस तरीके की शरारतें हुआ करती थी, या कितना संजीदा था हरी?
0: संजीदा इतना लाहौर में नहीं था जितना दिल्ली आके हो गया था। मैं जो हालात गुजरे उस वक्त परिवार पे, तो उससे कुछ ज़्यादा संजीदा हो गया। तो जिसका आउटलेट मुझे मिला स्पोर्ट्स में, मैं हॉकी और क्रिकेट अच्छे लेवल पे दिल्ली में खेल लेता था। जब शौक आया कि एक्टर बनना है, बम्बई जाना है, तो 1956 में मैं जब बम्बई आया तो दो सपने लेके आया था। एक तो हीरो बनूंगा, और दूसरा सपना था कि 3 लाख रुपया कमाऊंगा। 1 लाख रुपया माता पिता के लिए, 1 लाख रुपया भाई बहनों के लिए, और 1 लाख अपने लिए। उसके बाद प्रभु ने इतना दिया, मैं उसको बोनस समझता हूँ। इसीलिए मैंने, जबकि मेरी उम्र नहीं थी, लोग डराते थे कि डायरेक्शन में मत जाओ, देखो राज कपूर सभी नहीं बन सकते, प्रेमनाथ जी का क्या हाल हुआ, लोगों ने बहुत रोकने की कोशिश की। मगर मेरे अंदर का जो हरी कृष्ण था, वो उसमें बड़े वलवले थे। उसने कहा कि मेरा जो लक्ष्य था वो पूरा हो गया, अब इस माध्यम से मैं देश के प्रति, समाज के प्रति, संसार के प्रति, धर्म के प्रति जो दे सकूँ फिल्मों के द्वारा वो दूँ। तो इसलिए मैं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, एडिटर, पता नहीं कौन कौन सा टर बन गया, मुझे तो इतना ही याद है। बाकी मेरी फिल्में शुरू में चली नहीं थी। मेरी पत्नी, मेरी धर्म पत्नी शशि, इसको मैं शादी से पहले जानता था, हमारा लव मैरिज भी कह सकते हैं आप। से 3 लाख रुपए हो गए तो शादी भी कर ली, और शादी के बाद मेरी फिल्म रिलीज हुई हरियाली और रास्ता, और ये मेरे जीवन की पहली सफल फिल्म और सिल्वर जुबली फिल्म थी।

0: मनोज जी, आज हम चाहते हैं कि आप हर चीज़ को विस्तार पूर्वक बताएं, ख़ास तौर से एक हरी में एक कलाकार या फिल्म अभिनेता बनने का एक सपना कब उठा और कब वो पहला दिन था जब आपने तय किया कि हाँ, मुझे फिल्मों में ही अपना भविष्य ढूंढना है।
1: देखिए, मैंने 10 साल की उम्र में पहली फिल्म देखी थी जुगनू, उसमें नूरजहां और दिलीप कुमार साहब थे। दिलीप कुमार साहब का नाम उसमें शायद सूरज था। उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, घर आ गए। फिर कुछ 20-25 दिन या महीने बाद मेरे मामू मुझे मैजिस्टिक टॉकीज दिल्ली में फिल्मिस्तान की शहीद फिल्म देखने ले गए। तो जब बाहर पोस्टर देख रहा तो मैं कह रहा हूँ, मामा ये सूरज है। वो कहते ना ये दिलीप कुमार है। मैं कहूँ ये सूरज है वो वाला जो मर गया था। वो बोले नहीं, देख पढ़, उर्दू में लिखा हुआ था दिलीप कुमार फिल्म शहीद में। मैंने फिल्म देखी, वो आदमी फिर मर जाता है। तो मैं हैरान परेशान कि एक आदमी दो दो बार कैसे मरता है। वो मेरे चचा का कत्ल हो गया था, तो कुछ दिन ये सोचता रहा कि शायद वो जिंदा आ जाए ताकि वो भी दूसरी बार मरेगा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे फिल्मों से लगाव जुड़ा, फिर लगा कि माध्यम बहुत अच्छा है।
0: अच्छा, पारिवारिक व्यवसाय था?
1: रिफ्यूजी कैंप में भी हम जब थे तो सेल्फ सपोर्टिंग कैंप में थे, जिसमें खाना पीना आदमी अपने खुद खरीदता है। एक्चुअली अगर सब कुछ आप कारखाने फैक्ट्रियाँ ज़मीनें छोड़ के आ जाएं तो दिल्ली में आपको कुछ लाल किले का या रामलीला ग्राउंड थोड़ी दे देगा।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: भूखे नंगे भी नहीं थे, गुजर अच्छी थी।
0: जिस दौर में हम बात कर रहे हैं उसको लेकर कोई गीत याद करें?
1: गीत तो जी पहले ही वो गीत हम गाया करते थे जुगनू देखने से पहले, यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है।

0: विनोद जी, आपने बताया आपने बचपन के बारे में, अब हम जानना चाहेंगे कि आपकी स्कूलिंग कैसी रही और स्कूल में जब आप जिस तरीके से आपने वो सपना देखा था और दिलीप कुमार को पर्दे पर मरते हुए देखा और उसके बाद आप में एक कलाकार तैयार होना शुरू हुआ कि ये बड़ा अच्छा माध्यम है।
1: चूंकि रिफ्यूजी कैंप में स्कूल कॉलेजेस नहीं थे तो मेरे पिताजी ने साथ में ही दिल्ली के गांव पड़ता था नांगलोई वहां डाल दिया। वहाँ हिंदी माध्यम था तो लाहौर तो मैं उर्दू पढ़ता था तो कुछ चार एक महीने वहाँ पढ़ पाया। फिर पिताजी मुझे पिलानी ले गए, वो तूफान आ गया, पिताजी वापस नहीं जा सके तो उन्होंने

0: देखा यहाँ तो सब्जी भी अमरूद की बनती है। उन्होंने कहा जहाँ खाना पीना ही अच्छा नहीं वहाँ पढ़ाई क्या अच्छी होगी, चलो वापस। वो चाहते थे कि मैं बहुत पढ़ी लिखूं। लेकिन मैं कब फेल हुआ, कब पास हुआ, कौन सी स्कूल में पढ़ता हूँ, ये मेरे माता पिता ने कभी नहीं पूछा। ये मेरे पे उनका इतना विश्वास कैसे था मैं समझ नहीं पाया। मेरे पिताजी ने आज तक नहीं पूछा क्यों भाई क्या मार्क्स आए, पेपर कैसा हुआ, ना। उनकी शख्सियत ही कुछ ऐसी थी कि मैं जब दिल्ली से बंबई के लिए रवाना हुआ तो उन्होंने कहा कि ये एक चिट्ठी है, ट्रेन चले तो पढ़ लेना। बाकी जो एक पिता लिख सकता है खत में वो लिखा हुआ था, लेकिन चार लास्ट की लाइनें जो है मुझे याद हैं। सन आई हैव फुल फेथ इन माई ब्लड, माई ब्लड कैन कमिट मिस्टेक्स बट नॉट ब्लंडर्स, एंड रिमेंबर सन दोज हु आर डेस्टिन्ड टू बी हैंग्ड कैन नॉट बी ड्राउन्ड।
1: क्या बात है।
0: तो यही विश्वास मेरा मेरे संतान के प्रति है कि मेरा खून गलती कर सकता है, ब्लंडर नहीं कर सकता। बाकी किस्मत में अगर टू बी हैंग्ड है तो ड्रोन नहीं हो सकते, अगर ड्रोन होकर मरना है तो हैंग नहीं हो सकते।
1: अच्छी बात कही आपने। आपके ऊपर जिम्मेदारी का एहसास आपको रहा है, और आपने जैसा कि बताया कि 1,00,000 रुपए आप अपने भाई बहनों के लिए करना चाहते थे, अपने भाई बहनों के बारे में भी थोड़ा सा बताएं हमारे श्रोताओं को।
0: जिन दिनों मुझे बम्बई आना था, पिताजी ने अपनी फैक्ट्री दोस्त को दी थी चलाने के लिए, और वो लीज के पैसे नहीं देता था। घरेलू हालत काफ़ी खस्ता थी। मुझसे एक छोटी बहन थी, दो बहनें और एक भाई, वो भी स्कूल में ही थे कि पंजाब से बटाला शहर से पिताजी के दोस्त आए मिस्टर टकसाली साहब। वो स्विंग मशीन की जो बॉडी होती है वो उन्होंने बनाई थी और दिल्ली में उन्हें मार्केट क्रिएट करनी थी। मैंने उनको कहा चुपके से कि अंकल आप बताइए मत, ये मैं ट्राई करूं। उन्होंने कहा भाई हाँ कर ले। पहले तो डांटा कि गोस्वामी जी का बेटा हो के ये काम करेगा, ये तो एजेंटों वाला काम है। मैंने कहा जी क्या डिग्निटी ऑफ लेबर है, काम करने में क्या शर्म है, मैं चोरी तो नहीं कर रहा। तो उन्होंने बताया कि दिल्ली चांदनी चौक नई सड़क पे ये मशीन के खोल बिकते हैं। तो मैं साइकिल पे बांध के कुछ 7-8 मील दूर है वो जगह घर से, तो वहाँ गया तो 3 चक्कर मैंने पहले सारी सड़क के लगाए, और एक दुकान अच्छी थी उस पर बहुत भीड़ थी, मैं वहीं खड़ा हो गया। तो लंच टाइम हुआ तो लोग चले गए, तो सरदार साहब ने मुझे देखा कि नया चेहरा है, शक्ल से भी ठीक ठाक लग रहा है, कपड़े भी ठीक हैं, क्या है भाई। मैंने उनसे कुछ छुपाया नहीं जी, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है और मैं ये ट्राई करने आया हूँ। उन्होंने खोल की बॉडी देखी, पसंद किया, और 2 महीने मैंने काम किया, और बटाला से टकसाली साहब ने खत लिख दिया कि और ऑर्डर नहीं लो, मैं इतने ऑर्डर में भुगतान कर सकता। तो 2 महीने में मैंने 29,000 रुपया कमीशन कमाई थी। फिर पिताजी कहते थे कि साइकिल पे क्यों जाते हो, 4-व्हीलर पे जाओ, मेरा शौक फिल्में देखना, फोटो भी खिंचवाओ, कमीज भी अच्छी पहनो। तो वो मैं साइकिल पे जाता था, वो जो पैसे थे वो बच जाते थे, और मैं शशि के साथ पिक्चर भी देख लेता था। तो साइकिल चला के जो पैसे बचते थे उनसे मेरा ये मनोरंजन का काम हो जाता था।
1: जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपकी शशि जी से मुलाकात रही।
0: मुलाकात ये है कि मेरे एक दोस्त हैं रवि करके, मैं उनके यहाँ मैथमेटिक्स पढ़ने जाया करता था, वो मेरे क्लास फेलो थे। आंखों ही आंखों में कहते हैं ना बात हो गई, जैसे पंचोली साहब का एक गीत है, नैनों के बांध की रीत अनोखी, रीत अनोखी, बांध चले और नैन ना देखें, कब क्या हो गया ये पता नहीं, हुआ जरूर है।
1: बड़ी रोचक कहानी है। तो ये क्या उम्र रही होगी आपकी उस समय जब आपने शशि जी को पहली बार देखा?
0: 15-16।
1: वाह, और पहली नजर का प्यार।
0: हाँ, लेकिन बातचीत करने में 1 साल लग गया था, हेलो भी नहीं कर सकते थे।
1: वाह, और उसके बाद तो पूरी दुनिया ही बदल गई, फिर आप इतने बड़े कलाकार बने, इतने बड़े सितारे बन गए।
0: फिर मैंने पिताजी को यहाँ से इशारतन एक इशारा दिया था, तो वो जानते हैं, पिता तो जानते हैं सब कुछ, वो उनके यहाँ चले गए तो 1 मिनट में बात तय हो गई। माता पिता ने भी नहीं कहा, लेकिन मेरी पत्नी ने 22 साल फिल्म इंडस्ट्री में होते हुए मेरे पिताजी से घूंघट निकाला।
1: क्या बात है। वाह,
0: वो बीमार थे तो उन्होंने खुद उठवाया कि तू मेरी बेटी है, हमने कभी चाहे ना था कि घूंघट निकालो, मगर उसने परंपरा के अनुसार

0: ये काम किया।
1: और आप अपने प्यार को जब एक सितारे के रूप में स्थापित हो जाने के बाद जब आपने उनसे विवाह किया, तो उस समय का अनुभव कैसा रहा? और उस समय तक तो आप जाना माना नाम बन चुके थे। और
0: ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे पांव हमेशा धरती पे रहे, ना मैं गर्दन उठा के चला हूँ। ये फैक्ट है, मैं चलता भी हूँ तो गर्दन मेरी नीचे होती है। मुझे कोई अंतर नहीं लगा कि मैं स्टार बन गया हूँ, ना मैं स्टार की तरह रहा कभी, ना मैंने कभी सेक्रेटरी रखा, ना स्टार वाली पार्टियाँ की। अपना अपना मेंटल एटीट्यूड भी होता है।
1: कोई अच्छा सा गीत याद आ रहा हो आपको?
0: आपने कहा तो मुझे एकदम अपने गाने का ध्यान आया, जीवन चलने का नाम। जीवन

0: मनोज जी, बचपन में जो सबसे ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है और वो पूरी ज़िंदगी भर रिफ्लेक्ट करता है, कभी माता का प्रभाव होता है, पिता का प्रभाव होता है, या कोई ऐसी शख्सियत होती है आपके आसपास की जिसको आप आगे लेकर चलते हैं पूरी ज़िंदगी ता ज़िंदगी। अपनी माँ के बारे में भी कुछ बताएंगे।
1: बात ये कि मैं ज़्यादातर अपने ननिहाल में रहा, माँ मेरी कुछ बीमार रहती थी ज़्यादा। जो धार्मिक भावनाएँ हैं या जो रुचि पड़ी वो अपनी माँ और अपनी नानी से ली मैंने। बाकी जहाँ तक एक कंट्रोलिंग, एक यूनाइटेड फैमिली रहना, एक डिसिप्लिन पर्सन रहना, वो मैंने अपने पिताजी से बहुत सीखा। क्योंकि 13 अगस्त 1947 के करीब खबर मिली थी कि मेरे चाचा जी का कत्ल कर दिया गया। 25 साल भी एज नहीं थी उनकी।
0: ये विभाजन की त्रासदी
1: जी। और पिताजी नढ़ाल थे, दीवारों से सर मार रहे थे। दूसरे दिन सुबह उठे, मुझे 6 बजे उठाया, चलो तैयार हो जाओ नहा के। कहाँ, 15 अगस्त 1947 में मुझे मेरे पिताजी लाल किला ले गए और मैंने झंडा ते देखा, मैंने लाल किला भी देखा। मुझे उस वक्त लगा, एक थोड़ी सी सोच ऐसी लगी कि कल तक रात तक मेरे पिताजी का ये हाल था, आज सुबह ये भावना है, ये झंडा, ये आज़ादी, ये इतना कीमती है कि एक आदमी अपने दुख दर्द भूल गया, ये कहीं मेरे दिल में बस गया। मेरे माता पिता ने कभी ये नहीं कहा कि सुनो बैठो, ये संस्कार सीखो, ये बात सीखो, कभी नहीं कहा। इनडायरेक्टली बातों बातों में कह जाते थे।
0: देश प्रेम का जो जज्बा था वो मेरे ख्याल से वो बीज था।
1: हालांकि लाहौर में जुलूस निकलते थे, जब INA का केस चल रहा था लाल किले में, तो जुलूस में शामिल हो जाता था कि लाल किले से आई आवाज़, सैगल ढिल्लों शाहनवाज़, लेकिन वो

0: सेंस नहीं थी, वो एक चीज है कि बच्चे सारे हैं तो मैं भी शामिल हो जाऊं, लेकिन जो असली बीज पड़ा एक सोच का वो 15 अगस्त को पड़ा।
1: देश की आजादी के दिन ही तकरीबन 13 साल के रहे आप।
0: उस दिन एक और घटना घटी कि पानी पिया मैंने तो उसने मुझे टक्का मांगा, मेरे को तो लगा पहाड़ गिर गया मेरे सर पे, हम तो पानी पिलाने को पुण्य समझते हैं। मैंने पिताजी से शिकायत की कि आदमी पानी के पैसे मांग रहा है, कहते यार पानी हम तो दरिया के दरिया छोड़ आए हैं आजादी के लिए, तो पानी के दो पैसों को रो रहा है, हम तो दरिया छोड़ आए।
2: विविध भारती पर आपने ट्यून किया है कार्यक्रम सेल्यूलॉयड के सितारे, और आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता, निर्माता, लेखक और निर्देशक मनोज कुमार।
1: मनोज जी, हम चलते हैं आपके फिल्मी सफर की तरफ, और आपने पहले छोटी छोटी भूमिकाओं के से शुरुआत की अपने अभिनय की, तब क्या आपने सोचा था कि आपका जो कलाकार है वो एक मनोज कुमार के रूप में विशाल एक वृक्ष का अख्तियार कर लेगा?
0: जितना हुआ उतना नहीं सोचा था, इतना कॉन्फिडेंस था, इतना विश्वास था कि मैं बन जाऊंगा, लेकिन परमात्मा इस स्टेज पे ले आएगा, हो सकता है ये जगह ये मकाम जहाँ मैं पहुंचाऊँ आपके लिए कुछ ना हो लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ है। कि जिंदगी में पहली फिल्म देखी दिलीप कुमार की, कि ये दिलीप कुमार है, ये सूरज है, ये मर जाता है, तो वो 10 साल के बच्चे के कोरा दिमाग कोरा दिल उस पे दिलीप कुमार का नाम लिखा गया। एक वक्त वो आया कि दिलीप कुमार साहब फिल्म बना रहे थे, बना कर रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन कहा हमेशा यही जाता है कि दिलीप साहब की फिल्म है, तो उन्होंने मुझे अपनी फिल्म आदमी में लिया। तो ये कभी सोचा नहीं था कि मैं दिलीप कुमार साहब के साथ काम करूंगा, ये तो हुआ, लेकिन ये ख्वाबो ख्याल में भी नहीं आया था कि मैं एज ए राइटर एज ए प्रोड्यूसर एज ए डायरेक्टर जाके दिलीप कुमार साहब को साइन करूंगा और वो सेट पे मेरे लिखे वो डायलॉग बोलेंगे, वो मेरी डायरेक्शन के अंडर काम करेंगे, इतना नहीं सोचा था। इतना कुछ हो गया, इसके आगे मैं भगवान से मांगूं तो इतने मांग सकता हूं कि भाई अब तक अच्छा जीवन कटा, आगे भी कृपा रखना, और तो कुछ मांगने को है नहीं।
1: जबरदस्त बात कही आपने। आदमी फिल्म का कोई अगर गीत आपको याद आ रहा हो?
0: उस फिल्म में एक गीत था, दिलीप साहब और मुझ पर फिल्म आया गया था, कैसी हसीन ये बहारों की रात।

0: श्रोताओं, इससे पहले कि मनोज कुमार से भारत कुमार बनने के सफर के बारे में हम आगे बढ़ें, हम जानना चाहेंगे मनोज जी कि आपने मनोज कुमार नाम कैसे रखा अपना।
1: ये जिस हरि या हरि कृष्ण गोस्वामी की बात करते हैं, जब वो 11 साल का था या 12 साल का था, उसने फिल्म देखी, उस फिल्म में भी दिलीप कुमार साहब थे और उसमें उनका नाम मनोज था। ये मैं शाबाश देता हूँ अपने बचपन को कि उसी वक्त ठान लिया था कि अगर फिल्म में आया तो ये ही नाम रखूंगा।
0: जिस तरीके से दिलीप साहब की बातचीत हो रही है, आप जाहिर है हमारे श्रोता समझ गए होंगे कि मनोज जी की जो शख्सियत है उस पर दिलीप साहब का जबरदस्त प्रभाव रहा है, आपके अभिनय में भी वो कहीं कहीं झलकता रहा है, तो ये डेलिबरेटली था कि मतलब आपने जान करके इसको लिया?
1: नहीं, ये मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, मैं कोई मतलब कोई ये नहीं कहना चाहता कि मैं बेगुनाह हूं। एक तो जो आपका आइडियल रहा हो तो शायद वो टेम्परामेंट कहीं आ जाता है। दिलीप साहब का जो टेम्परामेंट है वो अंडर प्ले का था। कुछ मेरी जाती जिंदगी भी ऐसी थी जो इंट्रोवर्ट और टिमिड स्लो ऐसे, तो क्योंकि आपने फिल्म आदमी देखी होगी, आदमी में दिलीप कुमार थे, मनोज कुमार था, उसमें दो दिलीप कुमार नहीं थे।
0: बिल्कुल सही।
1: क्रांति में आपने देखा दिलीप कुमार थे, मनोज कुमार था। मेरा बार बार ये कहना कि दिलीप साहब की फिल्म देखी, दिलीप साहब से मुतासर हुआ, दिलीप साहब से ये हुआ, वो शायद इस रोशनी में लिया जाता है कि मैं दिलीप साहब की कॉपी करता हूँ। हो सकता है कोई मैनरिज्म किस वक्त मिल जाए।
0: तो इसमें फिर किसी की एक्टिंग की बात नहीं आ जाती है कि ये किसी से कॉपीड है या किसी को ध्यान में रखते हुए, किसी को प्रेरणा बनाते हुए की गई एक्टिंग है, बल्कि मनोज कुमार तो अपने आप में एक अलग संस्थान भी है। और आज तो हम बात करते हैं जब अलग अलग मैनरिज्म की, अलग अलग स्टाइल की एक्टिंग के, तो एक स्कूल मनोज कुमार का भी रहा है जिन्होंने की एक अलग तरीके का एक शेड दिया है अभिनय को, एक उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। शायद शहीद से और उपकार के दौर से आपका जो वो आधा चेहरा वाला जो वो सिस्टम रहा है और आंखें बंद करने वाला जो हिसाब किताब रहा है, इसके बारे में भी हमें खुलासा करके कुछ बताएं।
1: जहाँ तक आंखें बंद करने का सवाल है, ये मैंने डेलिब्रेट कभी नहीं किया, मैंने बिल्कुल सीन को नेचुरल सीन समझ के किया। शायद अगर कोई सोचने वाली बात आ जाए तो शायद आंखें बंद हो जाती हैं, जैसे कि आप बगैर आंखें बंद किए छींक नहीं सकते, तो अगर सोच वाली बात आ जाए तो या तो आदमी आसमान की तरफ देखेगा, नीचे देखेगा, या आंखें बंद करके कुछ सोचने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा। मैं ऐसा मैनरिज्म करूंगा, मैं हाथ ऐसा करूंगा, मैं ये करूंगा, नहीं। एक टेक होती थी तो उसमें मैं कुछ करता था, दूसरी टेक होती थी उसमें मैं कुछ करता था। मैंने करेक्टर को निभाया है, सीन को निभाया है, मैंने कतई ध्यान नहीं दिया कि तू मनोज कुमार है, तूने ये करना है, तूने ये करना नहीं। मेरी तो चिंता रहती थी कि दूसरे

0: कर रहे हैं कि नहीं कर रहे
1: हैं। मनोज कुमार के भीतर एक अभिनेता रहा है शुरू से, ये निर्देशक के रूप में कब परिवर्तित होता चला गया या निर्देशकीय रास्ते पर कब चलने लगा और फिर लेखक ने कब जन्म लेना शुरू कर दिया?
0: लेखक तो मैं आपसे पहले बता चुका हूँ,
1: शुरुआती दौर में आपने बताया था।
0: बाकी मैंने कहानी लिखी हुई थी शहीद, जो भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव इनके कॉमरेड्स के ऊपर थी। तो मेरे एक दोस्त हैं केवल बी कश्यप साहब, वो पीआरओ का काम करते थे, तो उन्होंने मुझसे कहा यार मैं थक गया हूँ फोटोज खींच खींच के और ऑफिसेज में जाके कि इसकी फोटो छापो उसकी फोटो छापो, मैं प्रोड्यूसर बनना चाहता हूँ। उस वक्त मैं सेलेबल हीरो जो कहते हैं कि जिसकी पिक्चर बिक जाए उस पदवी तक आ गया था। हाँ, मैंने कहा बनाओ फिल्म। मैंने कहा साधना जी हैं, सायरा जी हैं, आशा पारेख है, किसी को लेके बना। कहता नहीं मुझे बनानी वही फिल्म है जो तूने सुनाई थी कहानी। मैंने कहा केवल पहली फिल्म बना रहा है, इससे पहले दो फिल्में भगत सिंह जी पे बन चुकी हैं जो चली नहीं है, ये तो जोखिम लेगा। कहता यार कुछ नहीं। मैंने कहा लेना है तो फिर बना लो। तो ये तय हुआ कि वो शहीद बनाएंगे। फिर हमारे एक सहयोगी थे मेरे एस राम शर्मा, वो मंझे हुए थे, उनको बोला भाई आप डायरेक्शन में आ जाओ। तो केवल साहब उन दिनों शंकर जयकिशन साहब, ओ पी नैयर साहब और रवि साहब इन म्यूजिक डायरेक्टर्स की पब्लिसिटी किया करते थे। तो केवल जी के लिए ये था कि यार ये नहीं होगा, तो शंकर जयकिशन का म्यूजिक बिकता है, शंकर जयकिशन बिकते हैं, ओपी नैयर साहब बिकते हैं, रवि साहब बिकते हैं। मैंने कहा केवल बात बहुत सिंपल है, अगर ये फिल्म बनानी है तो इस फिल्म के लिए मुझे म्यूजिक डायरेक्टर प्रेम धवन चाहिए। कहने लगे वो कौन है? मैंने कहा वो गाने लिखते हैं। कहने लगे यार एक दो गाने ले लेंगे उनसे। मैंने कहा नहीं, ये फिल्म अगर बनानी है तो इसमें, कहता उन्होंने कभी म्यूजिक नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तू कैसे जानता? मैं कहा मैं जानता हूँ, ये बड़प्पन है केवल का कि उसने मेरी बात मान ली। हम प्रेम धवन साहब के घर गए, उनको यकीन नहीं आया, उन्होंने दो दिन मांगे। मैंने कहा नहीं, अगर आपने म्यूजिक नहीं देना तो ये फिल्म नहीं बनेगी। उन्होंने हाँ की और शहीद सब नए लड़कों के साथ बनी और प्रेम धवन साहब ने म्यूजिक दिया, म्यूजिक जो आज भी चलता है। और डायरेक्शन का क्या हुआ, चूंकि लिखे हुए सीन मेरे थे, कहानी सब कुछ मेरे पास थी, तो पैसे की बहुत दिक्कत थी। हमको अक्सर दो यूनिट बनाने पड़ते कि इधर ये कर लो, तो एक तरफ मुझे जाना पड़ा, मैं गया नहीं उस रास्ते पे, मुझे जाना पड़ा। जब वो मैं डायरेक्शन करने लग गया तो फिर मेरे अंदर डायरेक्टर ही आ गया।

फिर शहीद बनने के बाद जब दिल्ली में इसका प्रीमियर हुआ तो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी आए थे, वो 3 घंटे उन्होंने फिल्म देखी, तालियां बजाई, उसके बाद स्पीच भी दी। फिर मुझे बोला कि सुबह सबको घर पे लेके आओ, बाकी तो कुछ लोग जा चुके थे, तो मैं उनकी कोठी पे पहुंचा तो जो किचन गार्डन सा होता है उसमें खड़े थे, तो बहुत शाबाश दी, बहुत कलेजे से लगाया। उन्होंने कहा कि तुम मुझे बचपन में ले गए, मैं उसके बाद सोया नहीं सारी रात, वही जीवन में चला गया था। तो ऐसे ही उन्होंने मासूम नज़रों से देखते हुए कहा कि सुनो, मैंने नारा दिया जय जवान जय किसान, क्या इस पर फिल्म बन सकती है? मैंने उनकी आंखों में एक चमक देखी, मैंने कहा जी बन जाएगी। मैंने सीताराम साहब से कहा कि मुझे डायरी और 2-3 बाल पेन ले दो, मैं डीलक्स से चला और सोया नहीं, 24 घंटे में उपकार लिखी।

0: मैंने स्क्रिप्ट में, मेरी पत्नी सामने बैठी है, मैंने स्क्रिप्ट पूरा लिखने में कभी 3 से 4 दिन से नहीं लिए।
1: हम चाहेंगे कि शशि जी भी हमारे साथ ज्वाइन करें और मनोज जी के बारे में, जो एक घर में एक अभिनेता और निर्देशक और लेखक और निर्माता के इतने सारे जो आयाम हैं उनको छोड़कर किस तरीके से मनोज जी पेश आते हैं।
0: नहीं, इससे पहले कि आप उनसे बुलवाएं, मैं आपको बता दूं कि मेरे सीन पुख्ता क्यों होते हैं, कि पहले ये सेंसर करती है, पास करती है, अगर इसको कोई चीज़ नहीं अच्छी लगेगी तो अटक जाएगी। जब मैं समझूंगा कि ठीक इतना अटक गई है, मेरे को समझाने में कामयाब हो जाए तो मैं इसकी मान लेता हूँ, और अगर गलत है चीज़ जो इसका सजेशन है वो ठीक नहीं है, अगर मैं समझाने में कामयाब हो जाऊँ तो ये मान लेती है। बाकी मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता, क्या काम किया है, इसका मेरे साथ पूरा सहयोग रहा है।
1: यानी जो कहा जाए कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो वो औरत शशि जी हैं आपके पीछे।
2: घर में तो ये बिल्कुल घरेलू ही रहते हैं और दिनचर्या भी इनकी जैसे सुबह आम आदमियों की तरह होती है, वैसे ही सुबह उठते हैं, योगा करते हैं, सैर करने जाते हैं, सादा भोजन लेते हैं। भोजन में भी ज़्यादातर इनका यही होता है, मूंग की दाल और दूधी की सब्जी, दो चीज़ तो इनकी फेवरेट है।
1: और स्वभाव किस तरीके का है कि

0: तरीके से बोला जाता है कि एक सफल कलाकार अगर खास तौर से होता है तो बहुत टेम्पर्ड होते हैं, टेम्परामेंट उनका बहुत हाई होता है, तो घर में भी ये सब चीज़ें झलकती हैं या फिर बहुत शांति से पेश आते हैं और पारिवारिक तरीके से रहते हैं?
1: शांति से पेश आते हैं लेकिन कभी कभी मूड गर्म भी हो जाता है।
2: कोई सुविधा जिंदगी की ना मिले ये गुजर कर लेगी, लेकिन म्यूजिक, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ये इसकी जान है।
0: शशि जी, आप अपने ज़माने में ज़बरदस्त खूबसूरत भी रही हैं और एक सफल कलाकार की पत्नी भी रही हैं, कभी आपको खुद को नहीं लगा कि अभिनय की दुनिया में कदम रखा जाए? खासतौर से आप, हम जानते हैं कि पूरब और पश्चिम की जो कहानी है उसके बेसिक आपके ही हैं और आपका ही एक ये महल था जो सक्सेसफुल रहा है।
1: काम करने का सवाल तो कभी दिल में नहीं आया, क्योंकि पिक्चरों में तो आर्टिफिशियल एक्टिंग होती है, घर में तो हम नेचुरल करते हैं, वो एक्टिंग ज़्यादा अच्छी लगती है हमें।
0: दूसरी चीज़ ये जानना चाहते थे कि पूरब और पश्चिम का ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया और किस तरीके से इसको आपने विजुलाइज किया, फिर उसको कागज़ पर उतारा?
1: मेरी सिस्टर है, उनके हस्बैंड वो बाहर रहते थे हमेशा, अब्रॉड में ट्रांसफ़र हो गई थी उनकी, तो हम हमेशा कहते थे कि यहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगता, यहाँ की कल्चर डिफरेंट है, यहाँ पे ऐसे है, बच्चे होंगे तो कैसा होगा, क्या होगा, उस पॉइंट को देख के सोच के कैसा वातावरण वहाँ का है, यहाँ का कैसा है, तो उसके ऊपर ऐसा ब्रेन ड्रेन के ऊपर कुछ आइडिया आया।

0: विनोद जी, एक निर्देशक जीवित हुआ आपके भीतर जब आपको जिम्मेदारी का एहसास हुआ फिल्म में, जिस तरीके से आपके शहीद के दौरान आपने बताया, और फिर लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रेरणा के बाद जब आपने उपकार शुरुआत की और जय जवान जय किसान का जो नारा है उसको इनकॉर्पोरेट किया फिल्म में, तो वो अपने अनुभव बताइए। उसमें आपने एक और चेंज किया था कि एक ज़बरदस्त या जिसके पर्दे पर आते ही लोग दहल उठते थे, ऐसे खलनायक को एक शानदार और एक बड़ी जीवंत भूमिका दी थी मलंग बाबा की। वो प्राण साहब थे जिनकी इमेज आपने तोड़ी थी और बदली थी।
1: प्राण साहब का एज ए विलन इतना भयानक रूप था कि अगर आप उनके साल देख लें और उन वर्षों में देख लीजिए, घर वालों ने किसी बच्चे का नाम प्राण नहीं रखा होगा।
0: ये बिल्कुल हकीकत है।
1: लेकिन मेरी कन्विक्शन ये थी कि एक अच्छा कलाकार उस पे स्टैंप लग जाती है, मैं इनको, ये इंसान अच्छे हैं, ये कलाकार अच्छे हैं, तो क्या वजह है कि ये अच्छा रोल नहीं करेंगे। तो मेरी कन्विक्शन थी। थोड़ा सा प्राण साहब भी हेजिटेंट थे कि यार ये कैसा रोल है। और फिर उस फिल्म में एक गीत था उनके ऊपर, कस्मे वादे प्यार वफा, तो मुझे स्वर्गीय कल्याण जी भाई भी, राज खोसला साहब

0: अब ये सब कहते थे अरे क्या पागल हो गए यार, बैकग्राउंड में रख दो ये गाना, प्राण जी के मुंह से मत गवाओ। प्राण साहब जो थे वो जो रोल था उनके अंदर रच गया था।
1: वाकई उपकार का ये उपकार था प्राण साहब के ऊपर, और हम चाहेंगे कि इस फिल्म का भी एक कोई गीत सुन लिया जाए।
0: बात प्राण साहब की हो रही है और मलंग बाबा की हो रही है तो बात उस गीत की भी हुई, तो क्यों ना उसी गीत को सुनाया जाए। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या।

सेल्यूलॉइड के सितारे, अभी आप फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता, लेखक और निर्देशक मनोज कुमार से रविराज प्रणामी की बातचीत सुन रहे थे। आज के इस कार्यक्रम के निर्माण में तकनीकी सहयोग दिया रीटा रवेलो और साइमन परेरा ने। प्रस्तुति सहयोग वीणा राय सिंघानी का था। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने।

0: हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।

इन बहारों में, इन नजारों में खो गए हैं साथ तुम्हारे। दिल में जो समा बांधा है दिल ने, देखते रह गए हैं नैन हमारे।

नींदे उड़ चली है आंखों से, जाने कैसे बदला है समा। देकर के दर्द दिल हमी से पूछते हो, दिल है कहां और दर्द है कहां।

0: जाके आ जरा आ जाने आ जरा।
1: बस तुम्हीं से रोशन है मेरे अफसाने का नाम, क्या नहीं मालूम तो जान लो। सुन के पुकार आ गए हैं जान हथेली पर लेके, अब तो दीवाने का कहा मान लो।

हर सो दिखाई देते हो अब आसमानों में, चांद तारों में, प्यार भी तू बाहर भी तू, नजर में है और तू ही नजारों में।

एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। समय हो चला है निमाड़ी लोक गीतों का। आज आप सुनेंगे ओम प्रकाश बामने और साथियों के गाए हुए लोक भक्ति गीत।

हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सृष्टि यादव। स्वीकार कीजिएगा हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज का हमारा क्रम हमारे शहर हम शुरू करें उससे पहले आपको बता देते हैं आज के सामान्य ज्ञान के दोनों प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय सेना की स्वचलित वायु रक्षा नियंत्रण प्रणाली का नाम क्या है? और हमारा दूसरा प्रश्न है, दुनिया का पहला ऑप्टोस्टार किस स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया गया है? इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे हमेशा की तरह कार्यक्रम के अंत में। तब तक आनंद लीजिएगा युववाणी का अपने रेडियो सेट पर।

0: आप सुनी रहा निर्माण की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: साथियों, हाल ही में भारत में शासकीय सेवाओं के सर्वोच्च प्रतिमान मानी जाने वाली परीक्षा यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम जारी हुए हैं। सशक्त भारत के निर्माण में सिविल सेवा व सिविल सेवकों का महती योगदान रहेगा। इस वर्ष के परिणामों में सामाजिक समरसता की भरपूर छटा दिखाई देती है। समाज का कोई भी वर्ग अछूता नहीं रहा, ऐसा स्पष्ट दिखता है। तो आज की चर्चा का विषय है शिक्षा, गरिमा और उत्तरदायित्व। यूपीएससी में विभिन्न उम्मीदवारों की सफलता से सीखे गए सबक। भारत में सिविल सेवा महज प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी से कहीं अधिक है। यह शासन में भागीदारी, समाज सेवा और लाखों लोगों को प्रभावित करने वाली नीतियों पर प्रभाव डालने का अवसर का प्रतीक है। जब अल्पसंख्यक युवा इस परीक्षा में सफल होते हैं तो वे न केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि हासिल करते हैं बल्कि पूरी पीढ़ी को यह विश्वास दिलाते हैं कि शिक्षा और दृढ़ संकल्प उन दरवाजों को खोल सकते हैं जो कभी दूर लगते थे। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी का सफर आसान नहीं होता। उम्मीदवार इतिहास और अर्थशास्त्र से लेकर नीति शास्त्र और लोक प्रशासन तक के विषयों का अध्ययन करने में वर्षों व्यतीत करते हैं। वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आराम, सामाजिक समारोह और अक्सर आर्थिक सुरक्षा का भी त्याग करते हैं। जब वे इस कठिन प्रतियोगिता में सफल होते हैं तो उनकी सफलता दृढ़ता, अनुशासन और शिक्षा की शक्ति में विश्वास को दर्शाती है। भारत के कई हिस्सों में अल्पसंख्यक वर्ग बेरोजगारी और सीमित आर्थिक अवसरों से जूझ रहा है। सरकारी नौकरियों या उच्च पदों की प्रतीक्षा करने मात्र से यह स्थिति नहीं बदलेगी। वास्तविक सशक्तिकरण के लिए एक ऐसी कार्य संस्कृति की आवश्यकता है जहां प्रत्येक वैध पेशे का सम्मान मिले, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो, तकनीशियन हो, मैकेनिक हो, ड्राइवर हो, बड़े हो या कुशल कारखाना श्रमिक हो। सभी धार्मिक शिक्षाएं स्वयं परिश्रम और आत्मनिर्भरता के महत्व पर बल देती हैं।

ये लोगों को याद दिलाती है कि गरिमा सामाजिक प्रतिष्ठा में नहीं बल्कि ईमानदार प्रयास में निहित है। जो व्यक्ति ईमानदारी के साथ कड़ी मेहनत करता है, भले ही वह एक साधारण पेशे में हो, वह ईश्वर की दृष्टि में सम्मान का पात्र होता है। शिक्षा केवल उच्च स्तरीय नौकरियों की ओर ले जाने वाला मार्ग नहीं है। शिक्षा कौशल, अनुशासन, आलोचनात्मक सोच और अपनी परिस्थितियों को बेहतर बनाने की क्षमता भी प्रदान करती है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाला लेकिन कुशल तकनीशियन के रूप में काम करने वाला युवक भी समाज में सार्थक योगदान दे रहा होता है। स्नातक द्वारा छोटा विनिर्माण व्यवसाय शुरू करना या तकनीकी कौशल सीखना भी समुदाय की आर्थिक नींव को मजबूत कर रहा है। प्रगति चाहने वाले समुदायों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक आर्थिक भागीदारी है। जब परिवार की आय स्थिर होती है तो बच्चे बेहतर शिक्षा प्राप्त करते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं भी बेहतर होती है और सामाजिक आत्मविश्वास भी बढ़ता है। रोजगार से शोषण, निराशा और सामाजिक अलगाव का खतरा भी कम होता है। इसीलिए सिविल सेवा परीक्षा में अल्पसंख्यक उम्मीदवारों की सफलता दो समांतर रास्तों को प्रशस्त करनी चाहिए। पहला मार्ग है शैक्षणिक उत्कृष्टता। युवा छात्रों को उच्च लक्ष्य रखना चाहिए और सिविल सेवा, कानून, चिकित्सा, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी जैसे प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों में करियर बनाना चाहिए। ये पेशे व्यक्तियों को निर्णय लेने के मंचों पर अपने समुदायों का प्रतिनिधित्व करने और राष्ट्रीय प्रगति में योगदान देने का अवसर प्रदान करते हैं। दूसरा मार्ग है कौशल आधारित सशक्तिकरण। व्यावसायिक प्रशिक्षण, तकनीकी शिक्षा और श्रमिक श्रम को सम्मानजनक और आवश्यक कार्यों के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। सरकार और शैक्षणिक संस्थानों ने देश भर में कौशल विकास को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। समुदायों को युवाओं को इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करना चाहिए। इसीलिए भावी पीढ़ी के लिए संदेश सरल लेकिन गहरा है। ज्ञान प्राप्त करो, ईमानदारी से काम करो और निष्ठा से समाज की सेवा करो। जब शिक्षा रोजगार की ओर ले जाती है और रोजगार सशक्तिकरण की ओर, तो समुदाय में आत्मविश्वास और गौरव की भावना बढ़ती है। इसके अलावा जब गरिमा को विश्वास, धैर्य और कड़ी मेहनत के साथ जोड़ा जाता है तो सामूहिक प्रगति का मार्ग स्पष्ट हो जाता है।

आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का क्रम हमारे शहर। तो जोहार जमशेदपुर। दोस्तों जमशेदपुर जिसे टाटा नगर भी कहा जाता है, भारत के झारखंड राज्य का दक्षिणी शहर है। 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने शहर का नाम जमशेदपुर के संस्थापक जमशेद जी नौशेरवान टाटा के सम्मान में बदल दिया। सुबर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम पर बसा यह शहर न केवल अपनी विशाल टाटा स्टील फैक्ट्री के लिए जाना जाता है, बल्कि अपनी सुनियोजित सड़कों और हरियाली के लिए भी प्रसिद्ध है। बात करें यहाँ के पर्यटक स्थलों की, तो स्टार्ट करते हैं जुबली पार्क से। शहर का ये जुबली पार्क म्यूजिकल फाउंटेन, कृत्रिम टापू, बोटिंग जैसे कई आनंदमय एक्टिविटीज और अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। वहीं जमशेदपुर से 9 किलोमीटर दूर है हुडको डैम, जो अपने शांत वातावरण, खूबसूरती और शानदार दृश्य के लिए जाना जाता है। यहां जाकर आपको शांति और सुकून की अनुभूति होगी।

दोस्तों आप जुबली पार्क के साथ जा सकते हैं टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क। यहां आपको कई प्रजातियों के पक्षी देखने को मिलेंगे। वहीं जू में स्थित है जयंती सरोवर, जहां आप जाकर एंजॉय कर सकते हैं। धार्मिक प्रेमी भुवनेश्वरी मंदिर जा सकते हैं, जो अपनी वास्तुकला के लिए मशहूर है। एडवेंचर करने के शौकीन हैं तो दलमा वन्य जीव अभयारण्य जरूर जाइएगा। ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। दलमा की पहाड़ियों से आप जमशेदपुर शहर का विहंगम दृश्य देख सकते हैं। इसके अलावा आप जमशेदपुर में घोड़ाबाड़ा थीम पार्क, सतनाला डैम, चांदिल डैम, छोटा बांकी बांध, पहाड़ भांगा, सुबर्णरेखा और खरकई नदी का मिलन स्थल, दो मुहानी जैसे कई खूबसूरत और प्राकृतिक जगहों पर आप जा सकते हैं और यात्रा को आनंदमय बना सकते हैं। दोस्तों यात्रा कोई दौड़ तो नहीं, बल्कि एक एहसास होता है जिसे जिया जाता है, महसूस किया जाता है और उन खूबसूरत स्मृतियों को अपनी आंखों में संजोकर दिल से महसूस किया जाता है। और हाँ, कैमरे में कैप्चर भी किया जाता है।

दोस्तों, अब आखिर में यही सवाल आता है कि जमशेदपुर कैसे जाए। तो दोस्तों, हवाई मार्ग से जाना चाहते हैं तो रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट सबसे निकटतम एयरपोर्ट है। ट्रेन के सफर के शौकीन हैं तो टाटानगर जंक्शन भारत के प्रमुख शहरों से रेल नेटवर्क्स के जरिए अच्छी तरह से जुड़ा है, और रास्तों के नज़ारों को निहारते हुए जाना चाहते हैं तो बाय रोड जाइएगा। जमशेदपुर राष्ट्रीय राजमार्ग NH6 और NH33 के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा है। दोस्तों, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम घूमने निकलते हैं बदलाव की चाह में, और जब हम उस नई जगह को देखते हैं, महसूस करते हैं, वहां से कुछ सीखते हैं, तो न सिर्फ हमारे मन को शांति सुकून की अनुभूति होती है,

इसी गीत के साथ दोस्तों आज का हमारा ये क्रम यहीं संपन्न होता है। कैसा लगा पत्रों व ईमेल के माध्यम से जरूर बताइएगा। आइए अब जान लेते हैं प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, भारतीय सेना की स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण प्रणाली का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है आकाश तीर। और हमारा दूसरा प्रश्न था, दुनिया का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट किस स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका उत्तर है गैलेक्साई। इसी के साथ दोस्तों अब कार्यक्रम संपन्न करने की दे अनुमति आपकी दोस्त सृष्टि को। नमस्कार।

0: प्रस्तुत है फिल्म संगीत।
1: जगाती है कयामत कोई

आप सुन रहे हैं दन दना दन गोल। इस मूवी का ये गीत जिसे गाया है आनंद राज आनंद और रिचा शर्मा ने, इसे लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 1,52,00,000 रुपए के आवंटन के साथ 10 बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। इसमें किसानों के लिए कई बड़े फैसले शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने कपास उत्पादकता मिशन कपास क्रांति को स्वीकृति दी है।
1: 5,659 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, जिसके 3 कंपोनेंट्स है। पहला कंपोनेंट रिसर्च, दूसरा प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजीज को बढ़ाना और तीसरा न्यू एज फाइबर्स के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना। ये प्रधानमंत्री जी का विजन है, 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि गन्ना सीजन वर्ष 2026-27 के लिए उचित और लाभकारी मूल्य FPR को भी मंजूरी दी गई है। इससे करीब 32 लाख किसानों को फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 2 नई सेमीकंडक्टर इकाई को भी मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। केरलम में कांग्रेस पार्टी में सरकार गठन को लेकर

0: अनौपचारिक चर्चा जारी है। विधायक दल की आधिकारिक बैठक के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। पार्टी बैठक के बाद राज्यपाल से सरकार गठन के लिए संपर्क करेगी। पुदुचेरी में मन्नादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वियम को विधानसभा में भाजपा का विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज पार्टी विधायकों की बैठक में उन्हें चुना गया। केंद्रीय मंत्री और पार्टी चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया बैठक में उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इंकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने कहा कि वोटों की हेराफेरी की गई है और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली हुई है। उधर भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि चाहे वो इस्तीफा दें या ना दें, वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल बृहस्पतिवार को समाप्त हो रहा है और उसके बाद सदन का कोई भी सदस्य नहीं रहेगा। उधर बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का 7 मई को विस्तार किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस संबंध में जानकारी दी है।
1: 7 मई को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए के सभी बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, सभी लोग उसमें सहभागी होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह में पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल हैं। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा और देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने आज बिहार के बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। चेन्नई अंक तालिका में 6ठे और दिल्ली 7वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: रंगों से जुड़ा है ये मोहब्बत का एहसास, उफ की दूर होने नहीं देता।
1: आप हमारी जान बन गए।
0: सुनते रहे निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और, आपका डीडी फ्री डिश।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: क्या बात है जीजी, नई साड़ी, नए गहने, बड़ी सजी धजी लग रही हो।
2: अरे जीजी, असल में बात ये है, हमारे इनने ना जब से आकाशवाणी खंडवा पे हमारी दुकान का विज्ञापन दिया है ना, तब से हमारी दुकान बहुत चल रही है। मतलब
1: है? ऐसा क्या? अब मैं भी अपने इनको बोलूंगी कि हमारे बिजनेस का विज्ञापन भी आकाशवाणी खंडवा पर दे। पर देंगे कैसे?
2: अरे इसमें क्या है जीजी, बस आकाशवाणी खंडवा जाओ और विज्ञापन दो।
3: सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
3: आप सुन रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। यूएई के फुजैराह पर ईरानी ड्रोन हमले में 3 भारतीय घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की कड़ी निंदा, कहा निर्दोष लोगों को निशाना बनाना अस्वीकार्य। चुनाव हारने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने पद से इस्तीफा देने से किया इनकार। प्रदेश कैबिनेट का बड़ा फैसला, दलहन मिशन को 2,442 करोड़, सड़क और आवास के लिए 32,000 करोड़ से ज्यादा मंजूर। और कुछ ही देर में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के फुजैराह पर हुए ईरानी ड्रोन हमले की कड़ी निंदा की है। इस हमले में पेट्रोलियम इलाके में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि आम लोगों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बिल्कुल मंजूर नहीं है और भारत यूएई के साथ पूरी तरह खड़ा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया।

0: किया है। उन्होंने घोषणा की है कि हालिया चुनाव परिणामों के मद्देनजर वो इस्तीफा नहीं देंगी, क्योंकि उनका मानना है कि वोटों की हेराफेरी की गई है और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली हुई है। वहीं भाजपा का कहना है कि चाहे ममता बनर्जी इस्तीफा दें या ना दें, वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल इस महीने की 7 तारीख को समाप्त हो रहा है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में व्यापारियों के हितों की रक्षा और उनकी समस्याओं के जल्द समाधान के लिए राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाने को मंजूरी दी गई, जिसके अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री होंगे। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने बताया,
1: व्यापार और व्यापार से संबंधित कल्याण कार्य इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड गठित किया गया है। वैसे इसका मुख्य उद्देश्य है कि निर्यात को प्रोत्साहन देना, निर्यात प्रोत्साहन के लिए क्या क्या योजना है उनको व्यापारियों को या हमारे छोटे उद्योगपतियों को समझाना और जिला स्तर तक एक माहौल पैदा करना कि व्यापारी को कम से कम शासन की बाधाओं से निपटना पड़े, उसके लिए नीति का सुझाव भी यह बोर्ड देगा।
0: इसके अलावा अगले 5 साल यानी 2026 से 2031 तक दलहनी फसलों के उत्पादन और क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन को 2,442 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी गई। कैबिनेट ने सड़क निर्माण, आवास अनुरक्षण, ग्रामीण सड़कों के उन्नयन और सड़क सुरक्षा सहित लोक निर्माण विभाग के कार्यों के लिए 32,405 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और आईटी संबंधी योजनाओं के लिए 1,295 करोड़, आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण और मिशन वात्सल्य के संचालन के लिए करीब 2,412 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन के दताना 1 उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण किया और किसानों से सीधे बातचीत कर व्यवस्थाओं का हाल जाना। डॉ. यादव ने बताया कि गेहूं के साथ साथ चना और मसूर की खरीदी भी हो रही है और किसानों की सुविधा के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। डॉ. यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा
2: कि गेहूं खरीदी को लेकर पूरे प्रदेश भर में हमारी सरकार ने न केवल स्लॉट की तारीख बढ़ाई थी बल्कि गेहूं उपार्जन का भी लगातार काम चल रहा है। कमोबेश हर जगह अब हमारी खरीदी बहुत सहज सामान्य हुई है, लेकिन फिर भी आकस्मिक दौरे लगा करके हमने किसानों के साथ, हमारी भावना भी है, नियमित अंतराल से 7 दिन के अंदर भुगतान भी हो रहा है और लोगों का माल तुलाई का काम भी चल रहा है। ऐसे में कांटे भी बढ़वाए गए, सुविधाएं भी बढ़वाई गई, किसानों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए।
0: वहीं दूसरी ओर प्रदेश में गेहूं 41 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। इसके लिए किसानों को अब तक 6,520 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। इंदौर में 9 से 13 जून तक 21 देशों के कृषि मंत्रियों का ब्रिक्स सम्मेलन होगा। इस 5 दिवसीय सम्मेलन में ब्राजील, रूस, चीन, सऊदी अरब, यूएई समेत कई देशों के मंत्री, कृषि वैज्ञानिक और नीति निर्धारक हिस्सा लेंगे। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने सत्र 2026-27 के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 मई है। विद्यार्थी eprovesh.highereducation.mp.gov.in पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और अब बात प्रदेश के मदरसा बोर्ड की। मदरसा बोर्ड ने भी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिन्हें छात्र स्वयं अध्ययन केंद्रों के माध्यम से भर सकते हैं। सीधे आवेदन करने वाले छात्रों को जिला शिक्षा अधिकारी से सत्यापन कराकर निर्धारित तिथि में बोर्ड को भेजना होगा। शैक्षणिक कैलेंडर और शुल्क संचालन की पूरी जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। पेरिस में यूरोप के प्रतिष्ठित मेले फोयर डे पेरिस में प्रदेश की पारंपरिक बाघ प्रिंट कला चर्चा का विषय बनी हुई है। यहां नेशनल अवार्डी शिल्पकार मोहम्मद बिलाल खत्री प्राकृतिक रंगों और लकड़ी के ठप्पों से बाघ प्रिंट का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। भीषण गर्मी से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिली है। आज सुबह से ही धार, बड़वानी, झाबुआ, ग्वालियर समेत कई जिलों में तेज बारिश और आंधी का दौर शुरू हो गया है। भोपाल मौसम केंद्र ने

8 मई तक प्रदेश के 39 जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारत की पुरुष और महिला अंडर 18 हॉकी टीमें 15 से 20 मई के बीच भोपाल के उद्धव दास मेहता सेंट्रल सेंटर में ऑस्ट्रेलिया के अंडर 18 टीमों के खिलाफ 4-4 मैचों की सीरीज खेलेंगी। इस महीने के आखिर में जापान के काका मेगाहारा में अंडर 18 एशिया कप 2026 होना है, जिसमें एशिया की शीर्ष जूनियर टीमें हिस्सा लेंगी। ये टूर्नामेंट युवा खिलाड़ियों के लिए सीनियर हॉकी तक पहुंचने का अहम मंच माना जाता है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ जिले के ग्राम कुटवासा में जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने दिव्यांग हितग्राही रामचंद्र मैडा को इलेक्ट्रॉनिक ट्राईसाइकल प्रदान की। शिवपुरी में आज कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कलेक्टर ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनका मौके पर ही निराकरण किया। देवास में कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए कलेक्टर ने अमलतास अस्पताल में किलकारी अभियान 2.0 की शुरुआत की। नीमच जिले ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। धार जिले में गर्मी के मौसम में बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए आंगनवाड़ी केंद्रों का समय सुबह 7:30 बजे से दिन के 11:30 बजे तक कर दिया गया है। खंडवा में रेडक्रॉस सप्ताह के तहत टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 25 टीबी मरीजों को पोषण युक्त फूड बास्केट वितरित की गई। आगरमालवा में कलेक्टर ने एक गैस एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 828 घरेलू गैस सिलेंडरों को जब्त कर राजसात करने के आदेश जारी किए हैं। राजगढ़ जिला मुख्यालय पर आज जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आमजन की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण किया गया। पन्ना में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से लाडली उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें कक्षा 10वीं और 12वीं की मेरिट सूची में अव्वल रहने वाली बालिकाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। ग्वालियर में कलेक्टर ने शहर में चल रहे जनगणना 2027 के प्रथम चरण का औचक निरीक्षण किया। श्योपुर जिले में 33 सोसायटियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी जारी है। अब तक 44,776 मेट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है। आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: आप सुनी रहा नी मार की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। अब सुने कार्यक्रम किसान वाणी।

किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाला सभी भाई बहनों को स्वागत है आपका अपना कार्यक्रम में। ना आज का कार्यक्रम में आपका साथ है आपकी बहन स्मिता बरोले। तो सभी भाई बहनों का हमारी राम राम। भाई बहनों हनी अभी गर्मी का मौसम छे, न ठंडी छाया न शीतल जल हर कोई चाहेज, न हम लोग कहीं से भी घूमी फिरी ना आवे तो सबसे पहले ठंडी छाव माँ बठान न ठंडी हवा हम खचाए जे, साथज ठंडो पानी पीना की चाह हमारा मन में रहेज। साथज भाई बहन नोहनी अभी गर्मी का मौसम में हम यहाँ वहाँ घूम

भी जयरा नहीं सोची भी रहे तो हम ऐसी जगह जानो चाहा जहाँ प्राकृतिक सुंदरता होए न शीतल जल वाली नदी न बहती होए सातज ऊंची पहाड़ी न होए जिनका देखे न हमारा मन प्रसन्न हुई जाए न ऐसी जगह न पर हम जरूर जावा प्रकृति जगह न पर घूमना सी हमारो मन प्रसन्न भी हुई जाए पर हम थोड़ी सी छोटी छोटी बात न की सावधानी रखा यदि हम रेलगाड़ी से जाई रह तो ठीक छे पर यदि हम अपना साधन न से जाई रह तो ध्यान रखा हमेशा दिन में सफर करा पहाड़ी क्षेत्र न म ऊंची नीची जगह न पर गाड़ी धीरज चलावा ज्यादा तेज गति में गाड़ी नहीं चलावा यातायात का नियम न को पालन करा यदि दुर्घटना हुई भी जाए तो सूझबूझ से काम लेवा गाड़ी न ख दूसरी गाड़ी ने का साथ ओवरटेक नहीं करा सातज पहाड़ी क्षेत्र न में चलते समय सावधानी रखा यदि हवा आंधी तेज चली रही हो तो उस समय कहीं रुकी जावा कभी कभी थोड़ी सी लापरवाही हमारा लेना नुकसान करी सकज तो सावधानी रखा न सुरक्षित रहा न पर्यटन न प्रकृति की सुंदरता को आनंद लेवा न सुरक्षित अपना घर आवा भाई बहन नोहनी अब सुनी लेवा जी निमारी लोकगीत जेखा गायब शिवकरण साध अरु साथी नाना।

0: को नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: मैं विनवनी, अब आपसे पूछ ले आज को प्रश्न। हमारो आज को प्रश्न छे, मृदा सूर्यकरण तकनीक कई छे। प्रश्न एक बार फिर से सुनी ले, मृदा सूर्यकरण तकनीक कई छे। इना प्रश्न को उत्तर तो हम आपको जरूर बतावांगा, लेकिन कार्यक्रम का अंत में। भाई बहन नोहनी, हम बात करी रहा था कि कभी कहीं भी घूमना जावा तो छोटी छोटी बातों को ध्यान रखा, साथ सतर्कता ना सावधानी रखा। एका साथ अभी इना समय लोग तीर्थ धाम पर यात्रा न जयराज तीर्थ जयराज तो वहाँ जावा जरूर, पर ये ध्यान रखा कि जसो की नदी न स्नान करता समय गहरा पानी में नहीं जावा, सक्कल या रस्सी ख पकड़ी न स्नान करा। साथ घाट न पर लिखेल चेतावनी ख जरूर ध्यान से पढ़ी लेवा, न नदी न यदि

0: नौका बिहार करी राज तो सुरक्षा जैकेट जो जरूरी छे उख जरूर पहना। आपका साथ यदि कोई छोटा बच्चा छे तो उनको भी ध्यान रखा, न स्नान का समय भी बच्चा न को ध्यान रखा। साथ अपना साथ आवश्यक सामग्री न ले न जावा कि अगर स्वास्थ्य खराब हो भी जाव तो हम उनको उपयोग करी सकें। साथ पहाड़ न पर चढ़ता समय एक साथ समूह न रहवा, न यदि कोई परेशानी या मुश्किल आई भी जाए तो तुरंत वहाँ पूछताछ केंद्र या शिविर जो लगे छे उनमें अपनी परेशानी न बतावा। साथ पहाड़ टूटना या आंधी आवना का पहला जो चेतावनी दी जाए उनका अनुसार आगे बढ़ा, मनसी फैसला नहीं करा। एक साथ जब भी तीरथ पर स्नान करना जावा तो वहाँ की वहाँ पर भी साफ सफाई को पूरा ध्यान रखा। पवित्र नदी न में स्नान करना सी हम सोचा कि हमारा शुद्धिकरण होएगा, न हम नदी न में गंदगी कूड़ो कचरो फेंकी ना नदी न ख प्रदूषित कराज न उनका पानी ख शुद्ध करी देवा। जब भी भाई बहन नहनी स्नान कर लेना जावा तो कूड़ो कचरो नदी न में नहीं फेंका, कचरा डिब्बा को उपयोग करा, कचरा ओमज फेंका, पूजा पाठ की सामग्री भी एक जगह जगह नहीं फेंका, एक स्थान पर खड़ा हुई न पूजा पाठ करा, न पन्नी कागज कचरा फूल पत्ती यहाँ वहाँ नहीं फेंका, न दूसरा यदि कोई गंदगी करी राज या कूड़ो कचरो फेंकी राज तो उन कभी मना करा। नदी न की सुरक्षा हमारो कर्तव्य छे, न नदी न में रहना वाला जीव जंतु न की सुरक्षा करनु भी हमारो कर्तव्य छे। तो भाई बहन नहनी ये बात न की सावधानी रखी न हम अपनी यात्रा अच्छा सी करी सका। न भाई बहन नहनी अब सुनी ले आज एक वार्ता विषय छे प्रसार ब्रह्मपुर द्वारा की जा रही प्रसार गतिविधि न इन विषय पर जानकारी दे रही कृषि विज्ञान केंद्र ब्रह्मपुर की मोनिका जायसवाल प्रसार वैज्ञानिक न सुनी ले आज ये वार्ता।
1: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं कृषि विज्ञान केंद्र बुरहानपुर से प्रसार वैज्ञानिक श्रीमती मोनिका जायसवाल। आज हम बात करेंगे कि कृषि विज्ञान केंद्र बुरहानपुर जो है वो कैसे कैसे प्रसार कार्यक्रम कर रहा है और किसानों के बीच कैसे जो कार्य कर रहा है वो कैसे कार्य कर रहा है, जिससे हम अपनी जो नवीनतम तकनीकें हैं जो रिसर्च सेंटर द्वारा या ICR द्वारा जो आ रही हैं उसे हम कैसे किसानों तक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं जिले में, हम उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहते हैं। सबसे पहले कृषि विज्ञान केंद्र जो है अपने विभिन्न प्रसार कार्यक्रम द्वारा, जैसे हम ट्रेनिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम करते हैं किसानों के बीच, सबसे पहले जो है किसानों की जो प्रशिक्षण हम देते हैं 2 दिवसीय प्रशिक्षण का हम देते हैं, उसमें हम किसानों को 2 दिन तक प्रशिक्षण में विभिन्न उनकी समस्याओं पे या कैसे उनको फसल या कौन सी तकनीक अपना के ज़्यादा उपज कैसे लानी है उसके बारे में उनको अच्छे से समझाते हैं। उसके बाद हम व्यावसायिक प्रशिक्षण भी देते हैं जो कि नवयुवक नवयुवतियों को दिया जाता है, ये 3 से 5 दिवसीय प्रशिक्षण होता है। इसमें हम प्रशिक्षण कार्यक्रम देने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी देते हैं ताकि आप आगे जाके उससे कैसे व्यवसाय से जोड़ सकते हैं उसको, इस माध्यम से हम प्रशिक्षण देते हैं। इसी तरह हम OFT जिसको हम बोलते हैं ऑन फार्म ट्रायल, जिसे हम बोलेंगे क्षेत्र परीक्षण, इसमें हम क्या करते हैं जो भी नई नई तकनीकियां आती हैं उसको हम ला के अपने कृषि विज्ञान केंद्र के प्रक्षेत्र पर उसको हम परीक्षण करते हैं कि वो मौसम पर आधारित है और या जिले में वो आगे किसानों तक फैलाने के लिए सूट करती है या नहीं करती है। इसमें हम जैसे प्रजातियों का, विभिन्न फसलों की प्रजातियों का चयन करते हैं या नई तकनीक जैसे मल्चिंग हो गई या फिर आपका ड्रिप हो गया या जैसे आपका कोई दवाई है, ये सब को हम ला के जिले में कृषि विज्ञान केंद्र के प्रक्षेत्र पर इसका परीक्षण करते हैं। और इसे जब प्रशिक्षण इसका सफल हो जाता है तो इसको हम किसान की फील्ड पे लेके जाते हैं और किसान की फील्ड पे फिर हम उसको ट्रायल के रूप में देखते हैं, जिससे 5 से 10 किसानों को हम चयन करते हैं। उसको हम जैसे अभी किसान जो है जिले का वो आपकी सोयाबीन की JS 335, गेहूं में आपका लोकवन, इसी तरह बहुत सारी पुरानी हर फसल की पुरानी प्रजातियों का चयन कर रहा है। इससे क्या हो रहा है किसान का जो

नाफा है वो कम हो रहा है, क्योंकि किसान जो है पहले जो है अपनी पुरानी पद्धति से खेती करता था, और उससे क्या होता था, पुरानी पद्धति खेती करने से उनकी उपज और वो जो बीज थे वो जो है उपज ज़्यादा देती थी, लेकिन अब उसी को लगातार लगाते लगाते वो बीज जैसे और केमिकल का यूज़ करने की वजह से ये जो ज़मीन है उसकी उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है। इसके वजह से क्या हो रहा है कि पैदावार कम हो रही है, या मौसम कभी भी जब भी जैसे अचानक बारिश हो गई या ओलावृष्टि हो गई, इसकी वजह से क्या होता है कि फसल जो है वो आपकी कमजोर हो चुकी है, और उसमें अब वो मिट्टी में क्षमता नहीं है, उनकी जड़ों में ताकत नहीं है, और वो उपज कम देती है किसानों को। इससे किसान भाइयों और बहनों का बहुत नुकसान होता है। इसलिए हम जैसे गेहूं की HI 15-44, HI 16-34 ये नई नई प्रजातियों को जिले में लाते हैं, उसका प्रशिक्षण देते हैं, ताकि किसान भाई और बहन उसको नई वैरायटी को अपनाए और उससे ज़्यादा मुनाफा हो कमा सके। इसी तरह जब हमारा ये प्रक्षेत परीक्षण हो जाता है तो उसको हम बड़े उस पे प्रदर्शन के उसमें लेके जाते हैं और उसको जिले में और बढ़ाते हैं। इसी तरह जैसे मैं बात करूं, हमारे कुछ अपने जो ऑन फार्म ट्रायल्स हैं वो हम इस साल जो है आपके तुअर में IPA 15-06 और फूले तृप्ति को लेके जा रहे हैं, और चने में पूसा मानव और समृद्धि प्रजाति को जिले में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। इसी तरह हल्दी की हम बात करें तो गुजरात से आई हुई प्रजाति जो नवसारी 2 और 3 है, ये जो है आपकी अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी है, और इसमें आपकी जो राइजोम रॉट बीमारी होती है या लीफ ब्लॉच की बीमारी होती है ये समस्याएँ नहीं आती हैं, इसको भी हम जिले में इंट्रोड्यूस करेंगे। साथ ही हम सोयाबीन की प्रजाति जो किसान है वो JS 335 अभी भी ले रहा है और उत्पादन कम हो रहा है और उसको मुनाफा कम हो रहा है, इसलिए हम JS 20-116, JS 23-03, आप JS 21-72 और KDS 753 को हम जिले में इंट्रोड्यूस कर देंगे। ये 90 से 95 दिन की प्रजाति है और इसका उपज भी अच्छा मिलता है, 20 से 25 कुंटल एवरेज उपज है इसका। और साथ ही ये जो सोयाबीन में समस्या आती है आपकी येलो वेन मोजेक की, इससे भी ये रेजिस्टेंट वैरायटी है। इसी तरह हम अगर बात करें सोयाबीन में, तो आप सोयाबीन में वीड्स की बहुत प्रॉब्लम आती है, तो हम एक वीडी साइट पे भी ट्रायल करेंगे। साथ ही प्राकृतिक खेती में हम काबुली चने पे प्राकृतिक खेती, और साथ ही आपकी मूंग, इसमें हम बीजा अमृत, घन जीवा अमृत, जीवा अमृत, 10 पर्णी अर्क और नीमास्त्र का ट्रायल लेंगे। और इसके साथ ही साथ जो आपके खरबूजे, तरबूज और लहसुन में आपके सकिंग पेस्ट, सोयाबीन में वाइट ग्रब आता है, और साथ में आपका ये सोयाबीन में मोजैक डिजीज आती है, इस पे भी हम लोग ट्रायल करेंगे। साथ ही साथ पशुपालन में जैसे एक समस्या आती है कि आप दूध उत्पादन किसान का इतना अच्छा नहीं रहता है, तो कैल्शियम और विटामिन AD3 को हम पशुओं को देंगे। साथ ही दूसरा एक है सॉल्ट और मिनरल ब्लॉक, उसको भी हम किसानों तक पहुंचाएंगे। साथ ही विटामिन सप्लीमेंट, जिससे कि मुर्गियों में जो आपकी मृत्यु दर है, मृत्यु दर को कम करने के लिए हम विटामिन सप्लीमेंट भी मुर्गियों में देंगे। इसी तरह हम प्रदर्शन की बात करें तो सोयाबीन में हम 2011-35 को तुअर में गोदावरी, काबुली में RVKG 121, और साथ ही प्राकृतिक खेती चने में, प्याज में और बैगन में हम प्रजाति की बात करें तो काशी मनोहर, और मिर्च में जैसे मिर्च में आपकी बहुत सारी, आप जब नर्सरी लगाते हैं तो वो नर्सरी में बहुत सारी बीमारियां आती हैं वायरस की, तो उसमें हम नर्सरी में कैसे किस तरह से मिर्च को हम लगाएं ताकि उसमें आगे जाके वायरस की समस्या ना आए, तो वो नर्सरी मैनेजमेंट पे भी हम ट्रायल करेंगे। साथ ही जैसे कि अभी बहुत सारी बीमारियों की समस्या आ रही है, तो जो सब्जियां और सब्जी वगैरह साग सब्जी लगाते हैं किसान भाई बहन, वो उसमें बहुत सारे फर्टिलाइज़र और बहुत सारी केमिकल्स का स्प्रे करते हैं, तो उस पे भी हम उनको यही सलाह देते हैं कि आप जो भी सब्ज़ी ठीक है आप लगाते हैं, साथ में जो आप सब्जियां अपने घर में अपने खाने के लिए लगाएं उसको आप जो है कम से कम अपने घर के पीछे या आंगन में या खेत में एक एकड़, मतलब थोड़ी सी जगह में अपने परिवार में जितनी उपयोग हो सके उतनी सब्जियां कम से कम आप केमिकल फ्री लगाएं, ताकि आप

0: बीमारियों से मुक्त हो सकें। तो हमारा एक छोटा सा ट्रायल किचन गार्डन और साथ में जैसे शहरों में घर की छत पे जो गार्डनिंग करते हैं जिसे हम टेरेस गार्डन कहते हैं, तो उस पे भी हमारा एक ट्रायल है। साथ ही साथ हमारा जो ये आपकी तुअर में, सोयाबीन में या आपका मक्के में शीट ब्लाइट आता है, चने में और ये पिजन पी की में पॉड बोरर की समस्या आती है, इस पे भी हमारा कुछ ट्रायल है। साथ ही बायोफर्टिफाइड वैरायटीज आती हैं जो जैसे आपकी आयरन रिच होती है या फिर वो कोई न्यूट्रिएंट रिच वैरायटी होती है, उसको भी हम इस बार प्रमोट कर रहे हैं। तो सोयाबीन में हम NRC 150 को लेके जा रहे हैं, गेहूं में हम 3 प्रजातियों को इंट्रोड्यूस करेंगे इस बार जिले में, HI 1650, SI 1634 और SI 1655 को। इसी तरह हम ज्वार में परभनी सुपर मोती को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। ये सारी जो प्रजातियां हैं ये बायोफर्टिफाइड वैराइटीज़ हैं, ये जो हैं इन ये न्यूट्रिएंट रिच वैराइटीज़ हैं, इनको खाने से इसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा रहता है। साथ ही हम मक्के की बात कर, मक्के में हम वेस्ट डीकम्पोज़र को, जैसे मक्का फसल आपकी कट जाती है उसके बाद जो उसका सूखा और ये किसान क्या करते हैं, फराली उसकी जो बचा है वो खेत में जला देते हैं, उससे भी मिट्टी की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो उसको उसके लिए हम किसान भाइयों को वेस्ट डीकम्पोज़र लेके जाएंगे ताकि वेस्ट डीकम्पोज़र का वो उसमें प्रदर्शन में लेके जाएंगे। वेस्ट डीकम्पोज़र अगर वो खेत में डालते हैं तो वेस्ट डीकम्पोज़र डालने से वो जो उनको फराली उसको जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, साथ ही वो जो उनका सूखा वाला सूखा है वो मिट्टी में जल्दी से जल्दी सड़ जाएगा और साथ में मिट्टी की उर्वरा क्षमता भी बढ़ाएगा। इसी तरह हम जानवरों की बात करें तो जानवरों में मुर्गियों की जो प्रजाति है ग्राम प्रिया और जनप्रिया, उस पर हम प्रदर्शन लेके जाएंगे। साथ ही आपका भैंस में बाईपास प्रोटीन और गाय में न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पे भी हमारा ट्रायल है, जिससे आप दूध की उत्पादन शक्तियां, दूध को अधिक मात्रा में उत्पादन कैसे हो, इस पे हम ट्रायल करेंगे। प्रशिक्षण की बात करें तो हम प्रशिक्षण में मुर्गी पालन, बकरी पालन, आपका गौ पालन, वर्मी कंपोस्ट, नेचुरल फार्मिंग, जैसे बीज उत्पादन कैसे अच्छे से कर सकते हैं, नर्सरी मैनेजमेंट कैसे अच्छे से कर सकते हैं, टेरेस गार्डनिंग कैसे कर सकते हैं, और ये सब प्रशिक्षण लेने का उद्देश्य यही है कि जिससे आप खेती बाड़ी के साथ अपना एक छोटा सा उत्पादन इकाई, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन इकाई या मुर्गी पालन इकाई या आपका बकरी पालन इकाई भी साथ में करें, तो ताकि आपको खेत के साथ साथ दूसरी तरफ से भी आए। इसी तरह हमारे कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा अभी जो है 10 दिवसीय प्रशिक्षण मुर्गी पालन और बकरी पालन पर दिनांक 9 तारीख से 15 तारीख तक का आयोजन किया गया है। इसी तरह बुरहानपुर केवी के द्वारा 3 केला, जैसे बुरहानपुर में बहुत लगाया जाता है, तो त्रिची रिसर्च सेंटर द्वारा केले की प्रजाति नंदेरन और रेड बनाना, जिसे हम लाल केला बोलते हैं, उसको भी लाकर हमने किसानों को 10 किसानों के प्रक्षेत्र पर उसको भी लगा के उसका भी अभी ट्रायल चल रहा है। साथ ही आपके लखनऊ से हमने आम की प्रजातियां बुलवाई हैं जिसमें राम केला, अरुणिका, मलिका और अंबिका है, इसको भी हमने जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है उसमें किसानों को इसको 100-100 पौधे दिए हैं और इसका भी को भी हम प्रमोट कर रहे हैं। साथ ही ये लखनऊ रिसर्च सेंटर द्वारा लाया गया प्रोजेक्ट है जो कि ये 5 साल तक कंटिन्यू रहेगा। और इसी तरह अमरूद जाम, जिसे हम अमरूद बोलते हैं, इसमें भी हम श्वेता प्रजाति, ललित प्रजाति, लालिमा प्रजाति और धवल प्रजाति, इसको भी हम जो पिछड़ा वर्ग का किसान है उसको हम ये दे रहे हैं और साथ में ये को भी इसका ट्रायल चल रहा है, ताकि जो है किसान जो है अभी फसल लगा रहा है और अचानक से मौसम आपका बदल रहा है और उसकी वजह से आप किसान जो है बहुत नुकसान हो रहा है उसको, तो वो या तो इसका केला आम ये सबका वो जो है ऑर्चर्ड लगा सके, ऑर्चर्ड लगा के वो अधिक मुनाफा कमा सके। नमस्कार।
1: भाई बहनोहनी, अभी हम सुनी रहा था वार्ता विषय तो बुरहानपुर द्वारा की जा रही प्रसार गतिविधियां। वार्ताकार थी मोनिका जायसवाल, प्रसार वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र बुरहानपुर से। नमः भाई बहनोहनी।

अब आपका बताइए देवज आज का समाचार। घर घर पहुंची रही जनगणना टीम। अधिकारी का नेतृत्व में जनगणना दल क्षेत्रवार घर घर पहुंची कर सर्वेक्षण कार्य करी रोज। जनगणना कार्य का दौरान नागरिक नसीब भवन मकान परिवार पेयजल शौचालय बिजली रसोई ईंधन डिजिटल सुविधा न वाहन न सामाजिक वर्ग सहित निर्धारित 34 बिंदु न पर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा रही। ये जानकारी शासन द्वारा विकास योजना आधारभूत सुविधा का विस्तार संसाधन प्रबंधन एवं जन कल्याणकारी कार्यक्रम का प्रभावी संचालन हेतु महत्वपूर्ण होगा। तो आप भी जो जनगणना करना आव अधिकारी उनका सही न शुद्ध जानकारी देवा। न भाई बहन होने ये तो था आज का समाचार। न आप खबर बताई देवाज खंडवा उपज मंडी से प्राप्त कृषि उपज का भाव की जानकारी। सोयाबीन का न्यूनतम भाव रहा 5000 रुपया प्रति क्विंटल न अधिकतम भाव रहा 6951 रुपया प्रति क्विंटल। गेहूं को न्यूनतम भाव रहे 2000 रुपया प्रति क्विंटल न अधिकतम भाव रहे 2488 रुपया प्रति क्विंटल। तुअर को न्यूनतम भाव रहे 4500 रुपया प्रति क्विंटल न अधिकतम भाव रहे 6960 रुपया प्रति क्विंटल। चना को न्यूनतम भाव रहे 5100 रुपया प्रति क्विंटल न अधिकतम भाव रहे 5425 रुपया प्रति क्विंटल। सातज एक अरु भाव रहे 6150 रुपया प्रति क्विंटल न्यूनतम भाव रहे न 7530 रुपया अधिकतम प्रति क्विंटल भाव रहे। सरसों को न्यूनतम भाव रहे 4100 रुपया प्रति क्विंटल न अधिकतम भाव रहे 6400 रुपया प्रति क्विंटल। मूंग को न्यूनतम भाव रहे 7090 रुपया प्रति क्विंटल न अधिकतम भाव रहे 7780 रुपया प्रति क्विंटल। मक्का को न्यूनतम भाव रहे 1616 रुपया प्रति क्विंटल न अधिकतम भाव रहे 2015 रुपया प्रति क्विंटल। तो भाई बहन होनी ये तो था खंडवा उपज मंडी से प्राप्त कृषि उपज का भाव की जानकारी। न आप जानी लो आज का मौसम को हाल। सूर्योदय प्रातः 5:51 पर हुए न सूर्यास्त शाम 6:52 पर हुए। आज का दिन को अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहो न रात को न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना छे। तो भाई बहन होनी तो थी मौसम की जानकारी। न भाई बहन होनी अब सुनी लो आज एक निमाड़ी लोकगीत जेखा गायक नारायण यादव अरु साथी नाना।

भाई बन्नोहणी, अभी आप सुनी रहा था निमाड़ी लोकगीत ना भाई बन्नोहणी। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे पूछो तो एक प्रश्न कि मृदा सूर्यकरण तकनीक कई छे। तो मृदा सूर्यकरण

मिट्टी में अवशोषित एवं सिंचित ताप बाहर नहीं निकली सका, जे काशी खेत की सतह पर तापमान में लगभग 8 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई जाए, जो कि मिट्टी में पाए जाने वाला हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु न खरपतवार का बीज नख नष्ट करी दे, क्योंकि कई दशक नसी उत्पादन वृद्धि कालीन रसायन जैसा उर्वरक कीटनाशक एवं खरपतवार नाशी दवानक को प्रयोग बढ़ी रोज, जो कि मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक छे। इन्हीं वजह से वर्तमान में प्राकृतिक एवं कार्बनिक खेती पर ज्यादा बल दियो जाए रोज। असामा खरपतवार तथा मिट्टी में पाया जाने वाला हानिकारक सूक्ष्म जीव नका नियंत्रण के लिए मृदा सूर्यकरण तकनीक बहुत कारगर साबित हुई रही। तो भाई बहन होनी इना प्रश्न का उत्तर का साथ आज को किसान वाणी कार्यक्रम यहाँ समाप्त हो। आज्ञा देव, राम राम।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: अभी किसानवाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। अब अगला प्रसारण राष्ट्रीय विविध भारतीय सेवा से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: वड़ी इधर काहे को घुसा चला जाता है रे, अरे रुको रुको, वड़ी हम कहता है रुको जी, अरे एक मिनट रुको। हाँ, तुमको किससे मिलना है भाई?
2: ओ लाले की जान, हमको सेठ से मिलना है, समझे? हम खुदों को मत हो
1: सेठ से, मगर सेठ से क्यों मिलना है?
2: वो ये हम तुमको नहीं बताएगा, पहले हम सेठ को मिलेगा।
1: मुनी साई, ये तो मैंने सुन लिया कि तुम सेठ से ही मिलने आया है, मगर काहे के लिए बोलो नहीं?
2: ओ, हम कहा ना भाई कि ये हम सेठ को ही बताएगा।
1: मुनी साई, तुम सेठ से इस वक्त मत मिलो, वो तो पहले से ही बहुत दुखी है।
2: ओ, तो तुम पहले ही सेठ से मिल चुका है? ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, जब आया हूँ तो हम भी सेठ से मिलकर ही रहेगा। हाँ
1: बुढ़ी साई, मैं ही तो हूँ किस्मत का म्यारा सेठ बहुनानी।
2: लाहौल बिला खूबत, ये आप क्या बोलते है, आप ही सेठ जी है? और नमस्ते ओ सेठ जी, माफ करना ओ सेठ जी, हम आपको पहचान नहीं पाया जी।
1: बुढ़ी साई, तुम्ही क्या, अब तो मुझे कोई भी नहीं पहचानेगा।
2: ओए,
1: अब मैं पहले वाला सेठ बव नानी का हूँ, उन्हीं मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया साई।
2: सेठ जी ओए, आप तो बहुत ही ज्यादा गमगीन हो रहा है। उजी, हम तो आपसे नौकरी।
1: हाँ, अब तो मुझे नौकरी ही करनी पड़ेगी साई। अब

0: नहीं लगा। अरे चुप हो जाइए शेख साहब जी, चुप हो जाइए।
1: मेरे पास अब रखा ही क्या है साईं, दुकान का सारा माल तो चोर उठा कर ले गए।
0: ओ सेठ साहब आप समझे नहीं जी, अरे हाथी चाहे कितना भी दुबला क्यों ना हो, मगर हाथी तो हाथी ही रहता है सेठ साहब। और फिर सेठ जी हम आजकल बेकार चल रहा है, हमारा कुछ तो ख्याल कीजिए सेठ साहब। हम बहुत बहादुर आदमी है सेठ साहब।
1: क्या बोला उन्हें बहादुर?
0: अरे अरे अरे अरे आप मुझे ऐसे शक की निगाहों से क्यों देखता है रे सेठ? अगर नहीं देनी है नौकरी तो मत दो, हम चला हम किसी दूसरे सेठ का तलाश में जाएगा।
1: अरे रुको रुको रुको, मैंने कहा अरे वणीर तुम तो चली दिए, एक मिनट रुको। अरे पहले मैं तुम्हें अच्छी तरह ऊपर से नीचे तक देख तो लूं कि तुम सचमुच बहादुर हो।
0: तो जनाब अली ये बात है, लो लो देख लो देख लो, हमको जी भर के देख लो।
1: देखने में तो बड़ी बहादुर लगते हो।
0: बहुत बहादुर जी, बहुत बहादुर।
1: भाई तुम किसी भागते हुए चोर को पकड़ सकते हो नहीं?
0: हाँ जी हाँ, क्यों नहीं पकड़ेगा। और जी सेठ साहब जी, क्या मजा लेगी कि चोर मुझसे छूट कर भाग जाए।
1: और अगर चोर से उठा पटक हो तो भी?
0: अरे सेठ जी, हम अपने इलाके का नामी पहलवान रह चुका है जी। बहुत कुश्तियाँ जीता है हमने। बहुत कुश्ती जीता है।
1: तो फिर भैया हमारी दुकान की रखवाली बड़ी तुम ही कर लो भाई, वही चार बार चोरी हो चुकी है वहाँ। मुझे बदमाशों ने से बिल्कुल कंगाल बना दिया, अब की बार फिर कोशिश करके कुछ माल भरते हैं दुकान में।
0: जरूर जरूर।
1: अरे भैया मुझे तुम्हारी नौकरी का भी ख्याल रखना है नहीं?
0: तो अब हमको चौकीदारा करनी ही पड़ेगी।
1: हाँ भैया
0: आओ, फिक्र मत करो सेठ साहब जी। सेठ जी मगर बात ऐसे ना,
1: तुम घबराओ नहीं साईं, तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हें खूब इनाम देंगे, खूब इनाम देंगे, खूब।
2: Oh, my God.

0: आओ चूर बच्ची, आओ आओ आज तुम आकर तो देखो, वैसा मजा चखाऊंगा ऐसा लगता है कि चूर आ गया है। उधर से चीप कर जा रहे हो हैं? अच्छा बच्चू चूर, आज तुम मुझसे बच नहीं सकते। हाँ, हम पठान का बच्चा है री, हम तुम्हें पीछे से अचानक अचानक पकड़ूंगा री। हाँ, आप बचकर आए जाएगा बच्चू। अरे वे, अरे मैं तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हूँ रे।
1: मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो।
0: लोई ललक जान, वो सेठ साहब हमको ढेर सा इनाम देगा।
1: सेठ के पास मर गए, मर गए। अच्छा भैया चौकीदार जी, तुम मुझे सेठ के पास ले जाओगे?
0: ललक जान इसलिए कि पहले वो तुम्हारी खूब जमकर पिटाई करेगा, और उसके बाद वो तुमको पुलिस में देगा। पुलिस में?
1: पुलिस? अरे बाप रे, अब क्या होगा?
0: अरे मेरे भाई, जो होना होगा वो तो सेठ के पास होगा। चोरी करने का पूरा मजा मैं नहीं तो यही चका दूंगा तेरे को यही।
1: हाय चौकीदार भैया, अरे अरे मुझे ऐसे घसीट कर मत ले चलो रे।
0: अभी घसीट कर नहीं तो मैं तुम्हें पीट पीट कर ले जाऊंगा, समझा? तू तू चलता है चुपचाप कि नहीं?
1: बाप रे, जरा रुक कर मेरी बात तो सुनो।
0: ओ नहीं, ओ नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता रुकने का। अबे बचा, जो भागना है ना, चलते चलते भागो।
1: अगर अगर तुम मुझे सेठ के पास ले जाओगे तो पहले वो मुझे मार मार के मेरा मेरा हुलिया बिगाड़ देगा।
0: जानी

0: निकल उलिया तो बेटा तुम्हारा ऐसे बिगड़ेगा को कोई तुम्हें पहचान ही नहीं सकेगा। सेठ पहले से बहुत ही बुरी तरह जल भुना बैठा है तुमसे।
1: बाप रे, फिर तो बुरा हाल हो जाएगा।
0: हाँ हाँ बेटा, हो जाएगा। पुलिस की मार से तो भूत भी भाग जाता है। अरे फिर तुम किस खेत की मूली हो?
1: हे भगवान, पहले सेठ की मार, फिर पुलिस की पिटाई, फिर केस मुकदमा, अरे मारे गए रे।
0: हाँ बेटा, हाँ, ये सब तो तुम्हें चोरी करने से पहले सोच रहा था जाने चिकर।
1: अरे मुकदमे के बाद जेल भी तो हो गई, आए मर गया
0: होगा?
1: जेल की चक्की फिर पत्थर तोड़ना आया, मेरा तो दम निकला जा रहा है।
0: और करो बेटा जान चोरी और करो।
1: अगर पहले ये सब सोचा होता तो फिर रोना किस बात का?
0: बच्चा, चोरी करते समय रोना नहीं आया था तुमको है? अरे अब बेटा जैसा किया है ना वैसा ही तो भरना पड़ेगा।
1: चौकीदार भैया, आप क्या बताऊं, तुम हो तो चौकीदार पर बड़े दयालु नजर आते हो।
0: कसम हम है।
1: बस भैया, तुम मेरी एक इच्छा पूरी कर दो।
0: बोलो।
1: फिर तुम मुझे जहाँ चाहे वहाँ ले चलो।
0: अच्छा बोलो। मगर छोड़ूंगा नहीं, ये समझ लेना।
1: भैया आप जेल तो जाना ही पड़ेगा ना, और फिर वहाँ तेज धूप में खेतों में काम भी करना पड़ेगा।
0: तो करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा। मगर तू बोल ना, तेरी ख्वाहिश क्या है?
1: भैया धूप में नंगे पैर चलने पर मेरे पैर तो एकदम झुलस जाएंगे।
0: तो फिर चोरी करने के लिए जूते पहनकर क्यों नहीं चलता? पर जूते पहनकर क्यों निकलता? चलने में आवाज होने लगता है।
1: मैं सच कहता हूँ भैया, आज मैं जूते पहनकर ही चोरी करने निकला था। लेकिन जब मैं तुम्हारे सेठ की दुकान में घुस रहा था तो अपना जूता बाहर ही खोल दिया था।
0: नहीं लाले की जान नहीं, मैं तो बस एक ही बात जानता हूँ कि जब चोर के पैर ही नहीं होते तो उसके जूते कहाँ होंगे?
1: भैया मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरा जूता वहीं छूट गया है। अब अगर मुझे आज्ञा दो तो मैं अपना जूता अपने साथ ले लूँ।
0: अच्छा बेटा, हाँ, तो इतनी दूर आने के बाद तुम अपने जूते की याद आई है अब तुमको? है उल्लाले की जान, तू भी क्या याद करेगा कि किस दिलदार चौकीदार से पाला पड़ा है। हाँ, देख मैं यही खड़ा हूँ। हाँ, ठीक है। हाँ, तुम जूता लेकर जल्दी से यहाँ पर आ जाओ।
1: ठीक है।
0: और सुनो, मैं यही पर खड़ा देख रहा हूँ। उल्लाले की जान, कोई हेरे फेरी मत करना है।
1: ठीक है।
0: क्योंकि सुना है चोरी करने से जाए हेरा फेरी से न जाए।
1: बस भैया मैं अभी गया और अभी आया, बस तुम यही खड़े रहो।
0: जल्दी आना है।
1: मैं बहुत जल्दी आ
0: जाऊंगा। जल्दी भाग के आना।
2: जाते हो?
1: बाप रे, आज तो ये फिर घूम रहा है। अच्छा, जब आ ही गया हूँ तो कुछ ना कुछ ले ही जाऊंगा।
0: लाले की जान, आज फिर आ गया ये। अच्छा वही है, उस दिन तो तूने मुझे चूने लगा ही दिया था बच्चू, मगर आज देखता हूँ कि तू कैसे भागता है। ओए पकड़ो, ये लो ओए, ये लो ओए।
1: अरे बाप रे, मर गया। बचाओ बचाओ, अब मत मारो, मर गया। अरे मर गया रे।
0: कहाँ बेटा? अरे ये ले, ये बाया है, ये दाया है।
1: अरे मर गया रे।
0: आज देखो तो तुम हमारा पहलवान। ये ले।
1: अरे मुझे मत मारो, अब मत मारो मुझे। अरे मैं नहीं भागूंगा, उस दिन गलती हो गई थी भैया।
0: लाल की जान, भागेगा कैसे रे? अब चल चुपचाप सीधी तरह से सेठ के पास।
1: चलता हूँ आज तो भागने का सवाल नहीं पैदा होता। अरे भैया, मेरे जैसा चोर बार बार अपनी ईमानदारी थोड़े ही बेचता। अरे मर गया रे।
0: चलो।
1: अरे बाप रे, अरे मर गया भैया। जरा एक मिनट रुको।
0: नहीं रुक सकता हूँ। आज हम कुछ सुनने वाले नहीं है। उस दिन तुम्हारी वजह से हमको सेठ के सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। आखिर में सेठ का नमक खाता है वे। ओ हमारा पैर होए।
1: क्या हुआ चौकीदार भैया?
0: होने क्या है रे, हमारे पैर में लगता है कि कांटा चुभ गया है।

0: ये तो गजब हो गया।
1: ओ,
0: लाओ मैं निकाल दूं, जरा मेरा हाथ छोड़।
1: नहीं हो नहीं, ओए चाहे ऐसे से चार कांटे और चुभ जाए तो भी लाला की जान, हम तो हम नहीं छोड़ेगा, मगर हम तेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। ओए
0: क्या भैया, ठीक है, मेरे लिए क्यों कष्ट झेलते हो, खुद ही निकाल लो।
1: अरे बहुत गहरा चुभ गया रे, ये निकाल दिया। ओए
0: चौकीदार भैया, आज आपका जूता कहाँ है?
1: अरे तुझे पकड़ने के लिए उसे उतार दिया तेरे, ओ यही कहीं दुकान में रह गया है।
0: ये मारा चूना लगा के। तो भैया अब क्या नंगे पैर ही चलोगे?
2: आगे तो और भी कांटा चुभ सकता है, अंधेरे में तो कांच के टुकड़े भी गड़ सकते हैं, और कभी कभी तो पैर कट भी जाता है।
1: अच्छा,
2: और जख्म होने से पैर सड़ भी जाता है।
1: अरे बखुदा, अरे हमारे बाप, अब क्या होगा रे, इसका मतलब जूते के बिना आगे आगे चलना ठीक नहीं है।
2: सोच लो भैया, मैं तो आपके जाल में फंस ही चुका हूँ, अब आपको जो अच्छा लगे सो करो।
1: ठीक है बेटा, ठीक है, लेकिन बरखुदर तुझा खड़े ही ना, वही खड़ा रहे, मैं भाग कर दुकान के पास से अपना जूता लेकर आती है।
0: ठीक है ठीक है भैया, मैं यही खड़ा रहूंगा। अरे भैया टस से मत नहीं होगा, भागना तो दूर रहा, तुम जल्दी जाओ।
1: ठीक है ओए, भागना मत, हमारा इज्जत का सवाल है, हमारी नौकरी का सवाल है, और देखो लल की जान, हमारे नंगे पैर का सवाल है। भागने मत,
0: नहीं भागना,
1: यहाँ रहना, हम अभी आया।
0: नहीं भागूंगा,
1: अभी आया।
0: नहीं भागूंगा, अरे
1: अभी आया।
0: नहीं भागूंगा, तुम जाओ तो सही। और अब मैं भी जाता हूँ चूना लगा के।

सर जूते का। अभी आपने अजीत कुमार शर्मा की लिखी ये झलकी सुनी। निर्देशक थे गुरमीत रामल मीत। ये झलकी आकाशवाणी शिमला की प्रस्तुति थी। हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं ए दिल है मुश्किल फिल्म के गाने से, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने, बोल अमिताभ भट्टाचार्य के संगीत प्रीतम का।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब सुनिए टोची रैना और रेखा भारद्वाज को फिल्म ये जवानी है दीवानी में अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत की धुन बनाई है प्रीतम ने।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

बार बार देखो। अभी आपने इस फिल्म में अमर रशी, बादशाह और नेहा कक्कड़ को सुना। संगीत जसलीन रॉयल का था, बोल अमरीक सिंह और कुमार के।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: चितलोक कार्यक्रम में अब सुनिए बादशाह फजील पुरिया और सुकृतिका को फिल्म कपूर एंड सन्स में। धुन बनाई है अमाल मलिक ने, बोल लिखे हैं कुमार ने।
1: Yeah.

0: कर गई चुल।
1: अमाल मलिक के ही संगीत निर्देशन में एक और गीत सुनिए जिसे लिखा है मनोज मंतसर ने, आवाज पलक मच्छल की, फिल्म का नाम MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
3: और ये है चित्रलोक कार्यक्रम की अंतिम पेशकश, अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर की आवाज में। फिल्म का नाम है रईस। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत की धुन बनाई है जैम 8 ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। केंद्र सरकार ने 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की परिव्यय के साथ कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने गुजरात में दो और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी। 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजेरा पर हुए हमले की निंदा की। इसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। उन्होंने पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज। और भारत ICC क्रिकेट पुरुष T20 टीम रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से आयातित कपास पर निर्भरता कम करने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में भी मदद मिलेगी।
1: ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है। 32 लाख किसानों को इसका बेनिफिट होगा और कॉटन की प्रोडक्टिविटी उसको डबल करने का

0: में टारगेट हाथ में लिया है, हम प्रोडक्शन को पहुंचाना चाहते हैं 498, जिससे कि भारत की कंप्लीट डिमांड भारत में ही मीट हो सके, आत्मनिर्भर बन सके।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
0: जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1,00,000 करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स है देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
1: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इनमें गैलियम नाइट्राइड तकनीक पर आधारित देश की पहली वाणिज्यिक मिनी माइक्रो LED डिस्प्ले सुविधा और एक सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सुविधा शामिल है।
0: 2 नए सेमीकंडक्टर यूनिट्स, अब तक 10 सेमीकंडक्टर यूनिट्स का अप्रूवल हुआ है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में, उसमें से 2 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। एक 31 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था, एक 30 अप्रैल को उसका सेकेंड वाले का, और अच्छी बात यह है कि दोनों के दोनों प्लांट्स की फुल कैपेसिटी बुक हो चुकी है, मतलब जितना मैन्युफैक्चर करे वो फुल्ली उसकी बुकिंग हो चुकी है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने संसद में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
0: 2014 से अगर हम देखें तो 25 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे और आज 33 से 37 किया, यानी करीब करीब 50% जजेस की संख्या में वृद्धि की है, क्योंकि जस्टिस डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल जो 92,000 केसेस पेंडिंग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि हम जजेस बढ़ाएं, और ये जजेस बढ़ाए गए।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 14454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए समर्थन दोहराता है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्रालय ने भी हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया है। मंत्रालय ने संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष को हल करने के लिए भारत लगातार वार्ता और कूटनीति का समर्थन कर रहा है ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने बताया कि पिछले महीने ही फोन पर हुई बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की और कहा कि भारत भाग्यशाली है जो उन्हें श्री मोदी जैसा नेता मिला है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य

0: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोटों की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया है। उधर निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों को निराधार और झूठ बताया है। दक्षिण कोलकाता के जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि पूरी मतगणना आयोग के नियमों और विनियमों के अनुसार ही संपन्न हुई। मतगणना के दौरान सीसीटीवी कैमरे बंद किए जाने के आरोप का खंडन किया गया है और कहा गया है कि कैमरे पूरी मतगणना के दौरान चालू रहे हैं। उधर भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भाजपा ने कहा कि चाहे वो इस्तीफा दें या न दें, वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल बृहस्पतिवार को समाप्त हो रहा है और उसके बाद सदन का कोई भी सदस्य नहीं रहेगा। केरला में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। एक रिपोर्ट।
1: केरलम में सरकार गठन को लेकर कांग्रेस खेमे में चर्चाएं जारी है, लेकिन विधायक दल की आधिकारिक बैठक के संबंध में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने केरलम में 140 विधानसभा सीट में से 102 सीट पर शानदार जीत हासिल की है। विधायक दल की बैठक के बाद पार्टी सरकार गठन के लिए राज्यपाल से संपर्क करेगी। यूडीएफ सूत्रों के अनुसार विधायक दल की बैठक दिल्ली से पार्टी कमेटी के प्रतिनिधियों के आने के बाद ही निर्धारित की जाएगी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कड़गम के नवनिर्वाचित विधायकों ने आज औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को नेता चुना है। एक रिपोर्ट।
2: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर फिलहाल केरल में हैं, इसलिए सरकार बनाने का दावा पेश करने वाला पत्र भेजने में देरी हो सकती है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा आज सौंप दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। एक बयान में स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेगी। एआईएडीएमके के महासचिव ई पलानीसामी ने कहा कि वे जनता के जनादेश को स्वीकार करेंगे। भाजपा नेता के अन्नामलाई ने नतीजों का स्वागत करते हुए कहा है कि जनता ने वोट खरीदने और वंशवादी राजनीति के खिलाफ अपना संदेश दिया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: पुदुचेरी में मनादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वियम को विधानसभा में भाजपा का विधायक दल का नेता चुना गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पुदुचेरी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम की अध्यक्षता में आज नव निर्वाचित विधायकों की परामर्श बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री और पुदुचेरी में भाजपा चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, प्रदेश प्रभारी निर्मल कुमार सुराणा और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान मन्नादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वयम को विधानसभा में पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक में विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के संबंध में विचार विमर्श किया गया। पुदुचेरी से विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: उधर बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का 7 मई को विस्तार किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस संबंध में जानकारी दी है।
4: 7 मई को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए के सभी बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, सभी लोग उसमें सहभागी होंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल हैं। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा और देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने डिजिटल फोरेंसिक, साइबर सुरक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी के अनुसंधान के क्षेत्र में 5 वर्षीय सहयोग के लिए एक समझौता किया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक चंद्र वर्मा ने कहा कि यह सहयोग भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 252 अंक गिरकर 77,018 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 87 अंक फिसलकर 24,033 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए 21

पैसे के स्तर पर बंद हुआ। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने आज बिहार के बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति तो लाम ने बोधगया स्थित वियतनामी मठ का भी दौरा किया। इस यात्रा को भारत और वियतनाम के बीच धार्मिक और आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एनईसी ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट्स ईजीआर को जारी करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य सोने की व्यापक खरीद बिक्री में पारदर्शिता लाना है। इसके जरिए सोने की लिवाली और बिकवाली की प्रक्रिया को एक विनियमित तथा सुरक्षित आधार मिलेगा। ये सोना भारतीय प्रति

0: की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एनईसी ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट्स ईजीआर को जारी करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य सोने की व्यापक खरीद बिक्री में पारदर्शिता लाना है। इसके जरिए सोने की लिवाली और बिकवाली की प्रक्रिया को एक विनियमित तथा सुरक्षित आधार मिलेगा। यह सोना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त वॉल्ट में रखा जाता है और डिपॉजिटरी के जरिए डिजिटली सुरक्षित रहता है। भारत ने आईसीसी T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इंग्लैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। भारत मार्च में T20 विश्व कप का खिताब सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनी थी। साथ ही टीम ने रिकॉर्ड तीसरी बार यह खिताब जीता था। भारत 275 अंक के साथ शीर्ष पर काबिज है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली ने 17 ओवर में 5 विकेट पर 116 रन बना लिए हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। चेन्नई अंक तालिका में छठे और दिल्ली 7वें नंबर पर है। मौसम विभाग ने कल बिहार और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गरज और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माहे में कल तेज बारिश की आशंका है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तेलंगाना और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की परिव्यय के साथ कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी। 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजेरा पर हुए हमले की निंदा की। इसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज और भारत आईसीसी क्रिकेट पुरुष T20 टीम रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए गीत से। फिल्म का नाम है घर। गुलजार के लिखे इस गीत की धुन बनाई है आरडी बर्मन ने।

अब सुनिए राजेश रोशन का संगीतबद्ध किया गीत। फिल्म है स्वयंवर, आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, बोल लिखे हैं गुलजार ने।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर को फिल्म कर्तव्य में। काफिल अजहर के लिखे इस गीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, सुनने को थे प्याली में।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
3: आज के फनकार।

नमस्कार, हमारे आज के फनकार हैं भारतीय सिनेमा के सुप्रसिद्ध संगीतकार नौशाद।

0: एक सफल और सुरीले संगीतकार के रूप में होती है। मुंबई आने से पहले नौशाद ने लखनऊ में ही वाद्यों की एक दुकान पर काम किया। इसी संदर्भ में संगीतकार नौशाद के उद्गार।
1: हमारे पास बाजा वाजा तो था नहीं। अब लखनऊ में एक दुकान थी लाडरूस रोड पर, वो वहाँ म्यूजिकल साज तमाम बनते थे। गुरबत अली साहब थे, उनकी ये दुकान थी, उस्ताद गुरबत अली साहब, और उनके वहाँ पियानो, हारमोनियम, सितार, तबला, हर कस्म के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उनके वहाँ बिकते थे, और उनका एक कारखाना था, वहाँ बनते भी थे। हम जाके उनके साजों को देखा करते थे खड़े हुए घंटों। तो वो एक रोज़ उस्ताद ने कहा, बेटा इधर आ, तू ये खड़ा होकर घंटों क्या देखा करता है? मैं देखता हूँ कितने दिनों से तू आता है यहाँ खड़ा रहता, क्या देखा करता है? तो मैंने कहा, उस्ताद ये साज सामान जो आपके हैं, हारमोनियम, सितार, पियानो, ये सब देखा करता हूँ। तो उस्ताद से मैंने कहा कि आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूँ उस्ताद। पता नहीं मुझे कैसे हिम्मत आई। हाँ कहो बेटा, क्या है? तो मैंने कहा, हुजूर अगर आप हुक्म दें तो सुबह आके मैं झाड़ू वाड़ू दे दिया करूँ और लोबान लोबान दे दिया करूँ यहाँ आके। तो उस्ताद मुझे देख के मुस्कुराए। ऐसे फरिश्ता लोग थे वो साहब वहाँ से। अच्छा बेटा, वो घामी के तकिए पर उधर मैं रहता हूँ, तुझे घर मालूम? मैंने कहा, हुजूर मालूम है आपका घर? तो कहने, कल सुबह आ जाओ वहाँ। मैं पहुँच गया साहब, उन्होंने चाबी दे दी दुकान की कि जाओ खोल लो दुकान। और मैं जल्दी जल्दी आके दुकान खोल के झाड़ू वाड़ू साफ सफाई करके लोबान वान दे के और पेटी लेके कुछ प्रैक्टिस करना शुरू कर दूं कि उस्ताद के आने से पहले ये अपना रियाज हो जाए। तो ये चलता रहा सिलसिला। वही चीज़ें जो रात को वहाँ सुनी मैंने रॉयल सिनेमा में। तो एक रोज़ उस्ताद आ गए, मुझे नहीं मालूम, मैं आँख बंद के पसीने पसीने लगा हुआ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वो आके पीछे बैठे अपनी मसनत पर, उन्होंने किया, अरे मेरी जान निकल गई कि आ गए उस्ताद। मैंने देखा उस्ताद बैठे हैं, मैं मुजरिम की तरह खड़ा हो गया उनके सामने हाथ बांध के। कह रहे, अच्छा तो आप इसलिए आते थे कि मेरे नए नए साजों का सत्यानाश करें? आप दुकान साफ करना नहीं आते थे, हाथ साफ करने के लिए आते थे? मैंने कहा, उस्ताद गलती हो गई, आज के बाद ये गलती नहीं होगी, माफ़ कर दीजिए। नहीं नहीं, माफ़ तो नहीं करूँगा, मैं सजा दूंगा इसकी। मैंने कहा कि आप जो भी आपका हुक्म हो सर आँखों पर। कहने लगे कि ये कहाँ से सीखा तुमने जो बजा रहे थे अभी? मैंने कहा, हुजूर वो रॉयल सिनेमा में जाता हूँ मैं, लड्डन साहब वहाँ बजाते हैं, तो उनके पीछे बैठ के सुना करता हूँ, तो वो जो सुना वो इसकी प्रैक्टिस करता था मैं। खैर सज़ा तो दूंगा साहब, तैयार हो जाइए सज़ा के लिए। अब मैं, हुजूर माफ़ कर दीजिए, इसके बाद कभी नहीं छूँगा। नहीं, सज़ा तो दूंगा। तुम्हारे घर में बाजा है क्या? मैंने कहा, जी नहीं। आपकी सज़ा ये है कि ये हारमोनियम जिस पर आप प्रैक्टिस कर रहे थे, मेरा नया हारमोनियम सत्यानाश कर रहे थे, ये आपको मैं देता हूँ आपकी ये सज़ा। और प्रैक्टिस किया करो, तुम्हारा हाथ अच्छा, जहन अच्छा है, हैं? और लड्डन साहब को मैं एक रोज़ बुला के उनको सुनवाऊंगा, उनसे सीखा करो।

मुंबई में स्वतंत्र संगीतकार के रूप में स्थापित होने के लिए नौशाद को बहुत संघर्ष करना पड़ा। उनकी लगन, मेहनत, धैर्य और समर्पण का सकारात्मक परिणाम सामने आया। सन 1940 में नौशाद को स्वतंत्र रूप से संगीत निर्देशन का अवसर जिस फिल्म के लिए मिला वो थी प्रेम नगर।

संगीतकार नौशाद की धुनों से सजी 35 फिल्मों ने सिल्वर जुबली मनाई, 12 फिल्मों ने गोल्डन जुबली और 3 फिल्मों ने मनाई डायमंड जुबली।

संगीतकार नौशाद शास्त्रीय संगीत के चितेरे थे, लोक संगीत की शैलियों के भी वो मर्मज्ञ थे। नौशाद के संगीत से सजी फिल्म बैजू बावरा भारतीय शास्त्रीय संगीत की मिठास का उदाहरण है। इस फिल्म के लिए नौशाद ने उस्ताद अमीर खान और पंडित डीवी पलुस्कर से पार्श्व गायन करवाया था। फिल्म बैजू बावरा के लिए नौशाद साहब को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

फिल्म मुगल-ए-आज़म की भी एक रचना भारतीय शास्त्रीय संगीत की खूबसूरत मिसाल है, जिसके लिए नौशाद ने शास्त्रीय संगीत के महान गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का स्वर

सन 1952 में आई फिल्म आन। इस फिल्म के हीरो थे दिलीप कुमार। महबूब साहब की इस फिल्म के लिए नौशाद साहब ने 100 पीस ऑर्केस्ट्रा का इस्तेमाल किया था और उसकी रिकॉर्डिंग लंदन में हुई थी।

सन 1955 में फिल्म उड़न खटोला के एक गीत को नौशाद जी ने बिना ऑर्केस्ट्रा के रिकॉर्ड किया था और वाद्यों के स्थान पर समूह स्वरों का प्रयोग किया था।

गायक मोहम्मद रफी को पार्श्व गायन का पहला मौका नौशाद साहब ने ही दिया था, पहले कोरस में और फिर प्रमुख स्वर के साथ। फिल्म थी पहले आप और वो गीत था ये।

0: पाओगे।
1: नौशाद साहब के संगीत से सजी प्रसिद्ध फिल्म मदर इंडिया का नामांकन ऑस्कर के लिए किया गया था। इस फिल्म के सभी गीत आज भी बेहद लोकप्रिय हैं।

नौशाद साहब ने डीएन मधोक, शकील बदायूनी, मजरूह सुल्तानपुरी, जिया सरहदी और खुमार बाराबंकी जैसे चर्चित गीतकारों के साथ काम किया और शायद सबसे ज्यादा गीत संगीतबद्ध किए शकील बदायूनी के।

5 फिल्मों का निर्माण किया गया। उनके संगीत और जीवन पर आधारित जो किताबें प्रकाशित हुई उनके नाम हैं दास्ताने नौशाद, आज गावत मन मेरो, नौशाद की कहानी, नौशाद की जुबानी और नोट्स ऑफ नौशाद।

सन 1988 में टीवी धारावाहिक अकबर द ग्रेट के लिए भी नौशाद साहब ने बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोज किया था। लंबे अंतराल के बाद नौशाद जी ने माय फ्रेंड और तेरी पायल मेरे गीत नामक फिल्मों के लिए संगीत दिया।

सन 2005 में ताजमहल एंड इटर्नल लव स्टोरी के लिए भी नौशाद साहब ने धुनें तैयार की थी। नौशाद एक उम्दा शायर भी थे। उनकी रचनाओं के संग्रह का नाम है आठवां सुर। भारतीय सिनेमा और संगीत में नौशाद साहब को उनके अमूल्य योगदान के लिए पद्म भूषण के अलंकरण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। भारतीय सिने संगीत के महान कलाकार नौशाद का सुरीला संगीत आज अमूल्य धरोहर है हमारी। उनके कालजय गीत अपने सुरों से यूं ही सम्मोहित करते रहेंगे संगीत प्रेमियों को। 5 मई सन 2006 को संगीत का ये महान साधक इस नश्वर जगत को छोड़कर चला गया, उस सफर पर जहां से लौटकर कोई नहीं आता।

0: के फिल्मकार, आप सुन रहे थे फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार नौशाद पर केंद्रित ये कार्यक्रम। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दुनिया की नजरों से पहाड़ों की ऊंचाई पर चांद तारों की दुनिया में चलो कहीं दूर चलें, चलें वहां जहां कोई जख्म ना हो, जहां मुस्कुराने पर पहरे ना हो, जहां मोहब्बत के दुश्मन ना हो, जहां पलके झपकाएं तो फूलों की क्यारियां लहलहा उठें, जहां तुम्हारे बोलने से कोयल कूक उठे, दुनिया की तलखी से चलो कहीं दूर चलें।

जरा सी खुशी, जरा सी हंसी, जरा सी उदासी से मिलकर बनती है जिंदगी। ख्वाबों के तिनके जोड़कर बन जाता है जिंदगी का आशियाना। तो चलो बनाएं ख्वाबों का जहां, आधी आधी खुशी बांट लें, बांट लें गम, बांट लें आधी आधी जिम्मेदारियां, बांट लें आपस में ख्वाहिशों के मोती, कामयाबी के फूल।

से दूर क्षितिज को देखते हुए जब आज फिर खोली मन की डायरी, तो जगमगा उठी वो तस्वीरें। जब मन से बांधे थे किसी के मन के तार, जब चलती हुई ट्रेन पर दौड़कर चढ़ने की कोशिश की थी एक दूसरे का हाथ थामकर, दिखाई दी वो तस्वीरें जब यूं ही सड़कों पर बेमकसद चले थे बहुत दूर तक, बहुत देर तक। याद आए वो पल जब यूं ही बैठे थे चुपचाप एक दूसरे के साथ। आज भी दर्ज हैं फुर्सत के वो लम्हे मन की डायरी में।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं छाया गीत। तुम्ही ने भरी जिंदगी में रोशनी, तुम्ही ने सींचा प्रेम के जल से मन की क्यारी को। यही वो मौसम था जब गुलाबी मन पर तुमने पीला रंग छिड़क दिया था और फिर सरसों के पीले फूल इतराते हुए मुस्कुरा उठे थे। बाग में बैठा मैना का जोड़ा अपनी बोली में कुछ बोल उठा था और दो चेहरों के गाल गुलाबी हो गए थे।

हम गुम हैं अपनी ही दुनिया में, बार बार सुनाई देती है किसी की आवाज, जानी पहचानी सी आवाज। हम पलट कर देखते हैं तो पाते हैं कोई नहीं है आसपास, फिर भी है एक एहसास जैसे वो कहीं आसपास है। इसी एहसास ने गुनगुनाया प्यार का मीठा सा राग, इसी एहसास ने लिखी थी नेह की पाती किसी के नाम।

वैसा होता नहीं जैसा हम चाहते हैं, फिर भी हमारी चाहत होती है कि काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा होता कि हम न लिखते अपने दिल में किसी और का नाम, काश ऐसा होता कि हम जानते हुए भी बन जाते अजनबी उनके साथ, काश ऐसा होता कि उनके मन की इबारत पढ़कर भी बने रहते अनजान।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स है देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
0: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी मिलेगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमी कंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक तथा ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि देश के लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से होता रहा है। उन्होंने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कशगम के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में जापान की आर्थिक सुरक्षा मामलों की मंत्री किमी ओनोडा से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के महत्व पर

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात के 11:10 हुए हैं और अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 5:55 पर अपने कार्यक्रमों के साथ आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात के 11:10 हुए हैं और अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 5:55 पर अपने कार्यक्रमों के साथ आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।